जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए, जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें, योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं, फल सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें, जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारी पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए, हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें, तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें, पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है, जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें, कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें, ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। श्वासों पर ध्यान
धीरे धीरे लगाएं। जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में

ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिए। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है। इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारे मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपके स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो, लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचें। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठ करके अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठ करके सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि
शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है। और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है।

नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, वो किरण जो सिर्फ सूरज की नहीं बल्कि उम्मीद, विश्वास और ईश्वर से जुड़ाव भी है। सुबह की इस पवित्र बेला में जब हवा में शांति है और मन अभी भी कल की भागदौड़ से दूर है, तो आइए कुछ पल अपने आराध्य को समर्पित करें। पूजा तभी फलीभूत होती है जब उसमें प्रत्येक विधि विधान का पालन किया जाए। इसलिए आज का जो एपिसोड होगा वो आपकी अपनी आरजी आकांक्षा पूरी तरह से आरती पर केंद्रित करेगी। आरती, आरती वो है जब हम पूरी पूजा करने के उपरांत दो पल ईश्वर को गीत, लय, ताल सभी के द्वारा वंदन समर्पित करते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर आपने मात्र आरती पूरे मन से कर ली तो समझ लीजिए ईश्वर की पूरी पूजा आपने पूरी कर ली। तो चलिए इसी क्रम में आज की सबसे पहली वंदना, सबसे पहली आरती जो हर पूजा में सर्वप्रथम की जाती है, किसकी? प्रथम पूज्य श्री गणेश की। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात हे भव्य शरीर वक्रतुंड सूर्य की चमक वाले गणेश जी, मेरे सारे कर्मों को विघ्नों से सदैव मुक्त करते रहना, इस मंत्र का जप अति उत्तम माना गया है। साथ ही गणपति की आरती आइए मिलकर करें।

श्रोताओं, आरती केवल दीपक घुमाना नहीं, आरती है अहंकार का अंधकार हटाना, मतलब मन के मंदिर में श्रद्धा का दीप जलाना। जब हम आरती करते हैं तो हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ऐसा नहीं है, हम कुछ नहीं मांगते बल्कि खुद को उनके श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। दीप जले तो भीतर के मन में भी एक उजाला सा हो जाता है, मन की हर नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो चलिए इसी भाव से माँ लक्ष्मी की आराधना इस आरती के माध्यम से करते हैं। उससे पहले माँ लक्ष्मी का ये सबसे प्रचलित मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए यदि विधिवत माता लक्ष्मी का नित्य पूजन किया जाए तो जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में धन संपदा बनी रहती है। आइए माँ को मनाते हैं माँ की आरती से।

मित्रों, वैसे तो हम अपनी पसंद से कोई भी आरती का चुनाव कर सकते हैं, और एक आरती है जो कि सार्वभौमिक है, जिसके बोल हैं, आरती कीजिए प्रभु की, मन मंदिर में दीप जले, दुख दरिद्र सब दूर हो, जीवन पथ पर सुख फले। तो ये आरती जो सभी धर्मों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसके अलावा आरती हमें ये सिखाती है कि अगर मन सच्चा हो तो हर सांस भी प्रार्थना बन जाती है। आज का दिन किसी से शिकायत नहीं करना, किसी के लिए दुआ बनने का दिन हो जाए, ऐसी भावना के साथ में हमें आज का दिन बिताना है। लेकिन उससे पहले, घर में हो या सफर में, काम पर हो या अकेले, बस मन से एक दीप जला लीजिएगा। किसके लिए? ईश्वर के लिए, जो कि हर जगह व्याप्त है। चलिए तो उन्हीं ईश्वर की वंदना करते हैं, उनके श्री चरणों की ओर फिर से बढ़ते हैं। और इस बार हम आरती में चयन करके लाए हुए हैं श्री जगदीश्वर यानी जगत पिता श्री विष्णु जी की आरती। उससे पहले ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी मधुरता है और कितनी मिठास है इस प्यारे से मंत्र में। अर्थात, मैं भगवान वासुदेव को नमन करती हूँ। ये मंत्र महर्षि नारद के मुख से उत्पन्न माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से मन मस्तिष्क शुद्ध होते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, करते हैं ना श्री हरि की आरती।

दीप और अग्नि के माध्यम से ईश्वर को नमन करते थे। ये आरती यानी प्रकाश को साक्षी मानकर की गई प्रार्थना। तो सबसे प्राचीन जो हमारे ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं यानी भोलेनाथ, चलिए अब उनकी प्रार्थना करते हैं और उनका वो पंचाक्षरी मंत्र जो हम सभी के मुखार बिंदु पर अक्सर होता है, वही ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं शिव को नमन करती हूँ। ये वो मूल मंत्र है जो शरीर का शुद्धिकरण करता है और ध्यान की अवस्था लाने में मदद करता है। इसे कई सभ्यताओं में महामंत्र भी माना गया है। तो चलिए फिर करते हैं महादेव की आरती।

दोस्तों अब बात करेंगे मध्यकाल और बाकी धर्मों की आरती पर। समय बदला पर प्रकाश की भाषा वही रही। हिंदू धर्म में दीप और कपूर से आरती की जाती है। बौद्ध परंपरा में दीपदान को आरती मानते हैं। जैन धर्म में जिनेंद्र देव के समक्ष दीप प्रज्वलन ही आरती है। सिख धर्म में आरती शब्द के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित ईश्वर की महिमा ही आरती है। इस्लाम में चराग और नूर की दुआ को आरती कहते हैं। ईसाई धर्म में मोमबत्ती जलाकर प्रभु के सामने मौन प्रार्थना करना आरती है। यानी सभी की आस्थाएं और सभी की श्रद्धा अलग अलग है, पर वो एक है, कौन? हम सभी का ईश्वर। नाम अलग थे पर भावना एक, अंधकार से उजाले की ओर। तो चलिए फिर एक और आरती की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वो मंत्र जो हम सभी अपनी माँ को याद करते हुए पढ़ते हैं अक्सर। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, कोई भी रूप माँ का, माँ तो माँ है ना, तो माँ के लिए ये मंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात मंगल कल्याण मनोरथ पूरे करने वाली, भूत भविष्य वर्तमान देखने वाली गौरी व नारायणी, यानी भगवान के सभी स्वरूपों के साथ आप ही जुड़ी हो, माँ आपको नमस्कार है।

श्रोताओं, अब बात करेंगे आधुनिक समय की आरती की। आज दीप एलईडी का हो सकता है, मोमबत्ती मोबाइल की स्क्रीन पर भी जल सकती है, पर जब हम किसी के लिए मन से दुआ करते हैं, किसी दुख के लिए दिल से रोशनी मांगते हैं, वही आधुनिक आरती है। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर। एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। हर शाम एक हिंदू वहां दीप रखता, एक मुस्लिम चराग जलाता, एक सिख वाहिगुरु कहता, एक ईसाई मोमबत्ती रखकर मौन खड़ा हो जाता। किसी ने कभी नहीं पूछा किसका भगवान बड़ा है। बस एक बात सब कहते, आज थोड़ा उजाला और बढ़ जाए। एक दिन किसी बच्चे ने पूछा, ये सब अलग अलग क्यों करते हैं? बूढ़े पीपल की छांव में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा जब दीप जलता है तो वह धर्म नहीं पूछता, वह सिर्फ अंधकार मिटाता है। यही है सबसे बड़ी आरती। उस दिन से वो पेड़ गांव का मंदिर बन गया, गुरुद्वारा भी, मस्जिद भी और चर्च भी। चलिए सर्वधर्म को ऊपर रखते हुए ये आरती, उससे पहले ये मंत्र, मंत्र वही है, ओम राम रामाय नमः। मतलब ये वो शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप से विपत्तियां दूर होती हैं और शरीर निरोग रहता है। इसका जब चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। तो चलिए फिर आरती की ओर भी बढ़ते हैं।

दोस्तों, आरती किसी एक धर्म की नहीं है, ये मानवता की लौ है। जहाँ प्रकाश है वहाँ ईश्वर है। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहाँ हर सुबह हर धर्म हर दिल एक ही उजाले में जुड़ जाता है। चलिए फिर इसी लौ को और आग देते हैं इस मंत्र और आरती के द्वारा। ये वो आरती है जो कि एक नटखट सी भावना को जन्म देती है। उससे पहले ये मंत्र, ओम क्लीन कृष्णाय नमः, अर्थात हे कृष्ण मेरा प्रणाम स्वीकार करें तथा जीवन की बाधाओं से मुझे मुक्ति प्राप्त कराएं। ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का आवाहन करता है। चलिए बढ़ते हैं श्री कृष्ण की आरती की ओर।

दोस्तों, यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है तो उनकी सेवा एक छोटे बालक की तरह करें। मंदिर की पवित्रता हमेशा बनाए रखें। कोशिश करें कि वहाँ का वातावरण हमेशा सुगंधित रहे। चलिए, अब आपको ले चलते हैं एक और आरती की ओर, जो है किसकी? उस देवी की जो हमें बुद्धि देती हैं, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का प्रसार करती हैं और साथ ही साथ में हमारे बुद्धि, मन और सभी चीजों को स्वस्थ रखती हैं। माँ शारदे, सरस्वती महाभागे, विद्ये कमल लोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी, विद्याम देहि नमोस्तुते। अर्थात अक्षर, शब्द, अर्थ और छंद का ज्ञान देने वाली भगवती सरस्वती, मैं आपकी वंदना करती हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ। चलिए, अब बढ़ते हैं माँ शारदे की आरती की ओर।

श्रोताओं, पूजन में आप अक्सर सोचते हैं कि दीप क्यों? तो दीपक को ज्ञान और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। दीप प्रज्वलन का भाव है। दीपक से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे वातावरण शुद्ध होता है क्योंकि दीपक में गाय का घी या तेल इस्तेमाल किया जाता है जो घर से रोगाणुओं को दूर भगाता है। देखा ना, इसमें धार्मिक होने के साथ साथ में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी प्रचलन माना जाता है और घर के वातावरण को पवित्र भी बनाता है दीपक। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वो पूजा में सम्मिलित हो या नहीं। हम अज्ञान का अंधकार मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें, दीपक का यही संदेश है। तो चलिए इसी संदेश के साथ में बढ़ते हैं एक और आरती की ओर, जो कि है इस धरती को जीवन देने वाली माँ की आरती, यानी गंगा आरती। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का जप करने से जातक को वैसे ही पुण्य प्राप्त होते हैं जैसे गंगा स्नान करने से मिलता है। पापों के लिए क्षमा मांगने और मुक्ति के लिए ये अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। चलिए अब एक बार करते हैं क्या, हर हर गंगे।

दोस्तों चलिए अब आपको ले चलते हैं पूजा विधान में शंख के महत्व की ओर। अक्सर आपने सुना होगा कि वार्तालाप के दौरान हमारे पुराने यानी पौराणिक पंडित और सभी बोलते हैं, घर वाले भी, आस पड़ोस के लोग भी, कि पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें या उत्तरावर्ती शंख का प्रयोग करें। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि शंख का महत्व क्या है पूजा विधि में। धर्म शास्त्रों के अनुसार शंख बजाने से भूत प्रेत अज्ञान रोग दुराचार पाप दूषित विचार और गरीबी का नाश होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार शंख बजाने से हमारे फेफड़ों का व्यायाम होता है, श्वास संबंधी रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। पूजा के समय शंख में भरकर रखे गए जल को सभी पर छिड़का जाता है, क्योंकि शंख के जल में कीटाणुओं को नष्ट करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। साथ ही शंख में रखा पानी पीने से स्वास्थ्य लाभ होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। शंख में कैल्शियम फास्फोरस और गंधक के गुण होते हैं जो उसमें रखे जल में आ जाते हैं। तो इतना सब कुछ होता है शंख में। अब इसी शंख की शक्ति को और हम बढ़ाते हैं एक प्यारे से मंत्र से, जो कि है हनुमान जी का, ओम नमो भगवते अंजनेय महाबलाय नमः। अर्थात मैं अंजना के पुत्र महाबलशाली भगवान हनुमान को नमन करती हूँ तथा उनके समक्ष समर्पण करती हूँ। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से असाध्य रोग नष्ट हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं महा आरती यानी महाबली की आरती।

श्रोताओं, इतना कुछ आज हमने सुन लिया, जाना आपके अपने शो पहली किरण में आपकी आरजे आकांक्षा के साथ में पूजा विधान के बारे में। अभी चलते चलते आपसे हम एक और बात पे चर्चा कर लेते हैं। कई दफा होता है ना कि हम सोचते हैं कि कहाँ हो घर का मंदिर, तो आइए जानते हैं कि घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए। वैसे तो घर के मंदिर पर विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन शास्त्र अनुसार घर में मंदिर का निर्माण ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में होना चाहिए और मंदिर ठोस आधार यानी समतल जमीन पर रखा होना चाहिए। उत्तर पूर्व में संभव ना हो तो आप उत्तर या पश्चिम में भी मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन मंदिर के नीचे कोई दराज ना बनवाएं। घर में मंदिर के ऊपर ध्वजा का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। जगह ना हो तो घर की छत पर भी ध्वजा लगाई जा सकती है। तो अभी हम बढ़ेंगे एक और आरती की ओर, जो कि है हम सभी की सबसे प्यारी, हाँ, गो माता की। कहते हैं ना कि गो माता के शरीर में 33,000 करोड़ यानी 33,000 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। इनके श्रीपग जहाँ भी पड़ते हैं वो जमीन अपने आप में ही माना जाता है कि गंगा का वहाँ पे उद्गम होता है, क्योंकि इनके खुर से ही गंगा का उद्गम माना गया है। सर्व काम दूधे देवी सर्व तीर्थी भीषे चिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमोस्तुते। ये मंत्र गाय की महिमा का वर्णन करता है, जिसमें कहा गया है कि सभी तीर्थ उनमें निवास करते हैं, यानी हमारी गौ माता में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है।

अभी आप सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है पहली किरण, जो लेके आई थी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। अभी आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दे मुझे और मिलते हैं आपसे इसी शो के नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है कि पूजा विधान अब आपका उत्तम तरीके से होता रहेगा। राधे राधे, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, अल्लाह हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: इतना क्यों याद आ रही हो? What do you expect? ट्रेन से कूद कर लौटा हूं? Hey, not possible. You know what they're saying? Life is like a roller coaster ride. What do you say? पर तुम तो यहाँ हो ही नहीं, किससे पूछो?

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: आज से हमारा रिश्ता खत्म और चलो एक दूसरे के सारे गिफ्ट वापस करते हैं।
1: तो ठीक है, शुरुआत रिचार्ज से करते हैं।
0: अरे जानू, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती।

0: click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM, गोंडा शहर की

Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan. आप सुन रहे हैं रेडियो 91.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और आपका मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग गोंडा। यस ऑफ कोर्स आपके अपने आरजे अदनान आ गए हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में और आने के साथ ही साथ देखिए कितना गुलजार सा मौसम हो रहा है भाई। इस वातावरण की बात नहीं कर रहे, आपके चेहरे की बात कर रहे हैं। कितना ज्यादा खुश आप हो गए, डेफिनेटली हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं जब आपसे मिलते हैं। तो चलिए इसी मुलाकात को अब चूंकि शुरू कर चुके हैं तो अब आपको बिना देरी किए हुए सीधे ले चलते हैं थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। सो क्या आप जानना चाहेंगे कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? सो आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो ये कहता है कि इररिप्लेसेबल यानी कि अपूर्णीय बनने के लिए आपको अलग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई चीज या आप खुद इररिप्लेसेबल हो यानी दोस्तों के ग्रुप्स में, फैमिली में, अपने करियर में, अपने ऑफिस में, कहीं पे भी, तो आपको अपनी यूनिक पर्सनैलिटी को हमेशा बना के रखना होगा क्योंकि जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है रिप्लेस करने में किसी को भी वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी क्वालिटी है जो स्पेसिफिकली आपको डिफाइन करती है, जो बताती है कि आप इस तरह के हैं, अगर आप उसको ले करके और रख करके चलते हैं सो डेफिनेटली आप इररिप्लेसेबल हो जाएंगे यानी आपकी कोई अपूर्णीय होंगे, आपके कोई जगह नहीं ले पाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं कर पाएगा जो आप जैसी हो। सो इसलिए आपका स्पेशल होना, अपनी स्पेशलिटी को हमेशा बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फिलहाल मुझे लगता है कि ये थॉट आप तक पहुंच गया है और इस थॉट को अब आप ज़रा सोचिए कि क्या आपके अंदर भी कोई ऐसी क्वालिटी है जो आपको इररिप्लेसेबल बनाती है आपके करियर में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप्स में, कहीं पर भी, किसी भी मंच पर। और ज़रूर होगी तो सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि उसको आज से निखारने का काम भी आप शुरू करने वाले हैं। सो फिलहाल स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM और लौटते हैं हम कुछ नई बातों के साथ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: Now you're listening Good Morning Gonda with your favorite Aajya Khan।
2: यार अपनी विरासत को कितना ज्यादा संजोने पर विश्वास रखते हैं। देखिए ना, ओल्ड माउंटमेंट्स देखते हैं, चाहे हम लखनऊ में इमामबाड़े की बात देख ले, बनारस के घाटों को देख ले, या मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर देख ले, या फिर मुंबई में हाजी अली देख ले, या फिर कोलकाता में जाए और बहुत सारी ऐसे माउंटमेंट्स हैं जिनको हम सहेजने की बात करते हैं। लेकिन सोचिए, कोई एक शख्स हो और उसने जिंदगी का 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 50 साल एक चीज को सहजने पे दे दिया हो, सो कितनी महानता वाला काम है ना। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं किसान रघुपत सिंह जी की, जिनके समर्पण से उनको मिल चुका है पद्मश्री सम्मान। पद्मश्री सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सो आखिर क्यों मिला होगा, ये जाहिर सी बात है, ये ख्याल आपके जहन में आ रहा है। तो आपको हम बता दें कि भाई 50 सालों तक दुर्लभ बीजों को संभाला और विलुप्त फसलों को फिर से वापस से नई जिंदगी दी किसान रघुपत सिंह जी ने, और इन्हीं के समर्पण से इनको मिला पद्मश्री सम्मान। इसीलिए शायद ये सम्मान बहुत ज्यादा खास है। इन्होंने सिर्फ खेती नहीं की बल्कि खेती की विरासत को बचाया। अपनी जिंदगी में इन्होंने 100 से ज्यादा फसल किस्मों का विकास किया, 55 से ज्यादा दुर्लभ और विलुप्त होती सब्जियों को फिर से खेतों तक पहुंचाया और लाखों किसानों को टिकाऊ खेती का रास्ता दिखाया। भाई किसान रघुपत सिंह जी का मानना था कि खेती सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जैव विविधता और बीजों को बचाने की जिम्मेदारी भी है, और उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण, प्राकृतिक खेती और मौसम पर आधारित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया, जिससे किसानों की लागत कम हुई और खेती ज्यादा टिकाऊ बनी। सो सरकारी नौकरी का इवन मौका भी था। जरा सोचिए कि किसके पास सरकारी नौकरी का मौका हो और वो छोड़ करके खेती किसानी में लगे। पर इन्होंने ऐसा किया, मिट्टी को चुना और खेत ही इनकी प्रयोगशाला बने, जहां इन्होंने सालों तक नए नए प्रयोग किए, किसानों के लिए बेहतर बीज तैयार किए और इनके मार्गदर्शन में लगभग 3 लाख किसानों को फायदा हुआ है। सो जाहिर सी बात है, एक बड़ा सा सैल्यूट तो हमारे सुपर और रियल हीरो का बनता है। सो फिलहाल इनकी स्टोरी कैसी लगी हमको आप जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के हिसाब से रघुपत सिंह जी हमारे एक रियल सुपर हीरो हैं।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: Now you're listening. Good morning, Kota. With your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.
1: कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी। भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जहां तक देखो इतनी सारी वैरायटी नजर आ जाती है और आज उसी में से एक वैरायटी की बात हम करने वाले हैं। लेकिन ये कोई खाने की चीज की वैरायटी नहीं है। सबसे पहले तो हम ये बता दें, ये वैरायटी है महिलाओं को सबसे ज्यादा, यानी हमारी भारतीय महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद आने वाले परिधान साड़ी के बारे में। सो हाँ, आपको अब हम बताने वाले हैं, बनारस से कांचीवरम तक का सफर पूरा करने वाले हैं 10 सिल्क साड़ियों को लेकर के, जिनका नहीं है कोई मुकाबला। सबसे पहले नंबर पे आता है बनारस सिल्क साड़ी के लिए उत्तर प्रदेश। जी हाँ, सोने चांदी की जरी और मुगल कालीन डिजाइन के लिए बहुत फेमस है। शादियों और खास मौकों पर पहली पसंद बनती है बनारसी सिल्क साड़ी। इसके बाद नंबर आता है कांजीवरम सिल्क साड़ी तमिलनाडु का। जी हाँ, सो अगर हम तमिलनाडु की तरफ जाते हैं तो वहां पाते हैं कि भारी रेशम, चौड़े बॉर्डर्स और मंदिर से प्रेरित डिजाइन्स की पहचान ये होती है। दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा फेमस सिल्क साड़ियों में से कांजीवरम है। इसके बाद अगर हम चलते हैं बिहार में तो यहाँ पे हमको मिलती है भागलपुरी सिल्क। जी हाँ, सो प्राकृतिक सुनहरी चमक वाली दुर्लभ सिल्क जो है वो वक्त के साथ खूबसूरती में और अपने को बढ़ाती जा रही है और वो है भागलपुरी सिल्क। इसके बाद अगर हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ और हम पाते हैं कि भाई असम में देखें, सो असम में प्राकृतिक सुनहरी चमक वाली दुर्लभ सिल्क पाई जाती है और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में इसकी बड़ी ज्यादा मांग है। इसके अलावा अगर हम चलते हैं अपने देश में महाराष्ट्र की तरफ तो पैठणी सिल्क पाई जाती है। जी हाँ, शायद आपको ना पता हो लेकिन मोर और कमल की खूबसूरत आकृतियाँ इसकी पहचान हैं। महाराष्ट्रियन दुल्हन जो होती हैं उनकी पारंपरिक पसंद होती है पैठणी सिल्क, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके बाद आता है नंबर कर्नाटक का। सुभाई हल्की मुलायम और शाही चमक वाली साड़ी सादगी और एलिगेंस का बेहतरीन मेल जो दिखाता है वो कर्नाटक की मैसूर सिल्क साड़ी दिखाती है। जब हम आते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ तो पाते हैं पल्लू पर पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक दृश्यों की बुनाई और इसे पहनना मानो कला को उड़ना होता है और ये है बलूचरी सिल्क पश्चिम बंगाल। इसके बाद नाम आता है गुजरात का। जी हाँ, सो डबल इकत बुनाई टेक्निक के लिए दुनिया भर में फेमस है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल और कीमती हस्तकला का नमूना, यानी कि हाथों से बनाई गई पटोला सिल्क जो कि गुजरात में मिलती है और जाहिर है आपने पटोला नाम तो बहुत बार सुना होगा। इसके बाद आता है ओडिशा का नंबर, जहां पाई जाती है बोमकई सिल्क। सो जनजातीय कला और पारंपरिक कढ़ाई का सुंदर मिश्रण होता है और अपनी अनोखी बुनावट के लिए जानी जाती है बोमकई सिल्क ओडिशा में। इसके बाद मणिपुर में अगर हम चलते हैं तो वहां पाते हैं कमल के तनों के रेशों से तैयार होने वाली बेहद दुर्लभ साड़ियां। सो दुनिया की सबसे अनोखी और महंगी सिल्क साड़ियों में से एक गिनी जाती है लोटस सिल्क साड़ी, जो कि पाई जाती है मणिपुर में। सो ये 10 साड़ियों के बारे में हमने आपको बताया भारत के अलग अलग राज्यों की। मुझे उम्मीद है कि आप स्पेशली महिलाओं में जो भी इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनका मन जो है अब वो साड़ियों की तरफ से एक बार वापस चला गया है। तो चलिए आज ही जिद करिए और अपने पति से कहिए दिलाओ मुझे भी साड़ी।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Arjia Khan. Arjia Khan.
1: तो भाई कब कहां कौन सी चीज वायरल हो जाए ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। अब जरा फर्ज कर लीजिए कि आपको कोई अवार्ड दिया जा रहा है और आपके पास कोई ऐसी चीज है जो कि लोगों की नजर में आ जाए और वो न्यूज बन जाए। फिलहाल मुझे लगता है कि खैर अभी अपने किस्मत में तो इतनी बढ़िया बात नहीं है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर आर माधवन की। जी हाँ, सो आपको हम बता दें कि भाई जिस दिन आर माधवन को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया उसी दिन ये दिखे लिमिटेड एडिशन जलसा वॉच के साथ, जो कि आपको बता दें कि नेबुला टाइटन से ये पूरे तरीके से इंडियन वॉच है और इसकी कीमत अगर आप जानेंगे तो थोड़ा सा हैरान तो होने वाले हैं। दरअसल अपना अवार्ड यानी कि पद्मश्री प्राप्त करते वक्त जो आर माधवन ने घड़ी पहनी थी उसकी कीमत है 40 लाख रुपए। जी हाँ, 40 लाख रुपए की ये घड़ी आर माधवन ने पहनी थी अपना अवार्ड लेते वक्त, और ये फिलहाल मीडिया की नजरों में आई और उसके बाद से कहीं ना कहीं ये एक खबर बन गई। वैसे आपको हम बता दें कि इस वॉच की यानी जो जलसा की हम बात कर रहे हैं, जलसा पूरे तरीके से ये मेड इन इंडियन है और फिलहाल सिर्फ 10 ही पीस अवेलेबल है इस कंपनी के पास इस घड़ी के। अब जरा सोचिए कि भाई कितनी कीमती हो जाती है। फिलहाल तो अपनी किस्मत में जिस दिन 40 लाख रुपए अगर मिल भी गए तो मेरे ख्याल से घड़ी तो नहीं लूंगा मैं। जहां तक मेरा सपना है अपनी उस जगह में जो मुझे पसंद है वहां एक मकान जरूर बनाने की सोचूंगा। वैसे आप क्या लेंगे अगर मान लीजिए कि आपको 40 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, सो आर माथवन की तरह क्या आप भी कोई वॉच लेने वाले हैं या कुछ और करने वाले हैं? फिलहाल आप बस कुछ करिए ना करिए, लेकिन बने रहिए अपने 89.6 FM पर, क्योंकि चल रहा है आपका मॉर्निंग वाला शो।

0: मैं हूँ फेसबुक और मैं सबको जानता हूँ।
1: मैं हूँ गूगल और मेरे पास सब कुछ है।
2: मैं हूँ व्हाट्सएप और मैं हूँ सबकी जान।
3: मैं हूँ इंटरनेट और मेरे बगैर तो तुम सब कुछ भी नहीं हो।
0: मैं हूँ चार्जर, आवाज नीचे।

0: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.
1: अभी जस्ट हमने ये बताया था कि भाई अगर 40 लाख रुपए मिल जाए तो उसका क्या करने वाले हैं, घर लेने वाले हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं इस मॉर्निंग वाले शो को, वो भी यही करने वाले हैं, राइट? देखा, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही कि आप भी घर लेने वाले हैं। बहरहाल, अगर हम इससे हटाकर एक बात करें, चूंकि हमने लखनऊ की अग्निकांड के बारे में जान ही लिया है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक्सपर्ट्स कुछ बातें बताते हैं जब आप नया घर खरीद रहे हो। जी हाँ, सो नया घर जब खरीद रहे हो तो किस तरह से आग लगने पर आप अपनी जान बचा सकते हैं, एक्सपर्ट्स जो बताते हैं, ये आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये जानकारी आप अपने लोगों तक भी इसको ज़रूर साझा कीजिएगा। दरअसल घर खरीदते वक्त सिर्फ व्यू नहीं मैटर करता है, ऐसा कहते हैं एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिल्डिंग में फायर एनओसी जरूर चेक करें। जी हाँ, सो कोई भी अगर आप घर ले रहे हैं तो उसके लिए फायर एनओसी होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं फायर डिपार्टमेंट ये अप्रूव करता है कि आपका घर जो है, अगर आग लगती है, भगवान ना करे, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास बचने के तरीके होते हैं। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, यानी अगर आप घर लेते हैं तो ऐसा ना हो, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है घर ऐसे ही होते हैं जहां पे एग्जिट एंड एंट्री दोनों एक ही दरवाजे से होती है, लेकिन आग लगने की सिचुएशन में जब एक हिस्से में आग लगती है तो दूसरे हिस्से से भागकर अपनी जान बचाया जा सकता है। इसलिए ऐसे फ्लैट्स हैं या ऐसे हाउसेज बनाने चाहिए जिसमें एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स अलग अलग हों। इसके अलावा स्प्रिंकलर्स और फायर होस की अवेलेबिलिटी ज़रूर जांच लें, क्योंकि जब आप अगर फ्लैट्स में जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्प्रिंकलर्स जो होते हैं, यानी आग लगने पर जो पानी डालने का काम स्प्रिंकलर्स करते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी आप ज़रूर देख लें वहाँ पे क्या है या नहीं। इसके अलावा 70% जो आग है, यानी 70%, वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से लगती है। सो एसी को लगातार घंटों नहीं चलाना होता है, बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर देना होता है। भाई, आपको भी तो ब्रेक की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? सो जाहिर है एसी को भी आवश्यकता जरूर होती है। इसके अलावा पुरानी वायरिंग और ओवरलोडिंग पर आपको ध्यान देना होता है, यानी अगर आपके घर की वायरिंग पुरानी हो गई है तो भी आपको देखना पड़ेगा या आप उस पर ओवरलोडिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि तार की अपनी एक क्षमता होती है, उससे ज्यादा उपकरण लगाने पर वो हीट करता है और उसके बाद जलने का खतरा पूरी तरह से होता है। अगर MCB बार बार ट्रिप हो रहा है तो नज़रअंदाज आपको नहीं करना है, इसका मतलब है कि खतरे की घंटी है। अब आपको इलेक्ट्रिशियन को बुला करके उसकी जांच पूरी तरह से करानी होगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए घर के बाहर आग लगी है तो दरवाज़ा छूकर देखें, अगर गर्म है तो बाहर नहीं निकले, दरवाजे की दरारों को गीले कपड़े से सील कर दे ताकि धुआं अंदर ना आना पड़े, क्योंकि धुआं आने से ही दम घुटता है और ज़्यादातर मौतें आग लगने में धुआं आने और दम घुटने की वजह से ही होता है। बालकनी या सबसे दूर वाले कमरे में आपको चले जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप खुद को सेफ रख पाए और आपके तक मदद आ पाए। इसके अलावा धुआं आग से ज़्यादा खतरनाक होता है। जी हाँ, सो आग की स्थिति में बिल्ली की तरह चले। अब आप सोचेंगे बिल्ली की तरह, यानी रेंगते हुए आपको चलना होगा। ऊपर ऊपर धुआं होता है, नीचे नीचे उतना धुआं नहीं होता है, तो आपको बिल्ली की तरह रेंगते हुए चलना चाहिए। नाक और मुंह पर गीला रुमाल या कपड़ा आपको रख लेना चाहिए जिससे कि धुआं आपके नाक के जरिए, मुंह के जरिए आप में अंदर प्रवेश ना कर पाए। इसके अलावा लिफ्ट का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये और भी ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। अगर आप हैं बाथरूम में तो फिर क्या करें? अगर आप बाथरूम में हैं और अगर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो बाथरूम में जाकर दरवाज़ा बंद करें, नल या शावर खोल दें, इससे कूलिंग जो है वो बनी रहेगी। लेकिन सावधानी की बात यह है कि एग्जॉस्ट फैन कभी ना चलाएं, इससे धुआं अंदर भी खिंच सकता है, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन वैसे तो बाहर निकालने काम करता है, लेकिन इससे क्या होता है कि धुआं उल्टा अंदर आ सकता है, इसलिए एग्जॉस्ट फैन ना चलाएं। आग छोटी या बड़ी, सबसे पहले फायर ब्रिगेड को कॉल करना होता है। सो ये जानकारी अपने करीबियों के साथ में आप ज़रूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है कल कदार किसी ने नहीं देखा है कि कहाँ पे क्या अनहोनी हो जाए, लेकिन हमको रेडी हमेशा होना चाहिए। फिलहाल आप बने रहिए अपने 89.6 FM के मॉर्निंग वाले शो में मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ, और हम यूं गए और आपको यूं जबरदस्त गाना सुनाकर वापस से आ गए।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: डिलीशियस
4: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
5: Now you're listening Good Morning Gonda with your favorite Aajya Khan.
1: सुबह मुझे अचानक से बैठे बैठे ख्याल आया, क्यों ना आपको एक तोहफा दे दिया जाए। तोहफा? Hey, नाम सुनते ही देखिए आपके चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आ गई। भाई कोई भी होगा, जाहिर सी बात है तोहफा होता ही इतना प्यारा है। तो चलिए आपको 5 ऐसी गवर्नमेंट वेबसाइट्स के बारे में बताते हैं जो शायद आपकी लाइफ में काफी बदलाव ले आए। अब आप सोचेंगे कैसे? भाई उसके बारे में जब आप जानना शुरू करेंगे तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगाते जाएंगे कि आखिर ये वेबसाइट्स आपके लिए कितनी ज्यादा काम की हो सकती है। सो पहली वेबसाइट है स्वयं, SWAYAM, और इसकी वेबसाइट की बात करें एड्रेस, तो इसका एड्रेस है swayamswam.gov.in। ये वेबसाइट जो है ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की है जिसमें IIT, IIMs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व होती है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि भाई इसमें स्टूडेंट्स और जो जॉब चाहते हैं उनके लिए, वर्किंग्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए ये बेस्ट वेबसाइट है। इसके अलावा दूसरा है नाम स्किल इंडिया डिजिटल हब। जी हाँ, इसकी वेबसाइट है skillindiadigital.gov.in। सो ये वेबसाइट किस लिए है? सो 10th एंड 12th पास आउट के लिए, डिप्लोमास के लिए और ग्रेजुएट्स के लिए। इसमें क्या है, जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, इंडस्ट्री रेडी स्किल्स भी आपको सिखाई जाती है और अवेलेबल है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही उसमें। यानी आप स्किल इंडिया डिजिटल हब अगर देखते हैं, आप विजिट करते हैं, तो इस पे आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा दूसरा नाम आता है इसके बाद नेक्स्ट, नेशनल करियर सर्विस। जी हाँ, यानी इसकी वेबसाइट है ncs.gov.in। इस वेबसाइट पर आखिर क्या है? So, इस वेबसाइट पर जो है वो जॉब ढूंढने वालों के लिए, फ्रेशर्स के लिए और सभी एज ग्रुप्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा जॉब लिस्निंग्स हैं। इसके अलावा फ्री में रिज्यूम आप यहां पे बना सकते हैं, करियर काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं वो भी फ्री में। इसके अलावा गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स की भी वैकेंसीज आपको यहां मिलती है, और स्किल्स असेसमेंट टेस्ट भी अगर आप अपना चाहते हैं तो आप नेशनल करियर सर्विस यानी NCS की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगला जो नाम है वो है PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जी हाँ, इसकी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ्स और स्कूल ड्रॉपआउट्स के लिए ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ कम्प्लीटली फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और 8,000 से स्टाइपेंड, और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स भी हैं। सो यहाँ पर 300 से ज़्यादा स्किल्स कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद लास्ट नंबर आता है इग्नू का, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जी हाँ, इग्नू पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर वर्किंग के लिए रूरल के जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रामीण एरिया के रहने वाले, उनके करियर को चेंज करने का काम करती है ये वेबसाइट। सो ये वेबसाइट क्या क्या देती है भाई, यहाँ पे आपको UG-PG प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल जाता है, स्टडी फ्रॉम होम यानी घर से आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपको अटेंडेंस की भी चिंता नहीं होती है। इसके अलावा 200 से ज़्यादा प्रोग्राम्स यहाँ अवेलेबल हैं एंड सर्टिफिकेट प्लस डिप्लोमा प्लस डिग्री ये सब कुछ मिलता है, और रिकॉग्नाइज्ड है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से। सो कहीं ना कहीं ये 5 ऐसी वेबसाइट्स थी जिनके बारे में हमने बताया, और ये आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम की थी। पहली हमने बताया स्वयं, दूसरी बताया स्किल इंडिया डिजिटल हब, तीसरी बताया नेशनल करियर सर्विस, चौथी बताया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और पांचवी थी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये 5 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसपे आपके लिए बहुत कुछ है। सो आप भी ट्राई करिए और अपनों को भी रिकमेंड जरूर करिए। फिलहाल हम आपको रिकमेंड करते हैं ये नेक्स्ट सॉन्ग।
6: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
7: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

भाई देखने पे ख्याल तो आ ही जाता है किसी सिंगर ने ये गाना गाया था, लेकिन सोचिए एक आपको अगर ऐसे गांव ले चले जहां हर गली में हर चौक चौराहों से हर मोहल्ले से धुन की आवाज आती है, यानी संगीत का पूरा गांव। जी हाँ, और इस गांव को कहते हैं संगीतकारों का गांव, है ना, काफी इंटरेस्टिंग सी बात। जी हाँ, सो एक गांव जहां जाते ही हर घर से आपको तबला, सारंगी, हारमोनियम और अलाप के सुर सुनाई दे जाते हैं। यहां बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक हर कोई संगीत से जुड़ा है। एक ऐसा गांव जिसकी सांसों में संगीत बसता है। भारत के प्रमुख संगीत घरानों में से एक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का हरिहरपुर संगीत घराना। जी हाँ, दरअसल यहाँ के लोगों को संगीत और ध्रुपद गायकी की धरोहर अपने पूर्वजों से मिली है। संगीत के सम्मान में राजाओं ने इस गांव को 989 बीघा जमीन जागीर के रूप में भी दी थी। आज के युग में जहां शास्त्रीय संगीत लोकगीतों की आवाज धीमी हो गई है, ऐसे में यह गांव एक अनूठी मिसाल पेश करता है। जैसा कि हमने बताया, ये गांव अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि एक ऐसा गांव जिसकी गलियों में आप एंट्री करते हैं तो आपको कहीं से तबले की, कहीं से ध्रुपद की, कहीं से हारमोनियम की आवाज आ रही है। कितना सुंदर है, कितना मनोरम दृश्य होगा ये। और ये गांव कहीं और नहीं, अपने उत्तर प्रदेश के ही आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर गांव की ही हम बात कर रहे हैं। अगर आप गए हैं आजमगढ़ तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल संगीत की बात है तो चलिए संगीत में अंतराल के लिए हम चलते हैं अपने इस म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

0: मजा कर ले, लेकिन बस टीवी चालू मत करना।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.
2: अगर अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई बिना इंटरनेट के आप देख पाएंगे लाइव टीवी, सो क्या आप यकीन करेंगे? आप कहेंगे नहीं भैया, पिछले 2 महीने का रिचार्ज ही हम नहीं करा पाए, ऐसी कैसी मजाक करते हैं आरजे अदनान आप। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल फैक्ट बात है कि फोन पर बिना इंटरनेट के भी अब आप देख सकेंगे लाइव टीवी, यानी अपना फेवरेट प्रोग्राम। वैसे मेरा तो भाई डिस्कवरी हुआ करता था, और ऑफकोर्स जंगलों में कैसे सर्वाइव करना है ये जाना करते थे। हालांकि जंगलों के नाम पे हमारे घर के आसपास एक ही पेड़ है। बहरहाल देखने में क्या जाता है। तो भाई अब हम बताने वाले हैं आपको कि किस तरह से बिना इंटरनेट के आप लाइव टीवी देख सकते हैं अपने फोन पर। आप भी तो जानना चाहेंगे, है ना? यस, आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आप जरूर जानना चाहेंगे। सो जल्द ही आपके स्मार्टफोन पर फ्री लाइव टीवी चैनल आप देख पाएंगे। इसके लिए आपको ना तो किसी इंटरनेट की जरूरत होगी और ना ही कोई प्लान लेना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल गवर्नमेंट इसकी तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम लागू करने वाली है। इसके लिए 19 से ज्यादा शहरों में ट्रायल भी किया जा रहा है। प्रसार भारती के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस सिस्टम को लागू करने की जो रूपरेखा है, प्लान है, वो तैयार कर रहा है। यानी अब बिना इंटरनेट के आप अपने मोबाइल पर डायरेक्ट लाइव टीवी देख पाएंगे, अपना फेवरेट चैनल देख पाएंगे। वैसे आप भी कमेंट करके बताइए ना कि आपका फेवरेट चैनल कौन सा है।

आइयो, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जगाती है कयामत कोई।

0: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Arjun Khan. Arjun Khan.
1: जाने से पहले क्यों ना मैं आपको एक नगीना देता जाऊं। नगीना, लाइफ का नगीना। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि भाई आप अपना किरदार लोगों को कैसे बताते हैं उस हिसाब से आप खुद बनते जाते हैं। जी हाँ, यानी अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा बदनसीब या इवन गोंडा की लैंग्वेज में कह दे पनौती कहते हैं, तो कहीं ना कहीं किस्मत हमको वही बनाने भी लग जाती है, या यूं कहे कि आप वैसे होने भी लग जाते हैं। सो डिपेंड करता है कि आप अपनी कहानी लोगों को कैसे बताते हैं। सो अपनी कहानी में अगर आपने खुद को पूरी पूरी इज्जत दी है, जिसके लिए आप डिजर्व भी करते हैं, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ आपको वो चेंज दे करके जाती है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये गुड मॉर्निंग गोंडा शो आपको काफ़ी कुछ देकर जा रहा है। फिलहाल चूंकि अब चलने का वक्त हो गया है, तो मैं अब आपसे चाहूंगा इजाजत। आप लेकिन सुनते रहिए और बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो के बाद अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर, क्योंकि अब आ रहे हैं बहुत सारे अलग अलग शोज़।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800 8

0: 144416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 144416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
9: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
10: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
9: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
11: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
12: की गूंज, राव की गूंज, राव की गूंज।
13: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपकी समता गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद एक बार एक और नया एपिसोड हम सभी मिलकर ला रहे हैं, जिसमें फिर से बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों की माला को पिरोया गया है, जिसमें श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर मधुर आवाज में है और उनका साथ देने आ रही हैं जिमी जी, श्वेता जी और समता। आज का यानी कि नया एपिसोड हमारा गांव की गूंज का विषय है नैहर। नैहर का मतलब होता है कि जब अपनी बेटी जो होती है वो अपनी माँ के घर जाती है। तो आइए हम सभी गीतों के साथ एक बार फिर से आनंद उठाते हैं गांव की गूंज का ये नया एपिसोड।
14: अरे वाह, सब आ गए पर किरण दीदी नहीं आई, वो तो टाइम पर आ जाती हैं। आज कहाँ रह गई? जिमी जरा फोन लगा के पूछो तो।
15: ठीक है, पूछती हूँ संता जी।
16: अरे रुको रुको, हम जानते हैं किरण दीदी कहाँ है, वह रूठ कर नैहर चली गई है।
15: ये नैहर कहाँ है, कौन सी जगह है ये?
14: अरे बुद्धू, नैहर का मतलब मायका, अपनी मम्मी का घर होता है।
16: जीजा जी आजकल बाजार में समोसे बहुत खाने लगे हैं। किरण दीदी बस इसी बात से नैहर चली गई हैं।
15: मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। चलो चलो, हम लोग भी चलते हैं उनके गांव।
14: हाँ हाँ चलो, शीतल ठंडी हवा, पेड़ों की छाव का आनंद लेने। यहाँ तो एसी में भी गर्मी लग रही है।
2: भैया किरण दीदी नहीं है पर उनका लोकगीत।

0: किरण दीदी, कहाँ हो?
1: घर पर तो नहीं है।
0: अरे बगिया से गाने की आवाज आ रही है, उधर चलते हैं।
2: देखो कितने लोग हैं, रेनू भाभी भी आई है दिल्ली से।
3: समता, नेहा बुआ भी आई है, यह तो मुंबई रहती है, वहाँ से इतनी गर्मी में आई है।
0: पहले गाना सुन लेते हैं, फिर बताएंगे कि हम लोग आ गए हैं।

नेहा बुआ, आपको याद है रेनू भाभी हम लोगों के लिए हमरी गुलाबी चुनरिया खूब गाती थी और आज ही कितना गुस्सा होती थी ना, आपको याद है?

0: अरे तुम लोग कब आए और कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं?
1: अरे हम वो हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं।
2: हम लोग रूठी दीदी को मनाने चले आए।
0: ये है हमारी गांव की गूंज की टीम, समता, श्वेता, जिम्मी। नमस्ते नमस्ते।
3: यहाँ आप मस्ती कर रही हैं और बेचारे जीजा जी सूख कर कांटा होए जा रहे हैं आपकी याद में। किरण दीदी वह गाना पहली पठौनी ससुर मोरे आए सबको सुना दीजिए ना।

0: थैंक यू रेनू भाभी, लो सिकंजी पियो और ताजा खोया खाओ।
1: किरण दीदी, ये सारे बच्चे कितने शौक से शिकंजी पी रहे हैं, जबकि रहते मुंबई और दिल्ली में हैं।
2: डिम्पी, सौम्या, गोलू सब इतने खुश हैं, सुबह सुबह झील में जाकर तैरते हैं, गिल्ली डंडा खेलना सीखा इन्होंने, और आंधी में दौड़ दौड़ कर अमिया बटोरा है। शहरों में तो खुली जगह के लिए हम लोग तरस जाते हैं।
0: नेहा बुआ बता रही है कि दादी को सांस की तकलीफ है, रोज सुबह शाम इनहेलर लेना पड़ता है, पर जब से यहाँ आई है एक बार भी उन्होंने इनहेलर यूज नहीं किया है।
3: बच्चा पार्टी ने हमको भी अमिया खाने को दी, लो तुम लोग भी खा लो। पर प्लीज प्लीज प्लीज किरण दी, बगिया माँ छैया अपार हो गाना सुना दीजिए ना।

0: लो देखो, रूठी दीदी को मनाने जीजा जी भी आ गए, पर किरण दीदी ऐसे थोड़ी ही जाएंगी।
1: अरे क्यों तंग कर रहे हो इनको?
2: लो जी, हम तो आपका साइड ले रहे थे और आप हैं कि आपने पाला ही बदल दिया।
1: शर्त तो माननी पड़ेगी, पर पहले पानी तो पूछ लो। लीजिए, शिकंजी पीजिए।

0: बात, आप सॉरी बोलिए जीजा जी को और कहिए दीदी की हर बात मानेंगे हम।
1: किरण दीदी की ननद रानी अरुणी भी आई है भाभी को मनाने।
2: ननद रानी बहुत दिनों बाद आई है। किरण दीदी, ननद जी के लिए कुछ गाना हो जाए।

0: यह क्या खुसुर खुसुर हो रही है, क्या खिचड़ी पक रही है?
1: अरे दीदी कान छोड़िए, बताते हैं। आप सबको गांव घूमने का बहुत मन था ना? अरुणी को कच्ची अमिया खाना था और जीजा जी को तो खेत के मुलायम भुट्टे।
2: हमको गन्ने खाने का और जिमी को बरे। अरे वो देखो दादी बरे ले आई।
3: सॉरी किरण दीदी, हम सब ने मिलकर प्लान बनाया था, पर यहाँ आकर रेनू भाभी और नेहा बुआ सीधे मिल लिए।
2: दीदी गुस्सा मत होइए, तो एक बात बोले, जीजा जी बता रहे थे कि जब आप शादी के बाद आई है ना, तब से दो गाने आप बहुत सुनाती थी, तो प्लीज वो गाने आज सुना दीजिए।

0: जिम्मी, देख देख देख अरुणी, तुम भी आओ, देखो कैसे तालाब में भैंस और बच्चे एक साथ नहा रहे हैं।
1: किरण दीदी, अब तो मुस्कुरा दो, अरुणी बोल रही है, जो गाना है वो सुना दीजिए।

चलो चलो, रात हो रही है, तुम सबकी तो शहर पहुँच कर खबर लेंगे और आप और अरुणी को तो खाना ही नहीं देंगे। चलिए बताते हैं। हुक्के से खेलन जइबो।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

अरे अरे वेट, ज्ञानस्थली लाइव जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ खास जानकारियाँ आपके अपने ज्ञानस्थली डिपार्टमेंट से और सुनते हैं मोटिवेशनल स्टोरी। सो ये सब आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव में रोज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सो सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वक्त हो चुका है 12 यानी आपके अपने शो ज्ञानसी लाइव का। मैं हूँ आपकी आरजे आयुषी और आ चुकी हूँ आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के जो आपका दिमाग बिल्कुल हिला के रख देंगी। आज है दिन शुक्रवार और शुक्र है शुक्रवार आ जाता है जिसमें हम कई सारी बातें लेकर आते हैं जिससे आप अवेयर भी हो पाते हैं और साथ ही साथ उससे भी बड़ी चीज़ ये है भाई कि आपको साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। बिल्कुल भाई, इसी तरह आज भी इसी परंपरा को निभाते हुए आज भी मैं आई हूँ लेके कुछ बहुत ही बेहतरीन। सबसे पहले भाई कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा रहे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पर कल थोड़ी सी बूंदाबारी हुई थी जिससे थोड़ी राहत पहुँची थी, लेकिन राहत के साथ साथ उमस भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिसमें लोगों को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मौसम गड़बड़ा गया और रात में सभी को यही अंदाज़ा सबने लगाया कि शायद बारिश होगी, लेकिन बारिश ने फिर हमें चकमा दे दिया, फिर से बारिश नहीं हुई और वही सूर्य देवता कड़कड़ाती धूप के साथ अगले दिन यानी आज निकल आए। हालांकि भाई मौसम का तो ये चलता ही रहता है, कभी बनता है कभी बिगड़ता है, लेकिन हमारी और आपके बीच में जो बातें हैं वो कभी बननी बिगड़नी नहीं चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन और सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसी बातों को लेकर के आ जाए हैं। लेकिन यार एक बात बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि रात में नींद नहीं आई हो? ऑफ कोर्स होता होगा, आपकी उम्र भी तो हो रही है, लेकिन जो लोग की उम्र नहीं हो रही है मैं बताती हूँ कि भाई काफ़ी बार ऐसा होता है और हमें यूथ को या फिर हम कहें किसी भी जनरेशन को कोई ना कोई चीज़ वो सोचते ही रहते हैं और ओवर थिंकिंग आज के ज़माने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। जब हम रात में बेड पर जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती है और सोचते ही रहते हैं कि मैं ऐसी क्यों हूँ, ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, और न जाने कितनी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। या किसी ने कुछ बोला हो वो काफ़ी टाइम बाद आपको अचानक से याद आएगा कि भाई दो महीने पहले हमारी चाची जी आई थी जिन्होंने हमें कहा था कि बेटा थोड़ी सी मोटी लग रही हो, तो फिर आप अपने आप को शीशे में देखने लग जाते हैं रात में उठ के कि भाई कहाँ से मोटी हुई हूँ, चाची को कैसे मोटी लग गई, अरे अगर मैं मोटी हो गई कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए। लेकिन भाई बीमारी तो बाद में होगी, लेकिन सोचने की बीमारी आपको पहले हो जाती है। देखिए आज हम आपको मतलब ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं होता, आज हम आपको साइकोलॉजी बताएंगे कि जो चीज़ आप ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ होता है असल में वो सभी के साथ होता है। कुछ हमारी लाइफ की ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए जो साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि भाई हमारी ज़िंदगी के पीछे एक पूरी साइंस है। और आज के शो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट की जो साइंटिस्ट ने सालों रिसर्च करने के बाद डिस्कवर किया था। लेकिन ये कोई ड्राई फैक्ट्स आपको नहीं सुनाने वाली हूँ, मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स भी दूंगी जो आपको सुनना चाहिए और उससे आप रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि जब साइंस अपनी ज़िंदगी में आती है ना तो भाई ज़िंदगी बड़ी अतरंगी हो जाती है, हम ज़िंदगी को सही से समझ जाते हैं। तो भाई कंफर्टेबल हो जाइए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, भाई आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। अब आपकी साइंस वाले टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, कोर्स पढ़ाया होगा, लेकिन आप ही जो है एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में या फिर स्कूल डेस्क के नीचे आपने जो है लंच बॉक्स खाने में बिजी होंगे और इसीलिए आपने सीखा नहीं होगा। चलिए आज हम बता देते हैं, आज आप लंच करते करते मेरी बात सुनिए और बातों को सुनिए और जानिए कि आखिर साइंस क्या कहती है, साइकोलॉजी क्या कहती है हमारी ज़िंदगी के बारे में। इस पर हम बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस उठना है और अपने किचन में जाना है कि भाई लंच का टाइम हो चुका है। हम इंडियंस का जो टाइम रूटीन है वो कहीं ना कहीं बदलता जा रहा है। पहले के ज़माने में हमारे जो दादा दादी थे वो 12 बजे तक लंच कर लेते थे और कोई ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे लोगों का एक रूटीन सेट होता था कि 7 बजे नाश्ता करना है, 12 बजे लंच करना है, 4 बजे शाम का नाश्ता करना है और 8 बजे तक हमें रात का डिनर कर लेना है। लेकिन आज के टाइम में रूटीन बदलता जा रहा है, लेकिन अब मैं आपका रूटीन ठीक करवाऊँगी। जाइए अपने किचन में और अपना लंच निकालिए और लंच लेके बैठिए और सुनिए आपका अपना शो ज्ञानश्री लाइव जिसमें आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी की।

वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी इस बेहद ही खूबसूरत गाने के बाद आपकी आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानसी लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं भाई कुछ फैक्ट्स की। जी हाँ, फैक्ट्स जो कि आपके दिल को दहला देंगे। भाई कोई बुरी खबर नहीं है, खबर तो सारी ही अच्छी है, लेकिन अभी हमने खबर सुनानी शुरू ही कहाँ की है। बिल्कुल सुनाएंगे भाई, चलते हैं और शुरू से शुरू करते हैं, यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, पैदा होने से भी पहले। अब आप सोचेंगे कब, बहुत पहले जा रही है क्या? नहीं नहीं नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। हम चलते हैं पहले फैक्ट्स की तरफ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। देखिए, गर्भ में रहते हुए बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचानना शुरू कर देता है। आपने सुना तो होगा अपनी दादी नानी से कि अपना माहौल अच्छा रखो, वही बात करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, जिससे कि बच्चे में संस्कार आ जाए। तो वो ऐसे ही आता है कि बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचानने लगता है। सोचिए, जो बेबी अभी दुनिया में आया भी नहीं है, वो ऑलरेडी अपनी माँ को जानता है ना? थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैजिकल नहीं लग रहा है कि भाई वो आया ही नहीं, अपनी माँ को अभी से जानने लग गया? इसलिए जब नर्स हॉस्पिटल में बाकी लोगों की गोद में देती है बच्चे को, तो बच्चा रोता है, लेकिन जब अपनी माँ की गोद में आता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल चुप, एकदम रिलैक्स हो जाता है कि हाँ भाई, हमारा कोई अपना मिल गया। वो आवाज़ उसे घर जैसी लगती है। उसके बाद अगर हम दूसरे फैक्ट्स की बात करें, तो भाई 0 से 3 साल के बच्चे, यानी कि जो जस्ट पैदा हुए हैं, और पैदा होने के बाद 3 साल में जो बच्चे का दिमाग होता है, वो इतनी तेज़ी से बनता है जितनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं बनता। यानी आपको लग रहा है कि अभी तो बच्चा छोटा है, क्या ही समझ रहा होगा, क्या ही सीख रहा होगा, लेकिन इस दौरान बच्चे का दिमाग का विकास बहुत ही ज़्यादा जल्दी से होता है। इसीलिए छोटे बच्चे इतनी जल्दी लैंग्वेज सीखते हैं, जो अडल्ट्स को सालों लग जाते हैं सीखने में। अब आप इस उम्र में, अगर आप एक यंग हैं, अगर आप थोड़े और बड़े हैं, 30-35 साल के हैं, और अगर अभी आप कहीं बाहर की नहीं, आप सिर्फ इंडिया की ही कोई दूसरी लैंग्वेज आप सीखने जाएंगे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन एक बच्चा कुछ ही दिनों में तुतलाना शुरू करेगा, धीरे धीरे अपनी बातों को बताना शुरू करेगा, और धीरे धीरे वो पूरा सेंटेंस भी बनाना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए आपको अभी तक ये खुद ही समझ जाना चाहिए कि दिमाग कितना ज़्यादा तेज़ से विकास करता है बच्चों का। इसीलिए छोटे बच्चे जल्दी लैंग्वेज सीख जाते हैं, जो अडल्ट्स को सालों लग जाते हैं और वो सीख नहीं पाते। उसके बाद चलते हैं हम, जो बच्चे अर्ली एज में प्यार और सिक्योरिटी फील करते हैं। अब आप सोचेंगे, यार जी आयुषी क्या कह रही है, बच्चे कहाँ प्यार फील करेंगे? भाई यहीं तो मार खा जाता है ना इंडिया। देखिए, प्यार सिर्फ एक ही प्यार नहीं होता जो हमें पार्टनर से चाहिए, प्यार काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी टाइप का होता है। देखिए, हम अपने माँ बाप से भी प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से भी प्यार करते हैं, अपने भाई बहन से भी प्यार करते हैं, और अपने पार्टनर को भी प्यार करते हैं। और अकॉर्डिंग टू साइंस, ये सभी प्यार सेम होता है। जब हम किसी से लव फील करते हैं या किसी को प्यार देते हैं, सेम ही हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है। लेकिन हमारे पार्टनर से अगर हमारी नीड्स ना हो, तो अब हम देखिए, अगर हम इसको आपको सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूँ, तो पार्टनर से हमें बस एक मैच्योरिटी चाहिए, हमें हमारी ज़िंदगी यापन करने के लिए कुछ जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरे करने की भी हमारा वो एक सोर्स होता है। लेकिन हम प्यार तो सभी से करते हैं ना, वही सेम प्यार होता है, और वही बच्चे भी अर्ली एज में फील करना स्टार्ट कर देते हैं। और रही बात बच्चों की, अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो वो अपने माँ बाप से ज़्यादा सिक्योरिटी फील करते हैं। वो बड़े होकर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बेटर रिलेशनशिप भी बना लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है, जब वो होता है, तो वो अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करता है, उनके ही गोद में जाके शांत होता है। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, दूसरा उसे जो है ये सिक्योरिटी अपने माँ के ही पास मिलती है। जैसे जैसे वो अपने पिता के करीब आता है, तो धीरे धीरे वो सिक्योरिटी उसके पिता के साथ भी बन जाती है। हर रिश्ते में ये अटैचमेंट थ्योरी लागू होती है। अगर आप किसी की भी बात करें, जहाँ आपको प्यार मिलेगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आप उसी रिश्ते में जाना पसंद करेंगे। और ये सब आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि भाई आपके आसपास ऐसे कौन से रिश्ते हैं जिसमें आप सिक्योर फील करते हैं। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आऊँगी मैं आपकी आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्त्री लाइव। और फिलहाल आपको छोड़ जाती हूँ इस बहुत ही प्यारे से गाने पे, जहाँ आके हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया आपको, लेकिन कोई नहीं भाई, एंटरटेनमेंट तो चलता रहेगा लेकिन ज्ञान के साथ।

चांद से। हाँ जी दोस्तों, भाई पूछ लीजिए चांद से गिनती हूँ तारे। बिल्कुल भाई, देखिए चांद को देख के हमारे जो इमोशन है ना वो कुछ ज़्यादा ही पीक पे हो जाते हैं। और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो चांद होता है वो इमोशन से रिलेटेड होता है। लेकिन हम भाई आज एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ये सब कुछ नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ आज साइंस की तरफ बात करेंगे, एक अलग साइंस जो कि हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, यानी कि साइकोलॉजी से। अब हम बात करने वाले हैं उस उम्र की जिसे याद करते हम लोग मुस्कुरा उठते हैं, हम शर्मा जाते हैं, वो है टीनेज। देखिए भाई, हमें और मुझे जो मेरे टीनेज में हुआ है और जो आपके में हुआ होगा, आपने कई सारी चीज़ें की होंगी जिससे आपकी कई सारी यादें भी बनी होंगी और आप आज भी उसे सोच के मुस्कुरा उठते हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो बहुत ज़्यादा अनोखी हैं, चटपटी हैं, उन्हें याद करके आप शर्मा भी जाते होंगे। बिल्कुल ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो चलिए कुछ जानते हैं कि उस उम्र में क्या ऐसी साइकोलॉजी होती, क्या साइंस होती है जो होती है पर हम उसको जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। देखिए अगर मैं अगले फैक्ट की बात करूँ तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि इंसान का ब्रेन पूरी तरीके से 25 साल की उम्र तक कंप्लीट होता है। यानी कि जिन्हें लगता है ना कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन जल्दी ले सकते हैं, लाइफ डिसीजन यानी बड़े बड़े डिसीजन आप अकेले नहीं लीजिए, आपको किसी ना किसी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी अगर आप 25 साल से कम हैं। क्योंकि 25 साल से पहले अकॉर्डिंग टू साइंस आपका फ्रंटल लोब जो कि दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए ज़िम्मेदार होता है, वो 25 साल तक डेवलप नहीं हुआ होता है। खास तौर पे वो पार्ट जो डिसीजन लेता है वो सबसे आखिर में मैच्योर होता है। तो तब तक जब मतलब आपके घर में कोई 16 का था और उसने कुछ अजीब डिसीजन लिया तो वो बेवकूफ़ी नहीं थी, उसका दिमाग लिटरली अभी बन रहा था। आपने काफ़ी बार लोगों को कहते सुना होगा कि अरे तुम चुप रहो, और स्पेशली जो लोग टीनेज में होते हैं, तो भाई मैंने ये खुद भी सोचा, मैं खुद भी जानती हूँ। अगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी कहानी बताऊँ, भाई जब मैं भी अपनी टीनेज में थी तब भी अगर मैं अपनी फैमिली के कुछ डिसीजन में कुछ बोलती थी तो हमारे घर वाले एक ही चीज़ कहते थे, अच्छा ठीक है तुम ज़्यादा ना कहो, चाय बना के लाओ। तो वो बच्चों में टाल देते थे, तो वो जानते थे कि भाई इनका जो दिमाग है वो अच्छी तरीके से अभी डेवलप नहीं हुआ है, अभी इतनी तरीके से डिसीज़न नहीं ले सकते। और वही कुछ हमारे साथ होता है। और यही मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगी जो लोग ये समझते हैं कि नहीं बच्चे अब काबिल हो गए हैं, अब 18 के ऊपर हो गए हैं, अब इतना समझना चाहिए, अब समझदार बनो। समझदार कोई 25 साल से पहले नहीं बन सकता, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जब तक आप खुद मैच्योर ना हो जाओ, दिमागी रूप से सही ना हो जाओ, दिमागी रूप से सही का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हैं अभी, मतलब दिमागी रूप से मैच्योर ना हो जाओ, तब तक आपको अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन जिसमें अपनी कोई इन्वेस्टमेंट हो गई, शादी हो गया, करियर हो गया, मतलब करियर तो आप कर ही रहे हैं लेकिन आपको आगे फैमिली प्लानिंग, इसके लिए थोड़ा सा आपको 25 के बाद ही सोचना चाहिए, क्योंकि तब आप बहुत बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। और अगर मैं बात करूँ अगले फैक्ट की, तो इस उम्र में पीयर प्रेशर सबसे ज़्यादा काम करता है। दोस्तों दोस्त क्या सोचेंगे, क्या सवाल खाने से ज़्यादा ज़रूरी है, या क्या चीज़ें हैं, क्या करें क्या ना करें। इसीलिए बच्चे वो कपड़े पहनना चाहते हैं जो दोस्तों के पसंद का है, वो दूसरों को खुश करने के लिए अपने काम करते हैं, वो बोलते हैं जो दूसरे सुनना चाहते हैं, वो म्यूज़िक सुनते हैं जो ग्रुप में पॉपुलर हो, जो लोग ज़्यादा सुन रहे हों, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, जो कि भाई हमारे साइकोलॉजिस्ट एरिक्सन एक बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। देखिए एरिक्सन कहते हैं कि टीनेज में सबसे बड़ा काम है मैं कौन हूँ का जवाब ढूंढना। जी हाँ, मैं कौन हूँ। अब भाई मैं, अब कई लोग सोचेंगे अरे मैं कौन हूँ तो जवाब बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, मैं आयुषी हूँ, आप कौन हैं, आप ये हैं, आप अपना नाम बोल देंगे, लेकिन आपका पर्पस क्या है, आप रियल में आपकी आइडेंटिटी क्या है। देखिए सिर्फ आइडेंटिटी नाम से नहीं होती, वो तो एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है आपकी आइडेंटिटी का। आप कौन हैं, आपको सारी चीज़ें ढूंढना होता है। जो ये जवाब ढूंढ लेता है वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो ढूंढ नहीं पाता है वो आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसा रह जाता है कि आखिर मैं कौन हूँ। चाहे वो 30 साल का हो जाए, 40 साल का हो जाए, उसके दिमाग में कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है। अब आप सुने हैं, अब आप समझे हैं, तो भाई आप ये सोचिए कि आप कौन है। भाई मुझे तो पता है मैं कौन हूँ, लेकिन आप कौन है ये भी आप ज़रूर सोचिए। सोचने के लिए आपको वक्त देती हूँ, और एक वक्त नहीं, एक म्यूज़िकल वक्त देती हूँ। भाई थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्स करिए और सोचिए कि आप कौन है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे बात करेंगे और भी सारी बातों की, और स्पेशली आपकी उस कमज़ोर चीज़ की जो मुझे पता है। अब आप सोचेंगे इनको कौन सी कमज़ोर कड़ी पता है, मुझे हर घर की खबर रहती है। भाई मैं बहुत ज़्यादा वो गाँव की परपंची औरत
औरत की तरह हूँ, मुझे हर घर की खबर है, तो आपकी कमजोरी की भी खबर मुझे है, उस पर हम बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानसी लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं आपके कुछ जीवन से जुड़े हुए फैक्ट्स की। और अब हम बात करते हैं आपकी कमजोरनेस की। देखिए भाई, हमें घर घर की पता है कि कौन इंसान की क्या कमजोरी है और किस पे वो इंसान थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। लेकिन पता है, हमारी इंडियन सोसाइटी में ये बहुत ही अजीब चीज़ है जो कि हमारे सिर्फ इंडिया में पाई जाती है कि आदमियों के इमोशन नहीं होते, वो कुछ फील नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, मर्द है को मतलब मर्द है तो उसे दर्द हो नहीं हो सकता, मर्द रो नहीं सकता, वो उनके पास इमोशन नहीं होता। भाई ऐसा कौन सा इंसान है जिसके पास इमोशन नहीं होता? और अगर नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर आपके अंदर इमोशन और फीलिंग नहीं है। एक सवाल आपको कभी किसी ना किसी ने तो ज़रूर बोला होगा, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कि इतने सेंसिटिव मत बनो, रोना बंद करो, कमज़ोर हो। अरे भाई ये तो बड़ी ही कमज़ोर इंसान है, छोड़ो इसको। लेकिन भाई अब सुनो नेक्स्ट वाला फैक्ट। देखिए, जो लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, रो लेते हैं, बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, वो मेंटली कहीं ज़्यादा हेल्दी होते हैं उस इंसान के कंपैरिजन जो इंसान बहुत ज़्यादा सख्त बनने की। देखिए भाई, जाकिर खान को देख के हम सभी को सख्त लौंडा बनने की तो बड़ी ही चुलमची हुई है कि हमें सख्त रहना है, हम बिल्कुल नहीं पिघलेंगे। और अपने इमोशन को, भाई इमोशन हमें वीक नहीं कर सकता, इमोशन कभी आपको वीक नहीं करता है यार। बस बात इतनी है कि हम इन चीज़ों को सही से समझें। अगर आपको हेल्दी रहना है, मेंटली फिट रहना है, तो आपको अगर रोना आ रहा है तो रोइए, अगर आप कुछ कहना है तो कहिए, अगर आपको लिखना है, फीलिंग एक्सप्रेस करना है, तो उसे अपने से आगे बढ़ के ज़रूर करिए, क्योंकि इससे आप मेंटली फिट रहते हैं। क्योंकि जब आप दर्द अंदर दबा के रखते हैं और वो ख़त्म नहीं होता है तो वो बॉडी में स्टोर हो जाता है, एंजाइटी, हेडेक, एंगर बन करके। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने इमोशन को दबा के रखते हैं ना, कि अरे दबा देते हैं, थोड़ी दिन में अपने आप ही इमोशन चला जाएगा, नहीं उस पर ध्यान देंगे अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन देखिए, कभी भी कोई इमोशन जाता नहीं है, वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने ज़रूर आता है। और ये भी एक फैक्ट है कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं और अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आपको थ्रॉट से जुड़ी हुई, थायराइड हो गया या गले से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो सकती है, जो कि एक फिज़िकल बीमारी के रूप में आपके सामने आएगी। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मजबूरन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको चेस्ट के प्रति, मतलब चेस्ट का कोई बीमारी आपको ज़रूर हो जाएगी। कुछ ऐसे इमोशन हैं जो आप नहीं झेल नहीं पा रहे हैं, आपको बस वहाँ रुक के देखा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें फील कर रहे होते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, ना हम रो पाते हैं, ना हम कह पाते हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी बन के हमारे सामने ज़रूर आती है। इसीलिए भाई मेंटली आप फिट रहेंगे तो ही आप फिज़िकली फिट रह सकते हैं, नहीं तो ये आपको हेडेक, एंगर, एंजाइटी, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ऐसी सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि भाई देखिए, आप सभी ने एक लाइन ज़रूर सुनी होगी और काफ़ी बार हॉस्पिटल की दीवारों पे भी आपने ये चीज़ें लिखी हुई ज़रूर देखी होंगी कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो दिल ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो भाई ये चीज़ कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, फैक्ट है और साइंटिफिकली प्रूवन है। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, वो है हमारे सेल्फ़ एस्टीम का। जी हाँ, खुद पे भरोसा, ये बचपन में बनता है जब किसी टीचर ने कहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, या माँ बाप कहते हैं कि तुम हमें शर्मिंदा करते हो, तुम्हारी वजह से हम लोगों से नज़रें नहीं मिला पाते हैं, तो वो बातें सालों बाद भी आपके दिमाग में घूमती रहती है। इसीलिए बच्चों से बात जो भी करें तो थोड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि भाई उनके दिमाग में सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। आप अभी कितने बड़े हैं, आप टीनेज क्रॉस कर चुके हैं, 20 क्रॉस कर चुके हैं, 30 क्रॉस कर चुके होंगे, लेकिन आपको वो चीज़ें अभी भी बिल्कुल क्लियर याद होगी कि आपके माँ बाप ने कभी आपको डांटा था, ये लाइन कही थी कि तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है, तुम हमें हमारा सर झुका के चलना चाहते हो, या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इमोशनली हर्ट किया होगा, वो आज भी आपको उतनी ही बेहतर तरीके से याद होगा। क्योंकि ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। देखिए, कैरोल ड्वेक की एक रिसर्च थी, ये एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं, इनकी एक रिसर्च थी ग्रोथ माइंडसेट को लेकर कर। देखिए, ग्रोथ माइंडसेट होता है, ऐसे जो लोग होते हैं जो फेलियर को मैं गलत हूँ नहीं बल्कि मुझे अभी और सीखना है ये मानते हैं, तो वो आगे चल के कुछ सीखते हैं। फेलियर उन्हें तोड़ता नहीं बल्कि सिखाता है, और ये कहीं ना कहीं हम सभी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहिए। आज के ज़माने में जब बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, उनके रिज़ल्ट आते हैं, तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, तो ये चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा इसकी कमी पाई जाती है। वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज के हैं,
लेकिन उनमें ग्रोथ माइंडसेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक छोटे से एग्ज़ाम से अगर आप सुसाइड कमिट कर लेते हैं तो अपने आप लाइफ के और भी सारी चीज़ों को, और भी सारी जब लाइफ में चेंजेस होंगे तो आप उनको नहीं झेल पाएंगे। इसीलिए जब भी अगर आप अपने बच्चे में या फिर किसी में भी ये माइंडसेट देखो कि नहीं मेरे से कुछ नहीं होगा, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पास और कुछ नहीं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो उसको कोशिश करें कि आप बदल दें कि अभी आपको और कुछ सीखना है। और एक बहुत मशहूर लाइन मैंने कहीं सुनी थी कि जब ऊपर वाला आपके लिए सब दरवाजे बंद कर देता है तो एक कहीं ना कहीं खिड़की ज़रूर खुली छोड़ देगा। और ये बात दरवाजे और खिड़की की नहीं है, ये बात है कि आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए। फ़िलहाल ये थॉट के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आऊँगी मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट की। इन चीज़ों को समझिए, जानिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में लागू करिए।

हाँ जी दोस्तों भाई, कश्मीर और कन्याकुमारी जैसी यारी होनी ही चाहिए भाई। एक सीधा रास्ता जो कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और उन दोनों में प्यार उतना ही है। दो दो अलग चीज, अलग सी चीज़ें, एक नॉर्थ में एक साउथ में, लेकिन कश्मीर और कन्याकुमारी तो भाई उनका क्रेज़ हमेशा से चलता है, चाहे पहले की मूवी में देखेंगे तब भी, और ये जो गाना सुन रहे थे चेन्नई एक्सप्रेस का, इसमें भी। अब चलते हैं हम हमारे फैक्ट की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों एक चीज़ बताइए कि आखिरी बार कब किसी दोस्त के साथ आपने घंटे भर बात बिना फ़ोन स्क्रॉल किए होगा। याद है ना वो फीलिंग, वो हकलापन जो आप बात करते हुए हकलाते हैं। जी ये आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, और हम सभी के साथ होता है। ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। हाँ भाई, वो सुकून, वो फीलिंग अलग ही होती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ जो कि कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। वो है कि भाई हार्वर्ड ने 80 साल तक एक स्टडी की। आप सोचिए, स्टडी 80 साल तक हुई है तो बड़ी तो ज़रूर होगी। दुनिया की एक सबसे लंबी साइकोलॉजिकल स्टडी, और रिजल्ट था कि अच्छे रिश्ते ही इंसान को खुश और लंबी ज़िंदगी देते हैं। पैसा, फेम, सक्सेस, ये सब सेकेंडरी हैं और रिश्ते प्राइमरी हैं। हालांकि जिस फैक्ट, जिस रिसर्च में 80 साल लग गए, ये हमारे भारत के बुज़ुर्गों ने पहले कर दिया था कि भाई अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दें। आज काफ़ी लोग कहते हैं कि रिश्तों को अहमियत दें, और हम ये सब जानते भी हैं, लेकिन हमें तो प्रूफ चाहिए ना। इसीलिए अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दें, लेकिन उन रिश्तों को जो उसके काबिल हों। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर रहा है, आप एग्जॉस्ट फील करते हैं उनके सामने और आपको अच्छा नहीं लगता, उन रिश्तों को अपनी ज़िंदगी से हटा दें। और काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई जो बहुत ज़्यादा दुखी आत्मा होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन भाई आपके आरजे आयुषी ने एक लाइन पढ़ी थी कि

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बात करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी के सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नई है, कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं और कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी

0: स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, यानी कि हमारी टीकन भाभी जी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुँचने की कहानी। टीकन भाभी, उससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजी, और मैं तो यही कहूँगी कि किसी भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा करें तो माँ बाप डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है, पर यहाँ दिक्कत ये है कि गाँव के लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़ कर बैठ गए हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इन सभी अफवाहों के बीच छिप गया है। आज हम उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है, माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलती हूँ आज मैं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।
2: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस यह कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए।
1: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं हो पाती होगी, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये एक HPV है या जो भी नाम है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन कर दिए हैं और कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब बच्चे इतने छोटे हैं, कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं, कोई कह रहा है बांझ हो जाएगी बेटियां, किसकी सुने। यह तो बहुत बड़ा निर्णय लेना है।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखो, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे मान लें कि क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े ही हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता है। हमारे पास अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है। ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और आखिर में क्या क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूँ, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर क्यों आजमाते हैं, यह भी मन में आता है। ऊपर से यह भी सुनने को मिलता है कि पहले 3 डोज लगी थी, अब बोल रहे हैं, कोई कह रहा है यह जल्दबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी एक डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं है। दुनिया भर में शोध, सुरक्षा, निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर हमें तो यही डर लगा रहता है कि कहीं आगे चलकर शादी ब्याह में बिटिया को या बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है, पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और फिर पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका कोई आधार नहीं है।
0: यह बिंदु महत्वपूर्ण है, आज माँ है। ये वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाहों के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK यानी कि सेहत सही लाभ कई की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठी है, पर पीरियड्स के बारे में क्या? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और ये पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे ही समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है और सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: हाँ जी टीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: लेकिन एक बात और, अगर यह इतना अच्छा है तो खर्च कितना आएगा? सच कहूँ टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी भी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज, लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। और यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में मुफ्त है?
1: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर, और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल से पूछो, डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो, फॉरवर्ड भेजने वालों से क्या पूछना।
2: सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने, कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, और फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो, लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर ही आकर गिरती है।
1: इसलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो, ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का भी फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी, बाकी सब तो शोर है।
0: श्रोताओं जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए, तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे, इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो फिर मैसेज आया, पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था, या बताओ क्या माने क्या ना माने।
1: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये साबित नहीं होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात तो ये है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण और समीक्षा। अफवाह क्या करती है, एक घटना उठाती है, उसे बढ़ा चढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहाँ क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या HPV वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर कोई असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी चल सकती हूँ।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूँ, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं गलत फैसला न ले लूँ।
1: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूर दृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों जानकारियों मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होता है। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, ना कि अफवाह। और सही जानकारी ही लाभकारी होती है, इस बात का पूरा ख्याल रखिए।
2: टीकन भाभी, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। यह बात तो मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि अब बस बचना मुश्किल है।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
2: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
0: यही SSLK यानी कि सेहत सही लाभ कई का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं कि आखिर में सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहाँ डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना कहूँगी ना हाँ कहूँगी, लेकिन एक बात पक्की है, हाँ फॉरवर्ड मैसेज देखकर फैसला नहीं करूँगी।
1: बस यही जीत है, सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
2: और अगर डॉक्टर वही कहें जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कह दूंगी कि फालतू के इधर उधर के तथ्यों को न देखो और न उन पर ध्यान दो।
1: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
0: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहाँ। ये गलत फहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित ना रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों को होती है, पर जब घर में किसी को कुछ होता है तो समझ में आता है कि बीमारी जात, धन और जगह देखकर नहीं आती।
1: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुँच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
2: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
1: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो भी पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो, जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
0: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी तो उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, वैज्ञानिक यानी विज्ञान और प्रमाण से गाइडेंस होने के बाद ही होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वह तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
1: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुँचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोसी, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोलें।
2: अच्छा भाभी, अगर मेरी बेटी मुझसे पूछे कि अम्मा आप पहले डर क्यों गई थी, तो मैं क्या कहूँ उससे?
1: कहना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर बात कही आपने भाभी, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की भी बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो, यही संवाद भविष्य बदलता है।
1: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती है हमें ये सब नहीं आता, वहाँ भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो, जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई है।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है, डर अभी भी है पर अब डर के सामने जवाब भी है।
1: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंच सकता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी, आपका और सुनीता जी का, आप दोनों का ही शुक्रिया। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातों को संक्षेप में मैं आपसे कहना चाहूंगी। पहली बात यह है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी बात, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी बात, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी बात, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठवीं बात, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से भी एक बात, माँ होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुँचना, वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ में पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर सही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य केंद्र, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही है, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक के लिए याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है, तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की सही जानकारी लें। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं है, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM के साथ सीधा संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे,
3: क्योंकि सेहत ही असली धन है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके
4: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे, और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई

0: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है। जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: अरे सुना?
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। क्या हाल है भाई आपका और हमारी इस बुलंदी आवाज के पीछे का राज और दुख दर्द की कहानी बहुत लंबी चौड़ी
3: जो यहाँ पे बयान नहीं कर सकते, भी नहीं हो सकती।
2: बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, बहुत कुछ है, बट हम आ गए हैं फिर से आपके सामने, आपके आपके साथ रूबरू होने। हम दोनों सहेलियां आपके पसंदीदा शो जिसका नाम है
1: सुन सहेली।
2: यस यस यस, सुन सहेली में हम दोनों लोग आ गए हैं और कड़ी धूप में। और कहते हैं ना कि जब वो कौन सा डायलॉग है किस मूवी का कि जब हम किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है वो झुक जाती है, मिल जाती है, क्या है डायलॉग?
3: जब आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती
2: है ना। हाँ। कुछ ऐसा ही है, बट यहाँ कुछ ऐसा सीन नहीं है, बट फिर भी हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से आप लोगों से मिलने
3: तक पहुँचने की कोशिश
2: की करते हैं और आ जाते हैं। और वो शिद्दत इस तरीके से हो जाती है कि धूप अपना रास्ता नहीं रोकती है, नहीं धूप अपना रास्ता रोकती है, जिससे हम लोग आते हैं साधन से वो साधन नहीं मिलते हैं, और गली में गाय कुत्ते सब मिलते रहते हैं लेकिन फिर भी हम लोग उनको चीरते हुए आपसे मिलने के लिए उतारू हो जाते हैं।
3: बिल्कुल,
2: तो फाइनली हम दोनों लोग फिर से आपसे मिलने के लिए आ गए हैं। आप सभी लिसनर्स का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में, हम दोनों सहेलियों का। एंड इस प्यारी सी दोपहर में, प्यारी सी दोपहर हाँ कह सकते हैं यार,
3: थोड़ी सी
2: नहीं कह सकते अंशिका, क्योंकि पता है धूप ना हमारे लिए इस समय गर्मी है ना।
3: हाँ।
2: अगर सोचो धूप ना निकले तो खेत में अनाज कैसे पके?
3: जी जी,
2: है ना, तो धूप भी, धूप का भी आह्वान करना चाहिए। थैंक यू ईश्वर, आपने धूप दिया, बट थोड़ी सी बारिश अब कर दीजिए क्योंकि अब अत्यंत गर्मी हो गई है और सभी परेशान है। हमारे मानव निर्मित जो लोग हैं वो सारे परेशान हैं, यहाँ पृथ्वी के जो मानव हैं वो सभी परेशान हैं। उन पर थोड़ी सी कृपा अपनी बरसाएं और थोड़ी सी बारिश कर दे, लेकिन इस दोपहर में आइए विश करते थे एक साथ एक ही फ्रेम में हम दोनों लोग,
3: शुभ दोपहरिया लिसनर्स। और बिल्कुल आ गए हैं हम, और बिल्कुल टाइम पे हैं और बिल्कुल सही और ट्रैक पे भी हैं। और आज आप सभी को जैसे कि पता है कि आपका फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ, अच्छी अच्छी वाइब्स के साथ आपकी दोनों सहेलियां हाजिर हैं। तो आज हम रिश्तों से अपने स्टूडियो को भी महकाएंगे और आपके घर में अपनी आवाज़ से आपके घरों को भी महकाएंगे।
2: फिलहाल परफ्यूम से महक चुके हैं स्टूडियोस।
3: बिल्कुल, तो वैसी ही कुछ प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आपके घरों में भी आएगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा।
2: क्या?
3: हमें सुनना पड़ेगा।
2: अच्छा, हाँ जी, पहले तो सुनना पड़ेगा और उसके बाद से चैट बॉक्स में आकर के उनको बारी बारी मैसेजेस करने पड़ेंगे। हमारी कोई बात अगर आपको बुरी लगती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको सबसे अच्छी कोई चीज़ हमारी लगी हो, अंशिका की लगी हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे लिए कोई फीडबैक हो, हमारे लिए कोई अच्छा सा और आगे बढ़ने की पुश करने के लिए, कुछ प्रोग्राम को और इम्प्रूव करने की मैसेजेस हो सकते हैं आप, मतलब व्हाटएवर कुछ भी, मतलब आप मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ नहीं कर सकते हैं जो कि है अंशिका की बुराई, जो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो चलिए, देखो मैंने कह दिया लेकिन इसके मुंह से नहीं निकला कि मैं भी नहीं सुन सकती हूँ आज समता की बुराई।
3: आज समता की बुराई कोई करेगा ही नहीं, सुन सकते या नहीं सुन सकते ये तो
2: नहीं, वो अलग मैटर है, वो डर का मैटर है, वो डर का माहौल बना हुआ है, वो अलग मैटर है।
3: गलत है मैम, डर नहीं है। देखिए, बुराई हम कब करते हैं, जब कोई इंसान गलत होता है तब हम उसे कहते हैं कि उसके अंदर ये बुराई है, लेकिन आपको तो कोई कहेगा ही नहीं, कह ही नहीं सकता।
2: ऐसा नहीं है, कोई ऐसा निर्मित है ही नहीं, मतलब पंच तत्वों से बना हुआ इंसान है और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें कोई बुराई ना हो, ऐसा कुछ नहीं है।
3: ओके,
2: बुराइयां सब में होती हैं,
3: आप में भी है,
2: मेरे में भी है, लेकिन वो अलग मैटर है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने और कहने की हिम्मत नहीं होती है।
3: ओह,
2: वो मैंने फियर बना के रखा हुआ है, जैसा कि अंशिका डरती है बहुत मुझे से, ऐसा लोग कहते हैं बट मुझे नहीं लगता कि ये डरती है। फिलहाल हम आते हैं अपनी ट्रैक पे और आज के अनमोल रिश्तों की ओर चलते हैं
3: जी।
2: और एक प्यारी सी पोयम जो कि मैं लेके आती हूँ एंड रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ इन टुडे लेके आती हैं आपकी आरजे अंशिका। तो मैं
3: तो सुनते हैं बट थोड़ी सी उसके साथ सुनते हैं कि बहुत ही नजाकत और प्यारे से अल्फाजों के साथ हो गई है शुरुआत। और चलिए अब सुनते हैं प्यारी सी पोएट्री आरजे समता के साथ।
2: यही कल हम मिस कर रहे थे। कल हम कहाँ पे थे? कल मैं कहीं थी, मैं कहीं बाहर गई थी, तो मैंने मैं जिसके साथ थी मैंने उनको बताया कि मेरे साथ अंशिका हैं और जब मैं कोई पोयम बोलती हूँ ना तो वो पहले से एक माहौल बना देती है, बहुत अच्छा सा बोल देती है अच्छा सा। तो थैंक यू अंशिका,
3: यू वेलकम।
2: चलिए तो सुनाती हूँ आज की पोयम, बहुत ही बढ़िया सी है, जो कि रिश्तों को और खूबसूरत बनाने के लिए एक छोटी सी पहल है।
3: जी,
2: ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं, ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं, दिखते नहीं पर दिल के करीब होते हैं। थाम लेते हैं हाथ, थाम लेते हैं हाथ मुश्किलों के सफर में। ये वो धागे हैं जो रूह से रूह तक जुड़ते हैं। कभी खट्टी मीठी नोक झोंक तो कभी प्यार, रिश्तों से ही सजता है जीवन का संसार। बिना कहे जो दिल की बात समझ जाए, बिना कहे जो दिल की बात समझ जाए, वही तो होते हैं रिश्तों के असल हकदार। खून के रिश्तों से बढ़कर होते हैं जज्बात, साथ निभाते हैं जो हर सुख दुख में दिन रात। मुस्कुरा कर भुला देते हैं सारी कड़वाहटें, यही होती है अपनों की सच्ची मुलाकात। डोर चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, डोर चाहे कितनी भी दूर क्यों ना जाए, अपनों की याद हमेशा सुकून दे जाए। यही एक पूंजी है जो जीवन में कमाते हैं, हर रिश्ते को बस यही प्यार से महकाते हैं।
3: वाह वाह वाह वाह, मतलब वेरी ब्यूटीफुल पोएम, वेरी ब्यूटीफुल लाइंस और वाकई में वेरी ब्यूटीफुल टोन। मतलब कहते हैं ना कि शब्द कोई भी हो पर कहने का जो तरीका होता है, जो फीलिंगफुल, वो सीधे दिल को।
2: टोन तो मेरे सब लोग कहते हैं तुम्हारे बहुत अच्छा
3: ये वाली अच्छी है।
2: टोन से तो मेरी बहुत लोग परेशान है बट एक आप हैं जो आप खुश हो गई, बट मेरी टोन
3: नहीं, तो उसमें तो फर्क है ना मैम। मैंने ये वाली सुनी तो मैं खुश हो गई, अगर अभी मैं कोई और वाली सुनती तो मुझे भी खैर
2: तुम्हें भी मेरी उस वाली टोन से प्रॉब्लम है,
3: डर लगता है।
2: मैं अंशिका से खाली यही आकर के मैं खाली ये बोल देती हूँ ना, तुम अभी आई हो बस, इसके थर लगता है जैसे अभी पसीना छूट जाएगा। अरे तो वही जैसे अंशिका ने एक मेरे पीठ पीछे, मुझे पता है इसमें पूरा प्रोग्राम मेरे को ही डेडिकेट किया था कि बोल का बहुत बड़ा असर होता है। जैसे बोलते हैं ना, एक बार इसने ये बोला था शो में कि इस बोलने में कितना फर्क है और उस बोलने में। तो इस बोलने में जैसे कि तुम अभी आई हो, मतलब इंसान डर जाए, और यही अगर प्यार से तुम अभी आई हो अंशिका,
3: तो मैं खुश हो जाती।
2: पर मैं ऐसा करती नहीं हूँ ना, ऐसा करूंगी तो ये मेरे खोपड़े पे बैठ जाएगी, इसीलिए मैं ऐसा करती नहीं हूँ। हाँ। तो मैं इसीलिए इसको ऐसे कहती हूँ, तुम अभी आई हो।
3: वैसे खोपड़े पे तो मैं अभी भी बैठी हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है।
2: हाँ ये तो है, जब नहीं होती है तो एक फील आता है। एग्जैक्टली तो चलिए ज्यादा बटरिंग नहीं, ज्यादा
3: वो मतलब ऑयल अच्छा नहीं होता है,
2: क्योंकि ज्यादा बटर इस समय गर्मी में खाएंगे तो पसीना ही होगा, पेट खराब होगा।
3: वैसे ही कुछ और हो रहा है तो उससे बेटर है ना,
2: खराब होगा। तो आते हैं अपने आज के बहुत ही प्यारे से कंटेंट के दूसरे पड़ाव की ओर, जो की है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
3: आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है, रिश्तों में सम्मान इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए कि किसी के शब्दों के तिनके से टूट जाए। कहने का मतलब ये है कि रिश्तों में सम्मान का मतलब होता है कि कोई आपका बहुत सम्मान करता है, या हमारे मन में हमेशा ये एक फीलिंग होती है कि हर कोई हमारा सम्मान करे। लेकिन मान लीजिए किसी ने आपको कोई छोटी सी बात भी कह दी और वो तुरंत लग जाती है कि अरे यार ये कैसे कह दिया उसने मुझे, और ये तो मेरी इंसर्ट कर दी, या मुझे एक हमें फील हो जाता है ना कि नहीं नहीं ये तो मेरी रिस्पेक्ट का सवाल था, उसने मुझे कैसे कह दिया, उसे मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो हमेशा ये याद रखिए कि सम्मान बहुत मजबूत चीज़ होती है, रिश्तों में वो कभी इतनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि किसी की ज़रा सी बात से, ज़रा से ताने से, या ज़रा सा कुछ आपको बुरा कह देने से आप हर्ट हो जाएं। क्योंकि ज़रा ज़रा सी बातों पर जो हर्ट हो जाते हैं, और ज़रा ज़रा सी बातों पर जो बहुत लाउडली रिएक्ट कर देते हैं, लाउडली रिएक्ट करने का मतलब होता है कि छोटी छोटी बातों पर हम चिल्ला देते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा हो जाते हैं, तो वहाँ सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमें हमारे सम्मान पे सीधे फील हो जाता है कि अरे यार उसने तो मुझे कहा, रिस्पेक्ट पे फील हो जाता है। वो सही भी होता है रिश्तों में, लेकिन शब्दों के तिनके से सम्मान टूटा नहीं करते। इसलिए अपने सम्मान को इतना मजबूत बनाइए कि वो आपकी किसी बहुत बड़ी बात से टूटे, बहुत बड़ी बात से टूटने का सेंस होता है कि कोई बहुत बड़ी बात आपके साथ हो जाए, वो आपको फील होनी चाहिए, वो लगना चाहिए कि अरे यार ये तो इसने मुझे कह दिया। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखें, छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा इग्नोर करना सीखिए। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो आप उसको बढ़ावा दें, बढ़ावा नहीं देना है, बस उसे इग्नोर करना है। ये सोचना है कि मेरा सम्मान इतना कमज़ोर नहीं है कि ज़रा सा कोई कुछ कह दे और मैं उसे अपने ऊपर ले लूँ। क्योंकि जब ज़रा ज़रा सी बातों को आप अपने ऊपर लेते हैं ना, उन्हें महसूस कर लेते हैं, तो उससे आपका नुकसान होता है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि किसी किसी के तो नेचर में ही होता है ताने देना, आपने देखा होगा किसी किसी के नेचर में होता है कि छोटी से छोटी किसी की भी बात को लेकर के वो पिंच कर देते हैं कि अरे आपने ये कलर पहना है, अरे नहीं ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है, तुम ये पहनती तो ये मत पहना करो, ये तुम्हारे ऊपर नहीं अच्छा लगता है, या इस तरह तुम हो, अरे ऐसे कैसे हो। मान लीजिए आपने कोई खाना बनाया, कोई डिश बनाई, तो वो कह देते हैं कि अरे इस डिश में तो नमक कम है, अरे ये तो इस तरह नहीं बन सकता था, इसे तो इस तरह बनाना चाहिए था। तो यही चीज़ें कि छोटी छोटी बातों को महसूस करना कभी भी अच्छी बात नहीं होती। जाने दीजिए, आपने जैसे भी बनाया आपको सेटिस्फैक्शन है ना कि आपने अच्छा बनाया, आपने जो कपड़े पहने या जो भी कुछ पहना हुआ है उसमें आप कंफर्टेबल हो, बस उतना बहुत होता है। हमेशा अगर आपको कभी अफेक्ट भी होना है ना, तो अपने फैमिली मेम्बर की बातों से या ऐसी किसी की बातों से अफेक्ट होइएगा कि जो आपका अच्छा चाहते हैं, उनकी बातों से आप अफेक्ट होइए। आपके अपने, आपके माँ बाप, आपको चाहने वाले, अगर वो कुछ कहते हैं आपसे कि तुमने ऐसे किया, ऐसे नहीं ऐसे किया, या बेटा देखो ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तो आप अफेक्ट होइए। उनकी राय को मानिए, उस राय को तवज्जो दीजिए, उसे पूरा करिए। लेकिन अगर वही आपको कोई ऐसा इंसान कहता है जिसके बिहेवियर में ही है ताने देना, जिसके बिहेवियर में ही है कि वो आपको बस नीचे गिराए, डंप करे, तो ऐसे इंसान की बातों से कभी भी अपने लाइफ को, अपनी बातों को, आप खुद को अफेक्ट ना होने दें। क्योंकि अगर ये आपके नेचर में रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको हर्ट करती रहेंगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। इसलिए हमेशा छोटी छोटी बातों से खुद को बचाएं, खुद को हील करना सीखें। क्योंकि हमारा हील पावर जितना स्ट्रांग होता है, लाइफ हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा इजी हो जाती है। हीलिंग पावर इन द सेंस ये नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई और आप उससे हील करके निकल आ रहे हो। हीलिंग पावर ये भी होती है कि हम किस तरीके से अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों से बचा सकते हैं। अगर आप अपने आप को छोटी छोटी बातों से बचा लेते हैं और उनका आप पर कोई असर नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी हीलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। और हमारी हीलिंग पावर स्ट्रांग होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी हीलिंग पावर स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक हमें इमोशनली सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होती है। मेरे अंदर तो ये नहीं हैबिट है कि मैं छोटी छोटी बातें अपने मन पे ले लूँ या छोटी छोटी बातों में रोने लग जाऊँ, क्योंकि मेरा हीलिंग पावर उतना तेज़ है कि मुझे ये समझ में आता है कि मुझे इनकी बात को रखना है और इनकी बात को हटा देना है। लेकिन हाँ, मैंने ऐसी कई सारी देखा है, फीमेल में भी देखा है कि छोटी छोटी बातों को वो ले लेते हैं, मेल्स में भी देखा है कि छोटी छोटी बातों को वो ले लेते हैं कि अरे नहीं मुझे ऐसे कैसे कह दिया। तो छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा हटाने की कोशिश करें, उनको थोड़ा सा लाइटली रिएक्ट करने की कोशिश करें। हमेशा ये कहा जाता है, और साइकोलॉजी का भी रूल है, कि रिएक्शन जितने धीरे से आता है, आपका इजी वे करने का एक उतना ही जल्दी आप अपने इमोशंस से सरवाइव कर पाते हैं। अगर आप नहीं, कहीं ना कहीं अगर हम बहुत हाई रिएक्ट करते हैं, तो वो हम हमारे इमोशंस को सरवाइव नहीं करते, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमेशा हाई रिएक्ट करने की जगह आपके साथ जब भी कोई इंसिडेंट हो, तो बहुत लो वे में रिएक्ट करना चाहिए, बहुत धीरे धीरे उसका रिएक्शन देना चाहिए। क्योंकि जब हम धीरे धीरे रिएक्शन देते हैं, तभी जा करके कहीं ना कहीं एक बेहतर वे में वो कन्वे होता है, और लोग हमारी बात समझते भी हैं तब। इसलिए हमेशा कभी भी अपने सम्मान को इतना कमज़ोर मत रखिए कि किसी के शब्दों के

0: छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना कर देना चाहिए।
1: वाह, अब इसी पर मैं भी कुछ कह दूंगी तो
0: बड़े बुजुर्ग वाला कह दोगी कि देखो मोबाइल में छोटी चीजें जब हमें ना दिखें, इट मींस कि हमको छोटी छोटी चीजें इग्नोर करना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल,
1: तो वही आपके टॉपिक को अभी जैसे कि हमने उठाया था और मैम ने बड़े प्यारे से एग्जांपल
0: उसको खत्म कर दिया,
1: वैसे भी आप रहने देते हैं, वैसे बहुत ही प्यारा एंडिंग, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही प्यारा सा।
0: मैं बहुत देर से सुन रही थी तुम्हारी बातों को, तो मैं सोच रही थी कि ये आखिर कहना क्या चाह रही है, तो उसका कंक्लूजन जो निकल रहा है वो एक ही लाइन में निकल रहा है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ या फिर अगर आपकी छोटी एज भी है तो छोटी चीजों को हमेशा से इग्नोर करना चाहिए।
1: राइट, तो चलिए आप चलते हैं, हमारी बातें हो गई और बातों के साथ आपको थोड़ी सी वो मिल गई होगी एनर्जी, तो थोड़ी सी एनर्जी हम लेकर के आते हैं प्यारे प्यारे सॉन्ग्स के साथ, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो आइए अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि ये बहुत ही पता नहीं कौन सा होने वाला है, मुझे नहीं पता है, बट मुझे एक बात पूछनी है अंशिका से कि अंशिका यार, मुझे गुस्सा बहुत आता है।
6: ऐसा भी है मैम, आपको गुस्सा भी आता है?
5: इसमें इतने हंसने वाली कौन सी बात है?
6: नहीं,
5: मतलब मैंने कोई ऐसी अचंभे वाली बात पूछ ली क्या कि मुझे गुस्सा आता
6: नहीं,
5: है?
6: नहीं, आप
5: अभी तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए कि अच्छा आपको गुस्सा आता है, ये तो नई बात बता दी आपने, आपको गुस्सा ही तो आता है।
6: नहीं नहीं, वो इतने मासूमियत से आपने कहा ना मुझे गुस्सा आता है, तो मुझे बहुत वो सॉफ्ट वाली फील हो गई। वैसे आता है और कैसा आता है इसका भी एग्जाम्पल भी देखा हमने, सुना, सॉरी ले। तो चलिए, गुस्सा तो मैम आता है, गुस्सा तो मुझे भी आ जाता है कभी कभी, बहुत ज्यादा वाला। लेकिन एक तरीका है जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं।
5: कैसे?
6: सिर्फ 1.5 मिनट में आपका गुस्सा आपसे दूर हो सकता है।
5: ओके, वो कैसे?
6: वो ऐसे कि साइकोलॉजी, यानी कि हमारी साइकोलॉजी जो है वो ये कहती है, न्यूरोसाइंस भी कहता है, कि अगर आप अपनी किसी भी नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव, उसे अगर 1.5 मिनट तक होल्ड कर लेते हैं, तो वो फिर आपको दोबारा परेशान नहीं करती।
5: अच्छा।
6: यस, कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है या मैम को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अगर देखिए हमें जब गुस्सा आता है तो मेनली हमारे साथ क्या होता है, सांसें, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कई बार हाथ पैर कांपने लगते हैं जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है। लेकिन ये जो एक केमिकल हमारे माइंड में रिएक्शन होता है, वो सिर्फ 90 सेकेंड तक, यानी कि 1.5 मिनट तक आपके दिमाग में चलता है, और उसके बाद वो शांत हो जाता है। और जो आप रिएक्ट करते हो, जो भी बोलते हो, जो भी कहते हो, वो बस उसी 90 सेकेंड में आप कहते हैं। तो अगर आपने 1.5 मिनट अपने दिमाग को वहां पे कंट्रोल कर लिया और आप कुछ नहीं बोले, तो 1.5 मिनट बाद आपका गुस्सा धीरे धीरे खुद ब खुद शांत हो जाएगा और कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कुछ भी नहीं होगी।
5: तो ये तो मैं हमेशा से करती हूँ, अब तो मैं ऐसा ही करने लगी हूँ। कहीं पे भी ऐसा कुछ अगर फायर ट्रिगर होता है तो हाँ, मैं क्लास लगा देती हूँ नॉर्मल वे में। बट
6: नॉर्मल वे में,
5: ये नॉर्मल वे में गुस्सा नहीं था। जैसे कहते हैं ना, अभी तुमने स्टार्टिंग बोला था कि ये टोन आपकी ऐसी है, तो वो टोन में मेरे लोगों को लगता है कि गुस्सा है, अभी तो मेरा गुस्सा निकलता ही नहीं है।
6: अच्छा अच्छा,
5: तुम सोचो कि जब गुस्सा निकलेगा तो क्या होगा?
6: तो टोन ऐसी है तो गुस्सा कैसा है?
5: तुम सोचो ना, फिर वही तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे गुस्सा जब आता है तो फिर आता है, ऐसा वाला गुस्सा आता है, मतलब अच्छा वाला आता है।
6: अच्छी बात है,
5: अच्छी बात हो गई कि अच्छी बात हो गई ये जानने को मिला कि मैं 90 सेकेंड अपने माइंड को बिल्कुल कूल रखूं ताकि गुस्सा बाहर ना निकले।
6: राइट, अब आते हैं इसकी पॉजिटिव साइड पर। इसका पॉजिटिव साइड रिश्तों में बहुत अच्छा होता है। अच्छा ऐसे होता है कि जब कोई पॉजिटिव फीलिंग फील होती है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कोई बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और आपको खुशी फील हुई, और आपने वो खुशी 90 सेकेंड तक होल्ड कर ली। होल्ड करने का मतलब है कि हमने अपने दिमाग में उस थॉट को बने रहने दिया, उस खुशी को हमने हटाया नहीं उसे, तो वो हमारे माइंड में कई दिनों तक बनी रहती है। फिर जब भी आप उस लम्हे को याद करेंगे तो आप अचानक स्माइल कर लेंगे, चाहे आप रो रहे थे 2 सेकेंड पहले, लेकिन 2 सेकेंड के बाद जब आपने उस लम्हे को याद किया या उस इंसान को याद किया, तो आपने मुस्कुरा दिया। ये तब होता है जब मान लीजिए आपका रिश्ता पहले बहुत अच्छा था किसी के साथ, और आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे पल, बहुत सारी खुशियां उसके साथ बिताई हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि रिश्तों में खटास आ जाती है कई बार, या हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, मान लीजिए मेरा और मैम का झगड़ा हो गया, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, और मैम सोच रही हैं कि पहले तो अंशिका बहुत अच्छी थी और अब इसने ऐसे किया, तो मान लीजिए वो मेरे साथ बिताया वो कोई अच्छा लम्हा याद कर रही हैं कि जब मैंने उनकी केयर की या उनके साथ मैं बात कर रही हूँ, हंस रही हूँ, तो जब वो लम्हा याद करेंगी तो उस कुछ सेकेंड्स के लिए ही सही, लेकिन उनको एक सॉफ्ट फीलिंग अपने अंदर फील होगी। तो ये हील पावर होती है, ये हमारे रिश्तों में हमें खटास को भरने में, दूरियों को मिटाने में और उन इंसानों के साथ जुड़ने में मदद करता है कि जिनसे आपके रिश्ते अच्छे थे लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि वो खराब हो गए, तो दोबारा उनको रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। इसलिए हमारे रिश्तों के लिए 1.5 मिनट बहुत कीमती होते हैं। खुशी है तो उसको होल्ड कीजिए, नेगेटिविटी है तो भी होल्ड कीजिए, क्योंकि देखिए मान लीजिए मुझे गुस्सा नहीं, हम किसी दूसरी नेगेटिविटी को ले लेते हैं कि डर किसी को बहुत लगता है, मान लो तो मान लीजिए सांप देखा आपने, ऐसा मान लीजिए, मतलब फिलहाल तो ऐसा ना हो ईश्वर करे, लेकिन मान लीजिए देखा और बहुत तेज डर लगा, वो तो नॉर्मल है कि आपको डर लगेगा
5: बिल्कुल,
6: लेकिन अब उस पर हाईली मान लो रिएक्ट किया किसी ने, कि अरे लाओ हाथ से पकड़ के फेंक देते हैं, ऐसा बहुत लोग करते हैं, अरे हमें तुम नहीं जानते हो, हमारे अंदर इतनी ताकत है हम हाथ से उठा के फेंक,
5: हम नहीं डरते हैं,
6: हम नहीं डरते,
5: खतरों के खिलाड़ी
6: हैं। हाँ, और मान लीजिए आपने हाथ लगाया और भगवान ना करे काट दिया उसने आपको, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। मैम ऐसा ना करिए, ऐसा ईश्वर के लिए ना करिए प्लीज।
5: अंशिका डरती है तो हम लोग पता है हम लोग डेस्क के नीचे से देखने लगते
6: हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा,
5: मैं एक्चुअली मैं देखती हूँ क्योंकि ना मुझे बहुत डर लगता है, तो
6: मुझे भी। तो ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही थी, और ऐसे आप अगर रिएक्ट करते हैं तो वो आपके लिए खतरनाक होगा, मान लीजिए काट लिया उसने तो। तो कहने का सेंस ये है कि जब भी कोई फीलिंग हो तो उसको होल्ड करना चाहिए। एक साइकोलॉजी में एक रूल और होता है कि 10% और 90% का, 10% जो आपके साथ हुआ, मान लो आप रास्ते में जा रहे थे गिर गए, वो 10% है आपके साथ हुआ, लेकिन 90% है कि आपने उस पर रिएक्ट कैसे किया।
5: ओके
6: कुछ लोग हैं कि वो उठते ही नहीं है, वो सोचते हैं अरे चोट लग गई एक बार गिर गए अब दोबारा चलेंगे ही नहीं,
5: हाँ।
6: अब बैठ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि तुरंत उठ जाते हैं झाड़ पोंछ कर और कहते हैं अरे लगी होगी हल्का दर्द है,
5: हाँ।
6: चलो चलते हैं देखते हैं आगे फिर चल लेंगे धीरे धीरे। तो कुछ कदम चलने में हो सकता है दर्द हो, लेकिन उसके बाद वो अपनी एक लेवल पे धीरे धीरे चल लेते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए किसी को, अच्छा हम इस तरह पॉजिटिव वे में लेते हैं थोड़ा सा मैम इसको, कि मान लीजिए कोई आपसे बहुत प्यार करता है और उसकी प्यार की फीलिंग बहुत स्ट्रांग है और उसके मन में बात आई कि चलो आज इन्हें सरप्राइज देते हैं, और उसने बहुत सारी आपके लिए प्रिपरेशन की, आपको सरप्राइज दिया और वो खुशी उसके मन में बहुत भरी हुई है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो जो चाह रहा था वो नहीं हो पाया, मतलब सोच लीजिए हम आपस में टाइम स्पेंड करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, और उस पर हमें जाहिर सी बात है बुरा लगता है, बुरा, लेकिन अब वो हमारे ऊपर है कि हम सिचुएशन को समझकर रिएक्ट किस तरह करते हैं। मान लीजिए आप जिसके साथ समय बिताने वाले थे वो नहीं पहुंच पाया इनकेस, और आपने उसका बहुत वेट किया, लेकिन वहाँ गुस्सा होना है या उसकी सिचुएशन को समझना है ये आपके रिएक्शन पे डिपेंड करता है, और रिश्तों में जितने धीमे रिएक्शन दिया जाता है आपके रिश्ते उतने ही बेहतर होते हैं। जब भी रिश्तों में रिएक्ट करने की बारी आए तो बहुत सोच समझ कर रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि जितना सोच समझ कर रिएक्शन दिया जाएगा उतना ही आपके रिश्ते बेहतर होंगे, और अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आपने बिना सोचे समझे रिएक्ट किया, तो वो सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं
5: बिल्कुल।
6: क्योंकि देखिए हम हमेशा कहते हैं कि रहीम का बहुत अच्छा दोहा है कि रहीम हमेशा कहते हैं कि फटे दूध को मथने से कभी वो माखन नहीं होता है।
5: अच्छा,
6: यानी कि
5: घी निकलता है लेकिन,
6: हाँ घी तो निकलता है मैम ऑफ कोर्स, लेकिन रहमन कहा थे बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोए, रहमन फटे दूध को मथे ना माखन होए। कहने का सेंस ये है कि एक बार अगर किसी के दिल में आपने कुछ ऐसा कह दिया कि उसे लग गई वो बात, तो वो फिर आप पूरी लाइफ उसको हील नहीं कर पाओगे।
5: अच्छा, मेरी कोई बात तुम्हें लगी है क्या अभी तक?
6: हो सकता है कभी हुआ हो, मतलब ऐसा मुझे तो, मैं फ्रेंकली बताना चाहती हूँ कि मुझे तो बस ऐसे होता है कि 2 मिनट के लिए लगती है बात, और फिर मैं जब जाके घर पे उसको अकेले में सोचती हूँ ना, तो फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं मैम ने मेरे अच्छे के लिए कहा और उन्होंने मुझे समझाया, मुझे बच्चा समझ के, तो फिर मैं उसको मैच्योरली रिएक्ट करती हूँ। क्या हुआ मैम? आपने इतनी शांत, आप जब शांत हो जाती हैं तो मुझे डर लगता है
5: कि तूफान आने वाला है।
6: ऐसा ना हो कि फिर ब्रेक में, और ब्रेक के बाद जब वेलकम बैक, तो वेलकम बैक में लिसनर्स पूछेंगे आरजे अंशिका कहाँ है, तो आरजे अंशिका बाप को।
5: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं
6: नहीं नहीं मैं तो जिस मजाक कर रही थी। नहीं देखिए ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, साइकोलॉजी कहती है कि जब हमें किसी की बात फील हो जाती है तो वो हो जाती है, आपको हो सकता है दो सेकंड के लिए हुई हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस बात को बिल्कुल गांठ मान लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मैच्योरली उस बात पर सोचते हैं। तो एक सोचने वाली थिंकिंग हमेशा रखनी चाहिए, न कि किसी की बात को ले लेना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूँगी कि मान लीजिए किसी ने आपसे कोई भी बात कही हो, जैसे अभी मैम ने पूछा था तो मैंने उनसे कहा, ठीक उसी तरीके से कि कोई कई बार हमें सीधी बात बताता है, जैसे कि आयुर्वेदिक दवा जो मीठी होती है वो देर में असर करती है और कड़वी दवाई जब आपको दी जाती है तो वो जल्दी असर करती है, लेकिन कड़वी दवाई आपने खाई कि नहीं ये भी तो बात होती है ना। मैम मुझे लाख समझाएं, लाख मुझे कहें कि बेटा तुम ये ऐसे नहीं ऐसे करना, लेकिन अभी मैं सोचूं कि उन्होंने मुझे ऐसे क्यों कहा, मैं नहीं करूंगी। मान लीजिए मेरे मन में ये बात आ जाए कि मैं नहीं करूंगी, तो वो क्या हुआ, उनका समझाना वेस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने उसे तो अपने बिहेवियर में लिया ही नहीं, लेकिन अगर उसी बात को समझ के मैंने अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया तो वो 2 मिनट की कड़वी दवाई ने मेरे बिहेवियर को बेहतर कर दिया और उस इंसान के लिए फिर आपकी फीलिंग्स कभी खराब नहीं होंगी, वो हमेशा अच्छी रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपने सोचा और समझा। तो हमेशा ये वाली एक वाइब रिश्ते में होनी चाहिए।
5: जी हाँ।
6: अब आप कुछ बोल देंगे क्योंकि मुझे डर लग रहा है।
5: नहीं नहीं, इसका कंक्लूजन क्या निकला?
6: इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि मीठी हो खट्टी हो या कड़वी हो दवाई लेनी पड़ती है, और दूसरी बात कि रिश्तों में हमेशा लाइटली रिएक्ट करना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को होल्ड करना चाहिए ताकि आपके रिश्ते प्यार से चलें।
5: जी प्यार से चलें और ऐसे चलते रहें, है ना?
6: बिल्कुल, लाइफ लॉन्ग।
5: तो अब लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आएंगे, ऐसा बहुत कुछ है अभी हमारे पास में क्योंकि आज है फुल फ्राइडे। फुल फ्राइडे का मतलब होता है कि आज हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो बस हम यूं गए यूं आए क्योंकि गर्मी बहुत है, अंशिका को भी प्यास लगी होगी, कंटिन्यूसली हम लोग बोल रहे हैं, तो पानी हम भी पीते हैं, आप भी पी करके आएं, और तब तक के लिए सुनिए इस प्यार इसके ब्यूटीफुल से गाने को।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: Let's start the fun!

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवर नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: दोस्तों आगे आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए चलते हैं फटाफट, शो चल रहा है सुन सहेली, जो कि दो सहेलियां दोपहर में आती हैं बिना खाए पिए हुए और भूख बहुत तेज लगी हुई है इस समय। आप समझ सकते हैं हमारी इस समय हम लोग
6: क्या स्थिति है
5: ना।
6: हम लोग फोटोज देख देख के अपना मन बहलाते हैं।
5: नहीं, हम लोग डिशेस के फोटोज देखते रहते हैं कि बस जल्दी घर जाएंगे और ये खाएंगे वो खाएंगे। खैर कोई बात,
6: खैर मिलता तो वही है जो मम्मी ने बना के रखा
5: होता है। वही है जो मंजूर है खुदा होता है, और यहाँ होता वही है जो मंजूर है
6: मम्मी होती है। आप कितना भी मन में अरमान सजा के जाओ, खाना वही पड़ेगा।
5: लेकिन अंशिका ना ना ना, अभी तो हम लोग प्रिकॉशन पे हैं। मतलब तुम तो थी, तुम्हारे साथ रह रहे के मैं भी
6: नहीं नहीं, अभी मैं हूँ, अभी मैं,
5: हम लोग अभी प्रिकॉशन पे हैं,
6: अभी मैं था नहीं लगा रही हूँ।
5: हाँ, आशु जी एंड बुद्धि जी आ गए हैं एंड तीरथ प्रसाद सोनी जी आ गए हैं। तो कुल मिलाकर के हमको चैट बॉक्स में तो तीन ही लिसनर्स आए हुए हैं, लेकिन हमें फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, उन सभी का थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
6: तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि रिश्तों की महक महका रहे हैं हम, लेकिन रिश्तों की इन महक में थोड़ी सी खटास कहीं ना कहीं तब आ जाती है जब कपल्स में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं।
5: और कहा जाता है कि जब कपल्स में लड़ाई होती है तो उसमें प्यार भी बहुत होता है, लेकिन ऐसी लड़ाई भी ना हो जाए कि उसका अंत केवल जुदाई हो जाए।
6: बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आजकल ये जैसे हम कहते हैं ना, ये यूथ्स में ये ट्रेंड में चल रहा है। कोई ड्रेस होती है या कुछ होता है तो हम कहते हैं सैंडल होती है या कुछ भी, तो हम यूथ्स में एक लैंग्वेज यूज करते हैं मैम कि यूथ्स में, अरे यार ये बहुत ट्रेंडिंग है। आजकल एक चीज और बहुत ट्रेंडिंग है,
5: क्या
6: यूथ्स में, जो कि होता है कि शादी के 2-3 सालों में ही बात इतनी बढ़ जाती है और स्ट्रगल इतना हो जाता है कि वो डिवोर्स तक आ जाता है। यूथ्स में स्पेशली हो रहा है
5: आज की जनरेशन में ऐसा, आज की जनरेशन में। और मैं तो ये कह रही हूँ कि वो रिश्ते ज्यादा खराब होने की कगार पे हैं जिनको एक और ट्रेंडिंग नाम दिया गया है, लिविंग रिलेशनशिप।
6: राइट,
5: है ना। लिविंग रिलेशनशिप में आप 3 साल आराम से रह रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उसके बाद में जब शादी के लिए बंधन में बांधा जा रहा है, उसके बाद से आप ये कह रहे हो कि ये मेरे लायक नहीं है और ये मेरे विचारों के लायक नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा या मैं इसके साथ नहीं रहूंगी।
6: राइट, और देखिए जैसे कहती नहीं कि सपने बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन कभी उन्हें दिमाग पे इतना भी हावी मत कर दो कि रियलिटी क्या है वो आप देख ही ना पाओ। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि सपने जब हम देखते हैं ना तो वो बहुत खूबसूरत होते हैं।
5: हाँ।
6: मतलब उनमें सब कुछ परफेक्ट होता है, जो भी आपको चाहिए होता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वो रियलिटी नहीं होती। और जब रियलिटी दिखाई जाती है तब समझ में आता है कि अरे नहीं ये ऐसा नहीं, ये तो ऐसा था। और आजकल लड़कियों में तो मतलब मैं क्या ही कहूँ कि आप किसी लड़की से पूछ लीजिए कि शादी करनी है कैसा लड़का चाहिए, तो वो मुझे लगता है 2 नहीं कम से कम 2000 क्वालिटीज गिना देती
5: है, ऑप्शंस बताने लगती हैं।
6: ये चाहिए, ये भी होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, बैंक बैलेंस मतलब पैसे अच्छे होने चाहिए उसके पास, और बहुत अच्छा होना चाहिए, मुझे बिल्कुल जैसे रोमांटिक हीरो टाइप होता है ना सीरियल्स में वैसा चाहिए। तो ये एक इमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो इमेज टूटती है तो बहुत तकलीफ होती है।
5: बिल्कुल,
6: क्योंकि आप शादी किसी अच्छे से मतलब हीरो से नहीं करने जा रहे
5: हैं। मुझे लगता है कि शादी करने के लिए लड़कों की मतलब मेरे हिसाब से जो मेरी सोच रहती है वो मैटर नॉट मैटर पैसा, ठीक है, पर्सनालिटी कुछ नहीं, बस उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। काले गोले से नहीं होता है यार, मतलब उसका नेचर अच्छा होना चाहिए।
6: राइट, बिल्कुल सही कहा आपने मैम। लेकिन आजकल यही हो गया है कि किसी को नेचर नहीं चाहिए, सबको बस ऊपर की एक जो आर्टिफिशियलिटी
5: चाहिए, अच्छा सा सुंदर सा लड़का हो, पैसे वाला हो, बस
6: यही सारी चीजें चाहिए। देखिए पहले के समय में जैसे मैम ने अभी एक्सप्लेन किया आपको बहुत अच्छे से, तो वो इसलिए एक्सप्लेन कर पा रही है क्योंकि उनके पास पहले का अनुभव है और आज का अनुभव जो है वो तो इससे बिल्कुल अलग है।
5: बिल्कुल।
6: तो कहीं ना कहीं रिश्ता किसी से जोड़ते हैं तो अपनी कल्पनाओं को बहुत साइड रख के रियल में वो इंसान जैसा, अब जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं खुद को ही ले लेती हूँ यहाँ पे, कि अगर मेरे साथ कोई रह रहा है तो वो मेरी बहुत अच्छी इमेज लेकर के अगर आएगा कि अरे वो तो बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, ये है वो है, और उस हम ये भी मन में ठान लेते हैं कि अरे उनसे तो कोई गलती ही नहीं होगी। तो ये एक परफेक्शन अगर लेके कोई किसी की लाइफ में आता है तो वो रिश्ता नहीं चल पाता है, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। मुझे भी गुस्सा आता है तो मैं बहुत चिल्लाती हूँ, बहुत झगड़ा करती हूँ, बहुत लड़ाई करती हूँ, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, और जो भी मेरी भी लाइफ में कोई आएगा तो उसे मेरी गलतियां फेस करनी पड़ेंगी।
5: हाँ।
6: ये उसके ऊपर है कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या करे। और देखिए रिश्तों में गुस्सा बर्दाश्त किया जा सकता है, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम है आप वो भी बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आप रिस्पेक्ट घटा करके बिल्कुल किसी को नीचे गिरा देते हैं ना किसी भी रिश्ते में, आप कहते हो अरे मैंने तुम्हें ये सोचा था तुम तो ये हो और मुझे तुम्हारे साथ नहीं वो करना, वहां रिश्ते बिल्कुल नहीं चल सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो थोड़ा सा अपनी कहते नहीं है सपनों की दुनिया से बाहर आके रियलिटी को देखेंगे तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। हमेशा रियल इंसान को देखिए,
5: बिल्कुल,
6: और उसका प्यार देखिए कि मतलब वो आपकी कितनी केयर करता है, आपको कितना प्यार करता है, क्योंकि जब वो फेज आप देखेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा।
5: अच्छा और... बोल लेती है अच्छा समझा लेती है, नहीं लिसनर्स आप बताएं मुझे, अच्छा समझा,
6: एक्सपीरियंस नहीं किया ना इसलिए बेहतर समझा सकती हूँ।
5: हाँ, exactly.
6: जिन्होंने किया होगा वो बेहतर और बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है
5: बिल्कुल।
6: बट कहते हैं ना कि अभी आपने वो लड्डू खाए नहीं तो आपको पता नहीं है मिठास है कि कड़वा है।
5: एक्चुअली अभी पता नहीं है ना अंदर की बात क्या,
6: छेलते कैसे है वो मालूम नहीं है, तो फिर हम जैसे कहते हैं नाव में आप अच्छे से बढ़िया से किनारे पे बैठे रहिए तो आपको लगता है समुंदर बड़ा खूबसूरत है, देखो इसमें नाव जो है वो घूम रही है, लेकिन किसी दिन आप समुद्र में जाके नाव पे बैठ के देखिए तो समझ में आता है कि लहरें जब चलती हैं तो नाव की क्या हालत होती है।
5: बिल्कुल।
6: तो मैं अभी उस हालत से दूर हूँ इसलिए मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, लेकिन जोक के साथ यही कहूँगी कि वाकई में देखिए एक बात बहुत मुझे लगता है, मैंने भी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं देखी है लेकिन जितनी भी देखी है उनसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि रिश्तों में प्यार हो, सम्मान हो, कम हो जाए थोड़ा सा तो चल सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपको अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी चाहिए, क्योंकि जो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है ना किसी भी घर में, चाहे वो लड़की अपने परिवार में मतलब मम्मी पापा की रिस्पांसिबिलिटी निभा रही है, या लड़की या लड़का भी क्यों नहीं, लड़का अगर अपने परिवार की रिस्पांसिबिलिटी अच्छे से निभा रहा है तो अगर आप अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाते हैं कहीं किसी भी जगह पर अपनी फैमिली में या कहीं भी, तो आप अपनी एक छाप छोड़ जाते हो।
5: बिल्कुल।
6: वो रहता है कि अगर वो होता ना तो ये काम बहुत अच्छे से करता, या वो होती तो ये लेती उसके लिए तो आसान था। तो आप प्यार निभाएं, सम्मान निभाएं, लेकिन जिम्मेदारियां दुगनी शिद्दत से निभाएं, आपके रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे।
5: बिल्कुल।
6: ज्यादातर रिश्ते टूटते क्यों हैं, अरे यार मुझे रिस्पांसिबिलिटी नहीं निभानी तुम्हारे घर की, मुझे तो लगा था कि अच्छी सी लाइफ होगी, ये सब क्या है, तो वो नहीं होना चाहिए।
5: okay.
6: यही कहूंगी।
5: तो इसके इसका कंक्लूजन क्या निकला,
6: वो आप निकालेंगे,
5: वो मैं निकालूं,
6: क्योंकि वो कहते हैं ना वो जैसे अभी वो वर्ड मैं नहीं बोलूंगी जो भी मेरे अंदर आया है, लेकिन मैम बहुत अच्छे से उसको मतलब अच्छे से बताती है। मैम बताइए
5: टॉपिक क्या था।
6: टॉपिक ये था कि शादी के 2-3 सालों में रिश्ते इतने अच्छा, खराब क्यों।
5: तो टॉपिक ये था कि मैंने जो बताया अभी लिविंग रिलेशनशिप वाला बताया, तो क्या उसको उसको उसको जब मैंने बोला तो उस बात को लेकर के आपको क्या लगा।
6: लिविंग रिलेशनशिप जैसे अगर बात करें तो लिविंग रिलेशनशिप का सीधा मतलब ये होता है मैम कि 2-3 साल या जितना भी टाइम आप किसी के साथ रहते हो। बट मुझे लगता है कि मतलब मैं अपना पॉइंट दूंगी कि इट्स नॉट राइट, मतलब मुझे ऐसा फीलिंग है कि ये नहीं होना चाहिए।
5: पर हम अगर ये कहें कि आजकल का वो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, आजकल के युवा जो हैं वो हाइपर सिटीज में यही कर रहे हैं तो क्या
6: कूल है, तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मान लीजिए कोई चीज बहुत ट्रेंड में हो लेकिन वो
5: उसको एक दर्जा दिया जा रहा है कि हम पढ़े लिखे हैं और हम अपनी आजादी को एंजॉय कर रहे हैं और हम अपने फैसले खुद लेना जानते हैं।
6: लिविंग रिलेशनशिप सबसे पहले तो मैं अपना पॉइंट यही रखूंगी कि ना वो आजादी होती है और ना वो ये होता है कि हम अपना फैसला खुद ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपना फैसला खुद लेना जानते तो ऐसा फैसला नहीं करते। और अगर आपको आजादी चाहिए तो सबसे ज्यादा आजादी पता है कब होती है, जब आपकी एक बाउंड्री जो रिश्तों में होती है या आपके अपने अंदर होती है वो बनी रहती है, सबसे ज्यादा आजादी तभी होती है।
5: तो कंक्लूजन पे आते हैं, जैसे अंशिका ने पूरा टॉपिक बताया तो उसका कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज की ट्रेंडिंग जो जनरेशन है, आज की जो न्यू जनरेशन है, वो हमारी 90s 80s की बातों को बकवास के नाम से घोषित करती है। उनको ये लगता है कि 21वीं सदी जो है, 22वीं सदी है, जो 24वीं सदी है, जो 30वीं सदी आएगी उसमें भी लोगों को ये लगता है, आज की जनरेशन को ये लगता है कि बड़े बुजुर्ग जो हैं, मम्मी पापा जो हैं, वो केवल बकवास करते हैं। आज कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई, चांद सितारों पे महिलाएं पहुँच गईं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर्यादाओं को तोड़ करके उन सारी चीज़ों को अपनाओ। क्या चांद पे जाने वाली लड़की भी मतलब अपनी मर्यादाओं को तोड़ के गई थी?
6: बिल्कुल नहीं।
5: मुझे तो ये बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो क्या हम जैसे कहते हैं ना कि अब तो पहले ये क्या होता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लड़के कर सकते हैं केवल और लड़कियां नहीं कर सकती हैं। ये एक बार एक मूवी में मैंने गेम देखा था
6: जी,
5: तो अब मैं यहाँ पर वो डिस्क्राइब नहीं करूंगी
6: जी।
5: और उसने वो किया तो उसने बोला कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लड़कियां, जो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। लेकिन आज क्या सुनने को मिलता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती हैं।
6: बिल्कुल मैम,
5: कल मैं रील्स देख रही थी तो कल लखनऊ की न्यूज है, पता नहीं लखनऊ की कि नोएडा की, आई थिंक दिल्ली की, मुझे उस न्यूज़ की एग्जैक्टली पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहाँ की न्यूज़ है मुझे नहीं पता है
6: जी।
5: पहले क्या सुनने में आता था कि पांच चार लोगों का ग्रुप है और लड़की अगर अकेले कहीं रात में जा रही है तो वो अनसेफ है और उसको गाड़ी में बिठा लिया और उसका रेप हो गया
6: जी। जी,
5: कैन यू बिलीव कि मैं जो अभी आपको न्यूज़ बताऊंगी और आपके मुँह से आंखें फटी रह जाएंगी और मुंह खुला रह जाएगा। मुझे प्रॉपर सिटी नहीं पता है, प्रॉपर इस न्यूज़ की अंदर की चीज़ें नहीं पता है, बट जैसे आती है रील्स तो मैंने उसमें देखा और उसको बताने के का माध्यम कुछ और है मेरा, कुछ मतलब कुछ और है कि पांच लड़कियां कैफे से निकली रात में, बहुत ही वो ड्रंक में थी
6: जी।
5: और उसके हाथ में सब बियर की बोतलें थी। एक शरीफ बच्चा मतलब लड़का था, वो उनको लिफ्ट देने के चक्कर में उनकी गाड़ी रुकी और वो पांचों लड़कियां उसमें बैठी उनको लिफ्ट देने के चक्कर में, और थोड़ी दूर चलने के बाद में उन्होंने उसको पूरी फुल्ली मतलब ड्रंक किया और फिर उन पांचों लड़कियों ने उस लड़के का रेप किया। मतलब सोचने वाली बात है। कैन यू बिलीव कि ये बातें हमारे सब चीजों पे ये हो रही है। तो मैंने इसीलिए पहले कहा कि अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियां अनसेफ हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अभी आपने जल्दी न्यूज सुनी है सिया की और केतन और चेतन की
6: जी मैम,
5: सुना? अब बताओ, अब तो ज्यादा से ज्यादा मर्डर्स जो केसेस होते हैं वो लड़कियों की तरफ से आ रहे हैं। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि लड़कियां बहुत बहुत भोली सी हैं, सीधी सी हैं? तो ऐसी कुछ लड़कियों के कारण से बहुत सारी लड़कियां हैं ना जो वो
6: जी जी
5: अपने उन उन उन सभी पे आ रहा है जो एग्जैक्टली सीधी सादी हैं, जो एग्जैक्टली बहुत अच्छी हैं, जो अपना घर बसाना चाह रही हैं, एक सिंपल सी जॉब करना चाह रही हैं, उनके ऊपर भी ये सारी चीजें आ रही हैं, उनका भी गलत असर हो रहा है।
6: बिल्कुल।
5: तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेरेंट्स बाहर पढ़ने के लिए भेज रहा है तो आप ये सारे काम सुनो, आप ये सारे काम करो।
6: बिल्कुल,
5: मतलब सोचने वाली बात है, रूह कांप जाती है ये सब सुनने के बाद में कि हमारे घर के भी बच्चे हैं, पता नहीं क्या आगे भविष्य है। लेकिन हम अगर अपने बच्चों को सही संस्कार दे रहे हैं, उन्हें ये पहल करवा रहे हैं कि दोस्ती भी आपको उसी से करनी है जो आपकी वाइफ से मैच करती हुई लड़की हो,
6: राइट,
5: और जरूरी नहीं है कि आप बाहर जा रहे तो किसी लड़के से फ्रेंडशिप ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन एक अपने मर्यादा में रह करके, अपने एक बाउंड्रीज में रह करके।
6: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम ने। और जैसे मतलब अब क्या कहूँ, मतलब ऐसा सुन लिया कि दो मिनट के लिए तो शॉक भी हो गए थे।
5: हाँ, मतलब मैंने भी कल रील देखा, मैं मैं सिटी मुझे कंफर्म नहीं है कहाँ की है, बट मुझे बहुत अफसोस हुआ यार कि मतलब कैसे कहती हैं लड़कियाँ कि अकेले हाइपर सिटीज़ में या बिग सिटीज़ में अकेले हम जा नहीं पा रहे हैं, ये है वो है अनसेफ है। तो जो लड़कियाँ ये कहती हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो लोग केवल पता नहीं क्या समझ के कर रही हैं, क्यों कर रही हैं ऐसा, इस पर क्यों नहीं बैंड लग रहा है कैफेज में रात में, क्यों नहीं बैंड लग रहा है, मतलब होना चाहिए इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी।
6: तो कहीं ना कहीं देखिए नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों होती है, बट आपके ऊपर है आप क्या लेते हैं, थोड़ा सोचें इस बारे में। क्योंकि हमने ये टॉपिक अगर आपको इतनी ब्रीफली बताया इतने अच्छे से, तो उसकी वजह यही है कि आप सोचें और फिर समझें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
5: तो चलिए भाई चलते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को हम यही छोड़ के जा रहे हैं और उसके बाद अभी हम लोग आएंगे तो ब्यूटी टिप्स लेकर के आएंगे आज, क्योंकि आज हमारा ब्यूटी टिप्स का भी डे है। और सुनाती हूँ बहुत से प्यारे प्यारे गाने और उसके बाद आती हूँ, हम सीधे चलेंगे आज फेस के लिए, हेयर के लिए कुछ ना कुछ हम लेकर के आए हैं उसको बताएंगे। स्टे ट्यून्ड।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आर्य समता और साथ में अंशिका। ऐसा नहीं है नागेश्वर जी, ऐसा नहीं है। माँ बाप बच्चों को कब तक संस्कार देते रहेंगे? छोटे बच्चे होते हैं 15 साल तक के, उनको तो हम समझा सकते हैं, लेकिन आज की जनरेशन 15 साल के ऊपर वाले लड़के लड़कियां कहाँ अपने माँ बाप की सुनते हैं। बिल्कुल, वो तो अपने हिसाब से आज़ाद रहना पसंद करते हैं, साथ ही साथ उनको खुद ही डिपेंड होना पड़ता है। एग्जैक्टली, और पाबंदी अगर रखें तो वो सही नहीं उनको लगती है, लेकिन वही बच्चे जब बाहर रहते हैं तो गलत आदत संगत में पड़कर ऐसे गलत कदम उठाने लगते हैं और आखिर में जाकर उंगली माँ बाप के संस्कारों पर उठती है। बच्चों को सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ने के लिए भेजा है, इस तरह की गलत हरकत करेंगे तो अपना और अपने माँ बाप का नाम खराब होगा।
4: बिल्कुल सही कहा आपने नागेश्वर जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और
3: बिल्कुल आगे बढ़ने के साथ साथ हमारा टाइम भी टाटा बाबाई करने के लिए बोल रहा है, एंड जल्दी से टिप एंड टिप ऑफ द डे बताएंगे आज का, यानी टिप ऑफ द डे हमारे ब्यूटीफुल टिप्स होंगे जो कि हमारी सुंदर त्वचा को और सुंदर बनाने का काम करेंगे।
4: बिल्कुल, तो बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते हैं और चलते हैं आज की। हमारी जो ऑयली स्किन होती है ना, वो और ज्यादा ऑयली हो जाती है गर्मी में।
3: हाँ,
4: इसलिए इस ऑयली स्किन को ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ।
3: मेरे पास एक है, बताऊँ पहले?
4: बताइए
3: भाई। देखो, मैं जो यूज कर रही हूँ, देखो इस समय बहुत स्वेटिंग हो रही है, पसीना हो रहा है, तो आपने सबसे पहला तो काम ये कर लेना है कि आपने कोई मिट्टी का बर्तन ले लेना है, ठीक है? कोई कटोरा ले लो मिट्टी का, ग्लास ले लो मिट्टी का, कुछ भी ले लो। उसमें क्या करना है, आपको मुल्तानी मिट्टी भिगो के ऑलरेडी रख देनी है। अच्छा, जब आपको लगानी हो तो आपने उसमें पानी डालो, वरना तुरंत मिट्टी पानी सोख ले ले रही है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, फिर उसमें वो गुटली बन जा रही है।
4: हाँ।
3: तो तुरंत आप मुल्तानी मिट्टी को उसी में रख करके फ्रिज में रख दो, बस जब भी आपको लगाना उसमें गुलाब जल डालो, पानी डालो और वो लेप लगा करके पूरी गर्मी में बिना एसी कूलर के ठंडा ठंडा ठंडा ठंडा एहसास पा सकते हैं।
4: वाओ, बहुत ही प्यारी सी मैम ने अभी आपको बता दी टिप्स, और इसी के साथ हमारा टाइम भी हो गया है अब आपको बबाई करने का। तो जाते जाते एक बता देती हूँ बहुत ही अच्छी सी, कि आपको क्या करना है कि खीरे अमूमन सभी के घरों में है।
3: हाँ।
4: तो खीरे का आपको रस निकाल लेना है, इतना रस निकाल लीजिएगा जितना प्रॉपर आपके फेस पे लग जाए, आपको कम ना पड़े। और उसको एक कॉटन ले लेना है, कॉटन में भिगो के अपने फेस पे लगा लेना है खाली, और उसमें कुछ मिलाना नहीं है आपको। उसको लगा लीजिए और 10 से 20 मिनट तक लगाने के बाद धो दीजिए, अच्छे ठंडे पानी से साफ कर लीजिए फेस को। इससे यह होगा कि आपके फेस में ऑयल जो निकलता है
3: एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको
4: वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा।
3: ओके, तो भाई ये थे हमारे आज के टिप ऑफ द डे। तो चलिए फटाफट चलते हैं, अब हमको दे इजाजत, कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर। खूब पानी पिए, अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि इस समय खाना कम खाइए लेकिन पानी आप प्रॉपर मात्रा में लीजिए। हमें दे इजाजत, हम दोनों को कल

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा। और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइन।

0: होंडा। संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
0: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: अरे सुना?
9: क्या?
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ!
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
10: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404-3395 84। अब सपने होंगे साकार।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। हाय हेलो गुड आफ्टरनून, आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी आज नदी मौजूद हैं आप सभी के साथ लेकर के आपके फ्राइडे का स्पेशल कॉलर ट्यून गोंडा। दो घंटे का स्पेशल आपके फरमाइशों का कार्यक्रम जिसमें आप करने वाले हैं अपनी डिमांड कॉल करके। कॉलिंग नंबर है 6393316429 और हम करेंगे उससे ट्यून अस एंजॉय आपके अपने वाले शो कॉलर ट्यून गोंडा में। तो भाई जिन्होंने अभी तक अपनी फरमाइशें नहीं की है वो कृपया करके अपना फोन उठा लें और डायल करें 6393316429 क्योंकि चल रहा है कॉलर ट्यून गोंडा आपके अपने फरमाइशों का कार्यक्रम फ्राइडे स्पेशल दो घंटे आरजे उन्नती के साथ। और चलते हैं हमारी पहली फरमाइश की तरफ जो कि समरीन जी की आई है। समरीन जी सुनना चाहती हैं रईस फिल्म से जालिमा। तो आई भाई इस गाने को आप एंजॉय कीजिए और हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर। लगातार भी फरमाइशें भेजते रहिए आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगली फरमाइश जो कि होने वाली है प्रबल जी की।

कॉलर ट्यून गुना की पहली फरमाइश आप एंजॉय कर रहे हैं समरीन जी की फरमाइश पर जालिमा। अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में आपने इस गाने को एंजॉय किया, बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य के। और आइए चलते हैं चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस को देखने और इसके बाद हम चलेंगे हमारे अगली फरमाइश की तरफ। नागेश्वर धाकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं, हेलो उन्नति मैम नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू यू, नमस्कार, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। सुरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। प्रबल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्तफा जी जो मैं सऊदी से सुन रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप। इट्स कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करते हैं हम आपके कॉलर ट्यून गोंडा में। प्रबल जी लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून राधे राधे उन्नति मैम जी एंड छोटा भीम, राधे राधे आपको, कैसे हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं, विकास तिवारी जो मैं सुन रहे हूँ नाव से, लिख रहे हैं हेलो आरजे मैम कैसे हो आप, आज तो 2 घंटे का प्रोग्राम है। जी हाँ बेशक आज 2 घंटे का प्रोग्राम है और आजकल लाइट हमसे बड़ी रूठी रूठी चल रही है, पता नहीं क्यों, जैसे मैं 2 घंटे के प्रोग्राम में एंट्री लेती हूँ बत्ती गुल हो जाती है और हमसे लाइट कहती है कि आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ, ये चैलेंज है तुम्हारे लिए और हम आपके लिए करते हैं बैठ जाते हैं शो। और हम कहते हैं आने दो हवा आने दो, अब कहाँ से आएगी ये तो मुझे भी नहीं पता है। भला आपके एरिया में लाइट आ रही है क्या, मुझे जरूर बताइएगा चैट बॉक्स में। बुद्धि जी लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। प्रबल जी लिख रहे हैं कि इतना तो असर होगा मेरी यादों का, कभी कभी बिन बात के भी मुस्कुराओगे, क्या बात है जनाब, जिसके लिए भी लिखा है बहुत खूब लिखा है आपने। एंड विकास तिवारी जी ने लिखा है कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, पता करो, पता करके आते हैं थोड़ी देर में अगली फरमाइश को प्ले करने के बाद। एंड ओके आना कभी हमारी महफिल में, हम आपको भी मुस्कुराकर जीना सिखा देंगे, ये लाइन लिखी है प्रबल मिश्रा जी ने। कायना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका स्वागत करते हैं। एंड उन्नति मैम जी गुड आफ्टरनून, कमल नैन जी कहाँ हैं बुला दीजिए, भाई हमने इतनी ज़ोर से अनाउंसमेंट कर दिए, कमल नैन जी तुसी कहाँ हो। बुद्धि जी आपको याद कर रहे हैं, आई थिंक इतना काफ़ी होगा उनको बुलाने के लिए। एंड गुड आफ्टरनून टू यू। लवली सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं उन्नति जी गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून गोंडा में। के गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं प्रिय उन्नति जी गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। विकास तिवारी जी लिख रहे हैं बरेली वाली मैडम आई हैं आज, तो कैसे हो आप, मैं ठीक हूँ और हर फ्राइडे मेरी मुलाकात होने वाली है आपसे कॉलर ट्यून गोंडा में। मनीष शर्मा जी लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर जी, हैं सर जी नहीं मैम जी बैठी हैं फिलहाल के लिए, गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप। और आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, अगली फरमाइश जो आई है वो है प्रबल मिश्रा जी की और वो सुनना चाहते हैं उई अम्मा, आपको इस गाने को सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आप अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं, अपने डेडिकेटेड सॉन्ग्स भेज सकते हैं, अपने मैसेजेस भेज सकते हैं आपके अपनी कॉलर ट्यून गोंडा में 6393316429, क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगली फरमाइश पर जो होने वाली है देवी प्रसाद जी की, सो स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो आप सुन रहे थे प्रबल मिश्रा जी की फरमाइश पर। उई अम्मा ए, तू का करता है? कुछ नहीं करता हूँ मैं फिलहाल के लिए। आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और देवी प्रसाद जी की फरमाइश पे आप सुनने जा रहे हैं उनका एंथम सॉन्ग, जहां खुशी मिलती है सोना वहीं तुम रहना। और हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए कॉल ऑफ ट्यून गुना आपके अपने रेडियो गाना स्लीपर।

देवी प्रसाद जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं, जहाँ खुशी मिलती है सोना वहीं तुम रहना। और मुझे लगता है ना, देवी प्रसाद जी का नेशनल एंथम वाला गाना हमको बोल ही देना चाहिए कि देवी प्रसाद जी हर फ्राइडे इसी गाने की फरमाइश करते हैं। वैसे हर फ्राइडे करते हैं कि हर दिन करते हैं, चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपने इस ब्यूटीफुल से सॉन्ग को और थोड़ा सा सैड कर देने वाले गाने को एंजॉय किया है आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा में। और हमारे साथ अनिल वर्मा जी जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं शुभ दोपहर सभी सुनने और सुनाने वालों को। सुनाने वाला तो मैं ही हूँ, सुनने वाले आप सब, और आप लोगों को है उनकी तरफ से शुभ दोपहर। शुभ दोपहर, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। इसके बाद भाई कायनात जी और प्रबल जी की तरफ से बहुत सारे इमोजीज आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सन्नू शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका स्वागत कर लेते हैं। सन्नू जी कैसी हैं आप? आपका स्वागत है कॉलर ट्यून गोंडा में। मनीष शर्मा जी ने थम्स अप दिया है और थम्स अप देखकर हमको थम्स अप याद आ गया, हालांकि पीते नहीं, वो बात अलग है। फिलहाल आइए चलते हमारी अगली फरमाइश की तरफ। उन्नति मैम है, जी हाँ बेशक, आज हम ही मौजूद हैं आपके साथ आपके अपने वाले शो कॉलर ट्यून गोंडा में। अगली फरमाइश जो हमारी आई है वो आई है रविंद्र जी की, और ये गाना सुनने के बाद आप अभी भी वाव वाव करेंगे, क्योंकि इस गाने में है खूबसूरत बोल। और आप एंजॉय कीजिए मीनाक्षी के ऊपर फिल्म आया गया सॉन्ग। और इस तरह के गाने मैं जब भी सुनती हूँ ना, मुझे इच्छाधारी नाग नागिन याद आ जाते हैं। आप बताइए, आपको आते हैं? वैसे फिल्म का नाम भी है नाचे नागिन गली गली, और ये गाना हमने काफ़ी बार सुना है। एंजॉय करते रहिए कॉलेज इनको, अभी फरमाइशों को भेजते रहिए 6393316429 पर। स्टे ट्यून्ड।

मिले मन से ये मन, मिले तन से ये तन, मीनाक्षी और नितेश के ऊपर फिल्माया गया गाना। आप सुन रहे थे नितिन मुकेश और चांद माथुर की आवाज में। अनजान जी ने लिखे थे इसके बोल, नाचे नागिन गली गली। और एक वक्त था जब मैं इस तरह की फिल्में देखकर सोचती थी ना कि सच में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं और कोई ना कोई इनकी मड़ियों के पीछे पड़ा रहता है, पता नहीं क्यों। लेकिन एक ख्याल ज़रूर था कि अगर मड़ी होती है तो कैसी होती है, क्या डायमंड जैसी होती है, क्या पत्थर जैसी होती है, और मुझे मिल जाएगी तो मैं कितना करोड़पति बन जाऊँगी। फिलहाल आज तक ना इच्छाधारी नाग नागिन मिले, और आज मैं सांप को देखकर कोसों दूर चली जाती हूँ। हालांकि दूर से देखने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि बड़े सुंदर लगते हैं मुझे। एंड उसके बाद लिखा है मनीष शर्मा जी ने, थी मैम और आगे बनाए हैं बहुत सारे बाइसेप्स, थैंक यू सो मच। और इसके बाद नागेश्वर जी लिख रहे हैं, रति मैम नमस्कार, सुना है कि बिजली चमकती है तो आप डर जाते हो। अजी नमस्कार आपको भी, और बिजली चमकती है तो हम नहीं डरते, लेकिन हम चमकते हैं तो बिजली ज़रूर डर जाती है। फिलहाल सनू जी आपको कॉल करना पड़ेगा, कॉलिंग नंबर है 6393316429, क्योंकि यह है कॉल अट्यून गोंडा। सारा खेल तो निगाहों का है सनम, तुमने झुकाई तो हमने हटाई नहीं। क्या बात है भाई, प्रबल मिश्रा जी ने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूब लिखना सीख लिया है और बहुत प्यारा लिखने लगे हैं आजकल वो। फिलहाल आइए चलते हमारी अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो किसी और की नहीं भाई, सुरेंद्र जी की है। तो आइए सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पे हम सुनते हैं हमारी अगली फरमाइश, यानी कि उनकी डिमांड को। आपकी अपने कॉलर ट्यून गोंडा 89.6 FM, यह रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन पर आप इंजॉय कर रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा। और इस गाने में जो आवाज़ है वो मेरी फेवरेट सिंगर अलका जी की है। फिलहाल अलका जी से जुड़ी कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है, बताते हैं लेकिन इस गाने के उस पार। समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
1: भाई अलका जी की आवाज में आप सुरेंद्र जी की फरमाइश को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच एक कॉलर है जो कुछ कहना चाहती हैं। हेलो
2: हेलो मैम।
1: हेलो नमस्कार, आपका नाम बता दीजिए प्लीज।
2: जी मैं सन्नु बोल रही हूँ।
1: जी सन्नु शुक्ला जी, बताइए कैसी हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छी, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ। और आप इस वक्त ऑन एयर हैं, तो आप जो कहना चाहती है कह सकती है।
2: मैम मैं पहले मैं एक ही चीज कहूँगी कि आप कुछ ऐसा गाना बताइए जो मैं मनी को डेडिकेट करूँ।
1: अब ये काम मैं मनी शुक्ला जी के और मनी शर्मा जी के ऊपर ही छोड़ रही हूँ सॉरी। जी
2: कि मुझे बहुत सुकून मिलता है पता नहीं क्यों उसको देख के।
1: ओके, अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत जल्द आपको एक गाना बताती हूँ।
2: जी थैंक यू।
1: ओके थैंक यू सो मच। तो भाई हमारी सन्नू शुक्ला जी कोई ऐसा गाना डेडिकेट करना चाहती हैं मनी शर्मा जी को जो उनके लिए बना है स्पेशली, क्योंकि उन्हें देखकर सुकून मिलता है। लिसनर हेल्प कीजिए थोड़ी सी। और आप सुन रहे हैं अलका जी की आवाज में जब हाले दिल, और ये वो गाना है जो काफी पॉपुलर है लोगों के बीच में। और हम आपको बता दें भाई, हमारी अलका जी जो है ना, हाल फिलहाल में राष्ट्रपति भवन गई थी, उन्हें अवार्ड मिला है, यानी कि उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आज तक आपने उनकी आवाज़ सुनी है, आज भी आप उनकी आवाज़ सुनते आ रहे हो, झूमते आ रहे हो, गाते आ रहे हो। लेकिन अब एक चीज़ है जो लोगों को परेशान कर रही है, वो है अलका जी की खामोशी। और वो इसलिए है क्योंकि सुनने में आया है अलका जी कुछ हेल्थ कंडीशन से सफ़र कर रही हैं, बोले तो उनको हेयरिंग इश्यूज हो रहे हैं, यानी कि सुनने में कुछ दिक्कत हो रही है, उनके कानों में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है जिससे उन्हें अब सुनाई नहीं पड़ रहा है ठीक तरीके से, वो चल भी नहीं पा रही हैं। और इसकी वजह से सुनने में ये भी आ रहा है कि अब वो कभी गाना नहीं गा सकती हैं। ये बात जब मैंने पहली बार सुनी थी, मेरे दिल को एक धक्का लगा था कि जिनकी आवाज़ हम बचपन से इंजॉय करते आ रहे हैं, जिनकी आवाज़ हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, उनकी आवाज़ को आज हुआ क्या है, आज वो हमारे बीच अब गाना नहीं गाने वाली है। पहले हमने लता जी को खो दिया, फिर हमने आशा जी को खो दिया, और अब हमारे बीच अलका जी हैं, तो बट अलका जी अब हमारे लिए गाना नहीं गा सकती। आई विश, मैं दुआ करूंगी कि उनकी ये प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ दोबारा से किसी एक और गाने में सुननी है। उन्होंने गानों में वो जान डाली है, वो फीलिंग डाली है कि मुझे नॉर्मल सा हूँ और हाँ भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप बताइए चैट बॉक्स में। और आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है हमारे पास अमित कुमार जी की, जो सुनना चाहते हैं छोटे छोटे पैग फ्रॉम यो यो हनी सिंह की आवाज़ में सोनू के टीटू की स्वीटी। स्टे ट्यून्ड।

हनी सिंह की आवाज, नवराज हंस की आवाज और नेहा कक्कर की आवाज में आप सुन रहे हैं सोनू की टीटू की स्वीटी फिल्म से छोटे छोटे पैगमार। म्यूजिक और बोल हैं हनी सिंह के ही फिलहाल इस गाने में, और ओरिजिनल म्यूजिक जो है वो है आनंद राज आनंद का। आपने इस गाने को एंजॉय किया, और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो किसी और की नहीं अजीज जी की आई है, जो सुनते हैं हमें मुंबई से, और वो सुनना चाहते हैं ऋचा शर्मा की आवाज में छाप तिलक सब छीनी। और आइए इस गाने को एंजॉय करते रहिए क्वालिटी गुनगुना में। फिलहाल चैट बॉक्स की अगर बात करें तो सन्नू जी लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और ओके, विकास जी लिख रहे हैं कि आज रति मैम पूरा आकाशवाणी आरजे लग रही हैं, क्योंकि गाने की पूरी डिटेल वही देते हैं, किसने आवाज़ दी है, किसने लिखा है, किसने सुरों से सजाया है। वैसे मैं आपके शहर की बरेली की आकाशवाणी बरेली भी सुनता हूँ, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप इन्जॉय करते रहिए, प्लीज़ ऑल लिसनर एक मेरी हेल्प कीजिएगा। मैं गाना सोच रही हूँ मनीष शर्मा जी के लिए, जो डेडिकेट कर सकूँ मैं सन्नू शुक्ला जी की तरफ से, और आप मुझे ज़रूर मदद कीजिए कि वो कौन सा गाना हो सकता है जो किसी को सुकून पहुंचाता है। आप एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं ऋचा शर्मा की आवाज में तो से नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी। और उसी के साथ आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है सुनील कुशवाहा जी की, जो सुन रहे हैं, जो सुनना चाह रहे हैं हमसे, लाल दुपट्टा उड़ गया तेरी हवा के झोंके से। और इस गाने को अगर आपने अमिताभ आपने अंताक्षरी में नहीं गाया ना तो आपने क्या ही गाया। फिलहाल ये गाना हमने बचपन में बहुत गाया है और लाल दुपट्टा लेके इधर उधर छत पे मंडराए भी हैं बीच दोपहरिया के अंदर। और आप सुनने जा रहे हैं अलका जी और उदित जी की आवाज़ में, जली शेरवानी के बोल हैं और म्यूजिक डायरेक्टर हैं साजिद वाजिद, यानी कि संगीत है साजिद वाजिद का, प्रियंका जी और सलमान खान पर फिल्म आया गया गाना।

क्या बात है। और भाई हमने पूछा था लिसनर से कि मनीष शर्मा जी को कौन सा गाना दे, तो हमारी रीना जी बता रही हैं कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं।

अलका जी उद्धव जी की आवाज में आप सुन रहे हैं मुझसे शादी करोगी फिल्म से, जो फिल्माया गया है सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के ऊपर। भाई लव ट्रायंगल का सीन चल रहा है यहाँ पर, ऐसा शुरुआत से देखने में लगता है। जली शेरवानी के बोल हैं और साजिद वाजिद का संगीत है। खूबसूरत गाना जो आपने इंजॉय किया, बचपन की यादों को ताजा कर देने वाला गाना आप सुन रहे थे कॉलर ट्यून गोदा में। इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है रितेश जी की, जो सुनना चाहते हैं गुड़िया कब तक रूठी रहोगी। भैया बिल्कुल भी नहीं रूठी रहना है, और ऑफकोर्स आप इस गाने को सुनते रहिए प्लीज़, और अपनी फरमाइशें भेजते रहिए आपके अपने कॉलर ट्यून गोदा पर, जो कि 6393316429 डायल कीजिए। भेजते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और आप सुन रहे हैं रेडियो 90.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर फ्राइडे स्पेशल विद आरजे उन्नति।

लता जी की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक और मजरू सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे हैं। गुड़िया हमसे कब तक रूठी रहोगी, बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। ब्लैक एंड वाइट लेकिन प्योर नॉस्टैल्जिया, प्योर वाइब्स आपने एंजॉय की है। और ये गाना जो था ये था रतेश जी की फरमाइश पर। अगली फरमाइश आई है विकास तिवारी जी की, जब मैं सुन रहे हूँ नाव से, और वो सुनना चाहते हैं उस वक्त का सबसे पॉपुलर गाना, एक ऐसी एल्बम जिसके आने पर थिएटर्स वालों ने खुद अपने चारों तरफ, अपने दोनों तरफ स्पीकर लगाए थे ताकि लोग इस एल्बम की हर एक गाने को बेहतरीन तरीके से महसूस कर सके। अलका जी की आवाज़ है, उदित नारायण की आवाज़ है, ताल फिल्म है, 1991 में फिल्माया गया गाना है। और मैं आपको बता दें जो बोल है वो आनंद बख्शी के हैं, AR रहमान का म्यूजिक है, फिल्माया गया है, हमारी फेवरेट, आपकी फेवरेट ऐश्वर्या राय पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉल ट्यून गोंडा, ताल से ताल मिला, स्टे ट्यून्ड। शिवाजी हमारे साथ जुड़ गए हैं विद्यानगर से, जो है मोतीगंज में, लिख रहे हैं नमस्ते मैम जी, नमस्ते, आपको कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं हम। आसिफ खान हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, गुड आफ्टरनून टू यू, नाइस सॉन्ग। वंशिका जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गुना में।

ताल से ताल, जी ताल से ताल मिला। यार रहमान का म्यूजिक है, आनंद बख्शी के बोल है, उदित जी और अलका जी की आवाज। ताल 1999 में रिलीज हुई ये फिल्म, बहुत ही सुपर डुपर हिट गई थी। और उसी के साथ आइए चलते हैं अगली फरमाइश पर। अगली फरमाइश आई है धर्मेंद्र मोहन जी की और वो सुनना चाह रहे हैं ओम शांति ओम से शाहरुख खान और दीपिका पर फिल्माया गया वो गाना जिसने सबको रुलाया है। जी हाँ, ओम शांति ओम आपको पता होगा कितनी फेमस फिल्म है और इसमें आवाज है राहत फतेह अली खान और ऋचा शर्मा की। कुमार के बोल हैं विशाल और शेखर की संगीत, इन्होंने अपने संगीत इस खूबसूरत गाने को सजाया है और ये गाना आपको शुरुआत से ही बेहतरीन महसूस कराएगा, प्लस थोड़ा सा सैड भी। सुनते रहिए

ओम शांति ओम से आप सुन रहे हैं राहत फतेह अली खान और ऋचा शर्मा की आवाज में जग सुना सुना लगे। विशाल और शेखर का संगीत, कुमार के बोल, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया गाना। फरमाइश थी धर्मेंद्र मोहन जी की जो हमें सुन रहे हैं आवाज विकास से, और वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का। अगली फरमाइश आई है रीना शर्मा जी की जो हमें सुनती हैं उत्तराखंड से, प्यार की दास्तान। एंजॉय करते रहिए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को, ब्लैक एंड व्हाइट लेकिन प्योर नॉस्टैल्जिया सॉन्ग। लवली सिंह जी लिख रहे हैं बेस्ट सॉन्ग, थैंक यू सो मच, क्रेडिट जाता है धर्मेंद्र मोहन जी को। आप सुन रहे कॉलर ट्यून गुना, आपकी अपने फरमाइशों का कार्यक्रम, दो घंटे का स्पेशल फ्राइडे अपनी आशुनती के साथ। आपके अपने एफएम रेडियो ज्ञान असली जी 9.6 एफएम पर अपनी फरमाइशों को भेजते रहिए 6393316429, आई रिपीट 6393316429 पर।

और वक्त है अगली फरमाइश की तरफ चलने का। अगली फरमाइश आई है रईस जी की, जो सुनना चाहते हैं सुनिए तो, फ्रॉम यस बॉस। और इस गाने को डेडिकेट किया है उन्होंने आरजे आयुषी को, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गाने को हम उन तक पहुंचा कर आते हैं। एंजॉय करते रहिए, कॉलर ट्यून गोना भेजते रहिए अपनी फरमाइश 6933316429 पर, क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस 89.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन विद आरजे नती।

रईस जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं, सुनिए तो अभिजीत की आवाज में बोल है जावेद अख्तर के जतन ललित का संगीत। यस बॉस से आप इंजॉय कर रहे थे इस खूबसूरत से गाने को। आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है हमारे पास राम नरेश जी की, जो सुनना चाहते हैं एक खूबसूरत सा गाना, ना झटको जुल्फों से ये पानी। क्या बात है, उस वक्त बड़े ही रोमांटिक गाने बनाए जा रहे थे और आप एंजॉय करने जा रहे हैं इस प्यारे से सॉन्ग को। सुंदर ये कॉलर ट्यून गोंडा स्टूडियो।

राम नरेश जी की फरमाइश के बाद आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो की है राकेश वर्मा जी, और वो सुनना चाहते हैं अपने डिमांडेड सॉन्ग में जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। अल्ताफ राजा की आवाज में आप इस गाने को एंजॉय कीजिए, और हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर जो होने वाली है मुमताज अंसारी जी, अरविंद मौर्य, मंगली प्रसाद, सभिया, मन्ने शर्मा, लक्ष्मी विजय, भूपेंद्र लाल एंड सन्नू जी की फरमाइश, रिंकी प्रजापति, सबलू जी, मुस्तफा जी, नागेश्वर धाकर जी, स्टे ट्यून्ड।

राकेश वर्मा की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं अल्ताफ राजा की आवाज में जा बे फजा हमें प्यार नहीं करना। और अगली फरमाइश आई है मुमताज अंसारी जी की, जो मुहर्रम स्पेशल कवाली सुनना चाहते हैं। तो आइए आप एंजॉय कीजिए नाना मदीना हमसे छूट गया। सुनते रहिए कॉल ऑफ चिंगोंडा स्टूडियो।

हाँ जी, तो आप सुन रहे हैं मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर नाना मदीना हमसे छूट गया और अगली फरमाइश आई है अरविंद जी की और वो सुनना चाह रहे हैं जिस पथ पर चला उस पथ पर मुझे, और ये गाना फिल्माया गया है नूतन जी पर, मनोज कुमार पर। लता जी की आवाज़ है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और मनोज कुमार ने लिखे हैं इसे खूबसूरत बोल। सुनते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा, क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: जिस पथ पर चला, और ये गाना था अरविंदर जी की फरमाइश पर। आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है मंगली प्रसाद जी की, और वो सुनना चाहते हैं नन्हे फरिश्ते। एंजॉय कीजिए इस प्यारे से खूबसूरत से गीत को, ओ नन्हे फरिश्ते, टाइमलेस सॉन्ग, रफी साहब की आवाज। आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा 1969 का सुपर डुपर हिट गाना।
1: फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता।
0: मनु शर्मा जी प्लीज आप अपना गाना मुझे बता दीजिए, क्योंकि चैट बॉक्स में कहीं भी मुझे आपके सॉन्ग नहीं।

आप सुन रहे हैं मंगली प्रसाद की फरमाइश पर नन्हे फरिश्ते, और आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है राहत फतेह अली खान की आवाज में। सबिया जी सुनना चाहती हैं इश्क के जाम, इंजॉय करते रहिए। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, जो कि होने वाली है मन्ने शर्मा जी की, लक्ष्मी विजय जी की, भूपेंद्र लाल जी की, सन्नू जी की एंड रिंकी प्रजापति की, सबलू जी की, एहसान जी की, नागेश्वर जी की, मुस्तफा जी की।

0: बेहद ही खूबसूरत बोल हैं इस गाने के, इश्क जान। हम आपको बता दें भाई, अनजान साकरी और साहब अलाबादी के बोल हैं, राहत फतेह अली खान की आवाज़ है जो इस गाने को बेहद ही उम्दा बनाती है। आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला फरमाइश आया है हमारे पास मनीष शर्मा जी का, मैं नागिन तू सपेरा, क्योंकि भाई मनीष शर्मा जी को आज अमरेश पुरी की बड़ी याद आ रही है। अमरेश पुरी जो कि अपने लेजेंडरी विलन का किरदार निभाते आए हैं, और उनकी याद में सुनने जा रहे हैं वो इस बेहतरीन से गीत को जो कि श्रीदेवी पर फिल्माया गया है। स्टे ट्यून्ड।
1: मेरी जान तो जाएगी भैरवनाथ।
0: आज लगता है रेडियो ज्ञान असली पर कोई ना कोई इच्छाधारी नाग नागिन दिख ही जाएगा, क्योंकि काफी देर से नागिनों की फरमाइशें आ रही हैं।

भाई अगर बात करें श्रीदेवी की, तो ये वो अदाकारा हैं जिन्होंने जब रोल किया है नागिन का, यानी कि इच्छाधारी नागिन का, तो उनकी आंखों में वो चीज नजर आई है। उनकी आंखों को देखकर मुझे लग रहा था कि ये सच में तो नहीं किसी इच्छाधारी नागिन का ही रूप है जो एक्ट्रेस बनकर बॉलीवुड में एंट्री ले चुकी है। एक ऐसी लेजेंडरी अदाकारा जिनकी अदाकारी मुझे बड़ी पसंद थी, जिनको देखते ही मेरा दिल खुश हो जाता था, जिनकी फिल्में मुझे बड़ी पसंद थी, और उनके लिए स्पेशली आप एक गाना सुन रहे हैं, मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा। लता जी की आवाज है, खूबसूरत गाना है, आपने एंजॉय किया मनीष शर्मा जी की फरमाइश पर। और आइए चलते हमारी अगले गाने की तरफ, लक्ष्मी विजय जी और केके जी की फरमाइश पर आप सुनने जा रहे हैं आशा जी की आवाज में बटाटा बड़ा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्वालिटी गुना, मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: इस गाने को सुनने के बाद मुझे भूख लगाई है और मुझे भी अब बटाटा बड़ा चाहिए। हालांकि कभी खाते तो नहीं है जल्दी, लेकिन अब पता नहीं क्यों क्रेविंग हो रही है। आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना आया है भूपेंद्र जी की फरमाइश पर और वो सुनना चाहते हैं लाल दुपट्टा मखमल का, सॉरी मलमल का। सुंदर ये टाइटल ट्रैक सॉन्ग है ये और आपने अभी इंजॉय किया आशा जी और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज में हिफाजत फिल्म से 1987 की फिल्म बटाटा बड़ा।
1: कभी दर्द भरे तो कभी खुशी के,

आप सुन रहे हैं भूपेंद्र जी की फरमाइश पर लाल दुपट्टा मखमल का, और आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। ये फरमाइश ऑन एयर डिमांड की गई थी और हम आपके लिए पेश करते हैं वो खूबसूरत गाना जो मुझे लगता है कि सन्नू शुक्ला जी को डेडिकेट कर सकती हैं। बरेली की बर्फी से कीर्ति सनन और आयुष्मान खुराना पर फिल्माया गया गाना। आयुष्मान खुराना की आवाज़ में तू नज्म नज्म स्टेडियम।

मनीष शर्मा को डेडिकेटेड सनू जी की तरफ से नज्म नज्म बरेली की बर्फी फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे। आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो कि है मुस्तफा जी की। हमें सुन रहे हैं सऊदी से और वो सुनना चाहते हैं जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए कॉल ऑफ ट्यून। गुड डे।

मुस्तफा जी की खूबसूरत फरमाइश सऊदी से आप सुन रहे हैं ये खूबसूरत सा गाना, जो तुम्हें हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे, क्या बात है। आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश आई है रिंकी प्रजापति की, जो सुनना चाह रही हैं नैनो की जो बात नैना जाने है। ये गाना मुझे याद है कोविड के टाइम पर इस गाने को हमने बहुत सुना था, तो आइए भैया उस वक्त को फील करते हैं, एंजॉय करते हैं और उस गुजरे हुए लम्हे को दोबारा से याद करते हैं।

2020 का वो वक्त और टिकटॉक का जमाना, और उस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो था स्कूल वाली लव स्टोरीज, जो हर जगह देखने को मिल रही थी, और उस गाने में भी वही था। बहुत ही खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे, रिंकी प्रजापति, नैनो की जो बात नैना जाने हैं। और इसी के साथ आइए चलते अगली फरमाइश की तरफ। सबलू जी की फरमाइश आ चुकी है और वो सुनना चाहते हैं वो गाना जिसको हम कहते हैं ओम शांति ओम। और ये भैया ओम शांति ओम ना मुझे बड़ी पसंद है, और आई विश कोई ऐसी फिल्म दोबारा से बन जाए और मैं दोबारा से उस फिल्म को एंजॉय कर सकूँ। आप सुनने जा रहे हैं दीवानगी दीवानगी ओम शांति ओम से। सो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली फरमाइश पर। अगली फरमाइश है एहसान जी की, अनिल जी की, नागेश्वर ठाकुर की।

जी ओम शांति ओम। आपने इस बेहतरीन से गाने को सुना सबलू जी की फरमाइश पर, और ऑफ कोर्स काफी मूड बदल गया होगा आप सबका भी। कमल नयन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने आते ही हमारे पास है फूलों की और हार्ट की बारिश कर दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और विकास जी लिख रहे हैं, कांटों से क्या डरना जब पसंद ही गुलाब हो। क्या बात है भाई, आइए चलते हैं हमारी अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश आई है एहसान जी की, एहसान जी सुनना चाहते हैं, आदमी फिल्म से राही मन में दुख की चिंता क्यों सताती है। सुनते रहिए, हम मिलेंगे अपनी आखिरी दो फरमाइशें लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप एंजॉय कर रहे हैं राही मनवा दुख का ही चिंता। इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ, जो कि आई है अनिल जी की, और वो सुनना चाहते हैं कुमार सानू की आवाज में मैं आपके सीने में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉलर ट्यून को ना। मिलते हैं अपनी आखिरी फरमाइश को लेकर के आज के शो की। अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा, आज का शो आपको कैसा लगा, आपने एंजॉय किया या नहीं, और किसकी फरमाइश आपको बेहद

और ये है हमारे शो की आखिरी फरमाइश, और ये गाना उन सभी को डेडिकेटेड है मेरी तरफ से जो आज अपनी फरमाइशें नहीं भेज पाए हैं, जो हमारे साथ लगातार पिछले 2 घंटे से बने हुए हैं रेडियो गार्डन फ्रीक्वेंसी या एप्लीकेशन से। तो ये गाना आप सभी के लिए, आप एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा। सुन रहे थे आप आशुनदी के साथ 89.6 FM, ये है रेडियो ज्ञानस्थली आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा, आपने अपनी फरमाइशों को एंजॉय किया होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और ये फरमाइश नागेश्वर धाकड़ की, प्लस आप सभी को डेडिकेटेड।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूं आईके श्रीवास्तव
2: और मैं आयुषी,
1: लेकर हाजिर हूं गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया स्थलीय निरीक्षण। बता दें कि जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने तहसील तरबगंज अंतर्गत सकरौरा भिखारीपुर तटबंध तथा बाढ़ संभावित क्षेत्र सनोली मोहम्मदपुर गिरणियनपुरवा आईली परसौली का स्थलीय निरीक्षण कर बाढ़ सुरक्षा एवं बचाव तैयारियों का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ चौकियों का स्थापना, राहत एवं बचाव सामग्री की उपलब्धता, नाव की व्यवस्था, आपदा प्रबंधन उपकरणों की स्थिति तथा आपातकालीन कार्य योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से संबंधित सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को संभावित जोखिमों के प्रति जागरूक किया जाए तथा समय समय पर आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए तथा साथ ही साथ शिविर, पेयजल, खाद्यान्न एवं चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था तथा पशुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं भी पहले से सुनिश्चित कर ली जाए।
2: गोंडा में सरयू नदी में भैंस नहलाने गए युवक पर मगरमच्छ का हमला, मजदूरों ने जान बचाई। बता दें कि गोंडा उमरी बेगमगंज क्षेत्र में सरयू नदी में भैंस नहलाने गए एक युवक पर मगरमच्छ का हमला हो गया। तटबंध पर काम कर रहे मजदूरों की बहादुरी से युवक की जान बच गई। ये घटना बुधवार शाम को हुई है। सुनीली निश्चित पूर्वा के भानु चौहान भैंस नहलाने नदी में उतरे थे, तभी मगरमच्छ ने उनकी जांघ पकड़ ली और पानी में उन्हें खींच लिया। भानु की चीख सुनकर आसपास काम कर रहे मजदूर हथौड़ा लेकर मगरमच्छ की ओर दौड़े। उन्होंने मगरमच्छ पर हमला करके भानु की जान बचाई। घायल भानु को लोगों ने एम्बुलेंस से CHC पहुंचाया। डॉक्टर ने प्राथमिक चिकित्सा के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया।
1: जनपद गोंडा के नवाबगंज विकास खंड की ग्राम पंचायत कुलमपुर इमाम में बुधवार को जन समस्या समाधान बैठक का आयोजन किया गया। एडीओ पंचायत नंद कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण का प्रयास किया गया। प्रधान प्रतिनिधि आनंद पांडे ने जानकारी दी कि एडीओ पंचायत नंद कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्रामीणों की शिकायतें और समस्याएं सुनी। बैठक में कुल 6 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4 को मौके पर ही निस्तारण कर दिए गए। शेष 2 मामलों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि ग्राम पंचायत प्रशासन ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद गोंडा में कोचिंग लाइब्रेरी पर सख्ती, 20 से ज्यादा स्थानों पर गए नोटिस। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद गोंडा जिले में भी कोचिंग और लाइब्रेरी संस्थानों पर कार्रवाई तेज हो गई है। चारों तहसील में अधिकारी लगातार चेकिंग कर रहे हैं। इस कड़ी में करनैलगंज के SDM नेहा मिश्रा ने करनैलगंज, परसपुर और कटरा बाजार क्षेत्र के 20 से ज्यादा कोचिंग और लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। जांच में सभी संस्थान मानक विहीन पाए गए। SDM ने तुरंत सभी को नोटिस जारी कर दिया। एक हफ्ते के अंदर सुरक्षा के सभी मानक पूरे करने को कहा। अगर मानक पूरे नहीं हुए तो कोचिंग और लाइब्रेरी पर सील लगा दी जाएगी।
1: जनपद गोंडा में युवक से मारपीट घटना CCTV में कैद। बता दें कि जनपद के कटरा बाजार थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट का मामला

0: सामने आया है। यह घटना बुधवार सुबह करीब 9:30 पर कटरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 दलाल टोला से आ रही है, जहां मारपीट की पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि कुछ लोग सड़क पर आकर पैदल जा रहे मजाकल हक को रोकते हुए एक युवक पहले उसे थप्पड़ मारता है, फिर अन्य लोग उसे पकड़कर मारपीट करते हुए अपने घर में खींच ले जाते हैं। घर के अंदर भी उसके साथ मारपीट की गई। फुटेज में एक अन्य युवक मजाकल हक के साथी को मारने के लिए दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है।
1: गोंडा में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल, ग्रामीणों ने जांच की मांग। बता दें कि गोंडा कोल्हमपुर क्षेत्र में कटरा भोगचंद टिकरी मार्ग से बैजलपुर गांव के स्कूल तक बन रही सड़क की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल उठाया। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस सड़क के नवीनीकरण में अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गिट्टी को सही से दबाया नहीं जा रहा है, कई जगह पर गड्ढे भी ठीक से नहीं भरे गए हैं। तारकोल बिछाने के बाद गिट्टियां ऊपर तक दिखाई दे रही हैं, जिससे काम की गुणवत्ता पर शक हो रहा है। ग्रामीण राहुल पांडे, सुनील और सजीवन ने कहा है कि अगर इस तरह से काम हुआ तो सड़क जल्दी टूट जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को तकनीकी जांच की मांग की है। वहीं ठेकेदार दिवाकर मौर्य ने आरोप को गलत बताया है और कहा है कि काम मानकों के अनुसार ही हो रहा है।
0: गोंडा में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का हुआ समापन। बता दें कि भारत सरकार के सेवा सुशासन एवं जन कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का रविवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ है। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना, उपलब्धियों तथा विकास कार्यों की जानकारी आम जन को प्रदान की गई है। समापन कार्यक्रम में भाजपा के महामंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक रंजीत बाबा, सभासद मनीष त्रिवेदी, सभासद रामगोपाल साहू, भाजपा युवा नेता अवधेश कुमार आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों की सराहना की और कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने आम जन से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान भी किया है। कार्यक्रम के दौरान विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अतिथियों का स्वागत किया तथा प्रदर्शनी के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी प्रतिभागियों एवं आगंतुक के प्रति आभार व्यक्त किया है। समापन के साथ ही 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक समापन घोषित किया गया है।
1: गोंडा में खेत में करंट के चपेट में आने से किसान की मौत। बता दें कि गोंडा कौड़िया थाना क्षेत्र के मोहन टेपरा गांव में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे खेत में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक का नाम लल्लू पुत्र जगदीश, उम्र 52 साल है। परिवार के अनुसार लल्लू सुबह खेत में रखवाली करने गए थे। उनके खेत के पास नन्हे नाम के एक व्यक्ति ने फसलों को जानवर से बचाने के लिए बिजली से करंट छोड़ रखा था। अनजाने में लल्लू उसी करंट के चपेट में आ गए और उनकी वहीं पर मौत हो गई। काफी देर बाद घर ना लौटने पर परिवार वाले खेत पहुंचे तो लल्लू का शव उन्हें वहां पे पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
0: सरकार की मनसानुरूप 1200 मतदाताओं के मानक पर होगा मतदेय स्थलों का संभाजन। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने जारी की समय सारणी। आगामी निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से पूर्व मतदेय स्थलों के संभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी गोंडा द्वारा जनपद के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचक अधिकारी के अनुसार गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मतदेय स्थलों का संभाजन 1200 मतदाताओं के मानक के आधार पर किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 जून से 28 जून 2026 तक मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निर्धारण तथा नए मतदान केंद्र के भवनों का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके उपरांत 29 जून से 1 जुलाई तक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जुलाई को मतदेय स्थलों की आलेख सूची प्रकाशित की जाएगी तथा 4 जुलाई को उक्त सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाएगी। सांसद, विधायक एवं राजनीतिक दलों से प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों का निस्तारण के उपरांत 18 जुलाई तक सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद 25 से 28 जुलाई तक जिला निर्वाचन निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजे जाएंगे तथा 31 जुलाई तक आयोग के अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी।
1: गोंडा में 40 डिग्री गर्मी के बाद हुई हल्की फुल्की बारिश, लोगों को इससे मिली राहत। बता दें कि गोंडा जिले में गुरुवार दोपहर मौसम अचानक से बदल गया। 40 डिग्री की भीषण गर्मी के बाद दोपहर 1 बजे काले बादल छा गए और फिर कुछ कुछ जगह पे बारिश भी शुरू हो गई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश 1 घंटे से ज्यादा तक हुई। बारिश से जहां गर्मी कम हुई वहीं घरों के अंदर उमस भी बढ़ गई। इस बारिश से गन्ना किसानों को भी फायदा हुआ क्योंकि उनकी फसल में पानी की जरूरत। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट भी जारी किया था। विभाग ने कहा कि हल्की हवा के साथ बारिश जारी रहेगी, लोगों को इससे सतर्क रहने की सलाह दी है।
0: जनपद गोंडा में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान एवं सहायता के लिए गोंडा पुलिस की विशेष पहल, घर घर पहुंचकर 160 वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं सुनकर किया गया मौके पर निस्तारण। बता दें कि सहायता एवं उनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से विशेष कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान प्रारंभ किया गया है। वर्तमान सामाजिक प्रवेश को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में निवास करने वाले 70 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक का चिन्हीकरण कर उनका विवरण संकलित किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक थाने की कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट बनाई गई है जो नियमित रूप से वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क स्थापित कर उनकी आवश्यकताओं एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जानकारी प्राप्त कर रही है। अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक का 2 विशेष वरिष्ठ नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया है जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आयु, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिति सहित संपर्क से संबंधित आवश्यक विवरण अंकित किया जाएगा। सीपीयू टीम द्वारा प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिवस सोमवार, बुधवार एवं शनिवार पर वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क स्थापित कर उनकी कुलक्षेम जानी जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी तथा प्रभारियों एवं सीपीयू टीमों को निर्देशित किया गया है।
1: गोंडा में रिश्वत लेते पकड़ा गया वन दरोगा निलंबित, 6,000 रुपए किए गए बरामद। बता दें कि गोंडा तरबगंज वन रेंज में तैनात वन दरोगा बालक राम को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने 23 जून को एंटी करप्शन टीम ने 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बालक राम पर फर्नीचर दुकान चलाने की अनुमति देने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। नवाबगंज के गोपसराय गांव के फर्नीचर व्यापारी राधे श्याम को वो 10,000 रुपए उनसे मांगा जा रहा था। गरीब का हवाला देने पर 6,000 पर वे मान गए थे और दुकान बंद करने की धमकी भी दे रहे थे। राधे श्याम की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने 23 जून को परसदा गेट के पास उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वन संरक्षक डॉक्टर एम सोमारन ने निलंबन के साथ ही विभाग की जांच का आदेश भी दिया है। बालक राम पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज भी हुआ है।
0: जनपद गोंडा के विभिन्न क्षेत्रों में मुहर्रम की 8वीं का जुलूस मातमी माहौल में निकाला गया है। इसमें अकीदतमंदों ने हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को याद कर गम का इजहार किया है। जुलूस में शामिल अकीदतमंदों ने नौहा खानी और सीना जनी की विभिन्न अंजुमनों ने मातमी कलाम पढ़कर करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यह जुलूस अपने निर्धारित मार्गों से होते हुए इमामबाड़े पहुंचा। यहां मौलाना की तकरीर और मजलिस के बाद जुलूस का समापन हुआ।
1: गोंडा में फूस के मकान पर लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बता दें कि गोंडा नवाबगंज के तुलसीपुर गाँव माझा में गुरुवार तड़के 3:30 बजे एक फूस के मकान में आग लग गई। आग में परिवार की गृहस्थी पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। 30,000 रुपए नगद समेत लाखों का नुकसान भी हो गया है। पीड़ित रामलखन यादव के घर में अचानक आग लग गई थी और देखते ही देखते मकान को अपनी चपेट में भी ले लिया था। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत करके आग को काबू में किया है लेकिन तब तक संदूक में रखे 30,000 रुपए नगद, अलमारी, जेवरात, कपड़े सब जल चुके थे। थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना मिली थी। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है।
0: कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन के संबंध में गठित अंतर विभागीय समिति तथा आगामी पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने HPV वैक्सीन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह वैक्सीन महिलाओं एवं बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने में अत्यंत प्रभावी है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लक्षित आयु वर्ग की बालिकाओं तथा वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित की जाए तथा अभिभावक को इसके लाभों के संबंध में जागरूक किया जाए, जिससे अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी एवं अभियान से जुड़ सके। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे, इसके लिए सभी बूथ, ट्रांजिट पॉइंट तथा घर घर जाकर दवा पिलाने वाली टीमों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को माइक्रो प्लान के अनुसार कार्य करने तथा अभियान से जुड़े सभी कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो उन्मूलन एवं जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यह अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अभियान को सफल बनाएं।
1: गोंडा नवाबगंज में अस्पताल के सामने टीन शेड को लेकर मारपीट हो गई, कई लोग इसमें घायल भी हो गए। बता दें कि गोंडा नवाबगंज कस्बे में बुधवार दोपहर देव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने टीन शेड लगाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और पथराव तक नौबत आ गई, इसमें कई लोग घायल भी हो गए। अस्पताल संचालन मनोज कुमार सिंह का कहना है कि टीन शेड की वजह से मरीजों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने विरोध किया तो कहासुनी के बाद लाठी डंडों से हमला हुआ और पत्थर भी फेंके गए। इससे अस्पताल के शीशे टूट गए और अस्पताल से जुड़े कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची, स्थिति संभालने के बाद और नगर निकाय की टीम ने प्रशासन की मौजूदगी में अस्पताल के सामने और सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाया। पुलिस ने दोनों ही पक्ष को तहरीर दी और जांच भी शुरू कर दी है।
0: जनपद गोंडा के जिला अस्पताल राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय गोंडा में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के नवनिर्मित परसो विंग एवं वार्ड का लोकार्पण माननीय विधायक सदर गोंडा प्रतीक भूषण सिंह एवं जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन तथा माननीय सांसद गोंडा केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पत्नी रमाशंकर मिश्रा द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह एवं चिकित्सीय स्टाफ ने दोनों अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। बता दें कि लोकार्पण समारोह के दौरान माननीय विधायक सदर गोंडा ने कहा कि मातृ एवं शिशु शक्ति सेवाओं को सही बनाए रखने के उद्देश्य से परसो विंग एवं वार्ड का विस्तार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे जनपद की गर्भवती महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा सुरक्षित परसों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से यह परसो विंग मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा प्रदान करेगा। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन को मरीजों को बेहतर एवं संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य करने हेतु प्रेरित किया है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने नव स्थापित परसो विंग वार्ड का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाएं, उपकरणों एवं व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों से संवाद भी किया है।
1: गोंडा के गिरसर गांव का तालाब सूखा, पशुओं और किसानों को हुई परेशानी। बता दें कि गोंडा वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गिरसर की टेढ़ी नदी से जुड़ा तालाब पूरी तरीके से सूख गया है। इससे गांव के पशुओं को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है और किसान को सिंचाई के लिए भी रुकना पड़ रहा है। गांव के सूबेदार ने बताया कि पहले तालाब में काफी पानी था, जिससे खेतों की सिंचाई आसानी से हो जाती थी और पशुओं को भी पानी मिल जाता था। अब जिन किसानों के पास बोरिंग नहीं है, उनकी खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीण साहिबान अहमद ने ग्राम प्रधान खुशी राम से शिकायत की है। प्रधान ने भरोसा दिया है कि जल्द तालाब में पानी भरवाया जाएगा और इस बारे में अफसरों से भी बात होगी। लोगों का कहना है कि पहले कभी तालाब इस तरह से नहीं सूखा है, अब लोग तालाब की मिट्टी भी निकाल कर ले जा रहे हैं।
0: जनपद में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद गोंडा में विभिन्न स्थानों, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय तथा सभी ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य जनपदीय कार्यक्रम पुलिस लाइन गोंडा में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मुख्य अतिथि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री श्री राजेश वर्मा जी ने की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने भागीदारी ली। इस अवसर पर माननीय विधायक सदर गोंडा प्रतीक भूषण सिंह, माननीय विधायक महनोन विनय कुमार द्विवेदी, पुलिस उप महानिरीक्षक देवीपाटन प्रक्षेत्र अशोक शुक्ला, जिलाधिकारी गोंडा श्रीमती प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक गोंडा विनीत जायसवाल आदि लोगों ने बड़ी संख्या में अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: अरे सुना?
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: अरे सुना?
0: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: डिलीशियस
6: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

सो आप सभी को सर्वप्रथम मुहर्रम की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सभी का स्वागत कर रही हूं दिल से आपकी अपनी आरजे बिना। और जैसा कि आज की शाम की शुरुआत काफ़ी मतलब शांत हृदय से और एक ऐसी पर्सनालिटी को याद करते हुए शुरू करना चाहती हूं जिसके बारे में आज गोंडा शहर ही नहीं आसपास के मतलब हर इंसान को पता है कि गोंडा शहर की एक ऐसी हस्ती है जिसने गोंडा शहर की नारियों के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और सबसे पहले मुहर्रम की बधाई भी देना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा त्यौहार है हम सभी के लिए और गोंडा शहर में इसकी रौनक दूर दूर तक दिख भी रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि आज की शाम की शुरुआत जो है वो दिल से स्वागत करते हुए होगी क्योंकि आज हम सम्मान और श्रद्धांजलि के साथ आज की शाम का शुरुआत करना चाहते हैं। आज हमारे रेडियो स्टेशन की जो कहते हैं ना संरक्षक के रूप में जो प्रेरणा रही पूजनीय स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा सिन्हा जी की आज पुण्यतिथि है। एक संवेदनशील व्यक्तित्व वाली समाज सेवी मानवता की सेवा को समर्पित एक ऐसी व्यक्तित्व थी। उनके जीवन ने हर दिन हर व्यक्ति को प्रेरणा दी। कहते हैं ना कि सच्ची पहचान धन से नहीं पद से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से और दूसरों के जीवन में लाई मुस्कुराहट से बनती है। तो वो मुस्कुराहट वो मुस्कान हमारी पूजनीय सिन्हा मैम ने सबके चेहरों पे ला दी थी। खास तौर पे गोंडा शहर की लड़कियों के लिए वो एक मिसाल बनी। नारी शक्ति का उन्होंने जो कहते हैं ना मशाल जो थी सबसे पहले उस समय जलाई। आज तो जगह जगह रिसोर्सेज हैं सब हैं लेकिन कहते हैं ना कि जो पहली बार करता है वही महान होता है। आज उन्होंने महिलाओं के लिए वो मशाल ना जलाई होती जिसे कहते हैं ना पहला गोंडा शहर का महिला डिग्री कॉलेज, तो वो अगर ना खुला होता ना जाने कितनी हम लोग की माएँ और मैं तो अपनी बहुत सारी ऐसी भी जानती हूँ कि ग्रैंड हमारी पेरेंट्स जो हैं जो कि विमेन हैं उनकी शिक्षा यहीं से हुई है। तो बहुत बड़ी बात है ये। कहते हैं कुछ लोग दुनिया से तो चले जाते हैं लेकिन उन्हें उनके संस्कार उनकी सीख उनके नेक काम और उनकी पहचान उन्हें कभी साथ जाने ही नहीं देती। वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। हम सभी मैम को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। कहते हैं कि अगर व्यक्तित्व महान हो तो आसपास का मतलब वातावरण ही पूरा कहते हैं ना कि विकसित हो जाता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जीव जंतु हों सब। वो हमेशा से महिला शिक्षा को सशक्त करने की समर्थक रही। गोंडा शहर में महिलाओं को उच्च शिक्षा देने का बढ़ावा जो था उसमें कोई नहीं करना चाहता था। अरे प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी कोई नहीं बोलता था। तो ऐसे वातावरण ऐसे पिछड़े माहौल में उन्होंने ऐसी मशाल जलाई जिसके बारे में इंसान सोचता कई बार बिल्कुल सोचते। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने मतलब अपने लिए बहुत कुछ किया होगा लेकिन दूसरों के लिए जब करने की बारी आई होगी तो शायद एक संकोच आ गया होगा और उन्हीं के पद चिन्हों पे उनकी जनरेशन चल रही है। हमारे दीपेंद्र सिन्हा सर हमारे आरती मैम और हमारी अनु मैम जिन्होंने उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का निर्णय लिया है और आए दिन हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका सबसे बड़ा प्रयास आपके सामने है आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन। तो सबसे पहले मैम के लिए गाना प्ले करते हैं फिर इसके बाद बात करते हैं और मुहर्रम की बात तो करनी ही है और आज फ्राइडे भी है तो यानी कि आने वाली और आ चुकी नई मूवीज़ की बात होगी। लास्ट टाइम वाली मूवीज़ को आपने बहुत प्यार दिया था, आपने कहा था कि जितनी मैंने रिव्यू की वो सारी आपने देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो मैं आप लोग के लिए थ्योरी जो थीसिस करके लाती हूँ जो अपकमिंग मूवीज़ हैं जो निकल मतलब रिलीज़ हो चुकी मूवीज़ हैं चाहे वो OTT पे हो चाहे वो थिएटर्स हों तो उनको आपके तक पहुंचा के मुझे सेटिस्फेक्शन ये मिलता है कि मैं नहीं चाहती कि देखिए आज के डेट में टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इस टाइम में अगर हमारा टाइम वेस्ट हो जाए
कोई ऐसी मूवी या कुछ ऐसा कंटेंट देख के जिसको देखने के बाद पहले तो हम डिस्टर्ब हो जाएं, फिर डिस्टर्ब होने के साथ साथ हमारे 3 से 3.5 घंटे बर्बाद हो जाए, तो ऐसा ना हो। तो इसीलिए रिव्यू सुनना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं सच बताऊँ, मैं भी रिव्यू सुन के या रिव्यू पढ़ के किताबों से, मतलब न्यूज़पेपर से या जो भी है ऑनलाइन जो भी वेबसाइट्स हैं, तभी मैं कोई मूवी या कोई वेब सीरीज़ वगैरह देखती हूँ। तो ऐसे ही आगे रिव्यू करूँगी। और चलिए मैम के लिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत और एक हसीन सा गीत, जिसको सुन के एक बढ़िया सी मन में फीलिंग आएगी। और ये गाना मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है और आप सबका भी हो जाएगा। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, जब जब बहार आए, जब फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, ओनली फॉर आर कृष्णा स्नेहा मैम।

मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस गाने को थोड़ा मैं कंटिन्यू कर दूँ, क्योंकि ये गाना ऐसा है जिसको सुनने के बाद मेरा दिल जो है ना वो कहता है कि मैं गा क्यों ना रही हूँ। ये मेरा फेवरेट गाना है और इस गाने को गाने के बाद मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है।

आई होप आप लोग की जो कहते हैं ना कि उम्मीदों पे मैं खरी उतर रही हूँ. ये गाना सुनते ही मैं रोक नहीं पाई, मैंने सोचा मैं गा ही लेती हूँ. क्या है ऑन एयर गाने में मज़ा ही कुछ और आता है, और अपनी फीलिंग्स को अपनी आवाज़ को शेयर करने में जो सुकून मिलता है वो आप लोग जानते ही होंगे. मंडे को आपको भी ये सुकून फील करने का मौका मिलता है.

अच्छा, इस गाने की खास बात यह है कि अलग अलग भाषाओं में ये गाना इसी अंदाज में गाया गया है, और सबसे मजे की बात है कि लता जी ने ही इस गाने को अलग अलग भाषाओं में गाया है। अब अभी तो टाइम नहीं, मैं आपको अलग अलग भाषाओं का भी इसका थोड़ा थोड़ा मुखड़ा सुनाती हूँ।

तो ये छोटी सी कोशिश आप सभी के साथ मैंने साझा की और स्पेशली ये गाना था कृष्णा मैम के लिए, और दिल से हम लोग उन्हें याद करते हैं, ये बात सही है। और शुभ संध्या आशु जी, कैसी हैं आप? और आपकी आवाज़ की बहुत तारीफ कर रही है मेरी बेटी, बहुत प्यारी। मेरी आवाज़ आप लोगों की तरह नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ, बट जब आवाज़ की बारी आती है तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि मैंने इस रेडियो स्टेशन से, मतलब शाम का समय तो झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसी खूबसूरत आवाज़ों को ऑन एयर किया है, मेरे लिसनर्स खास तौर पे, जिनकी आवाज़ों से मैं इंस्पायर हुई हूँ और मैं कोशिश कर पा रही हूँ। तो शुभ संध्या सभी को, और अनिल जी शुभ संध्या, कैसे हैं आप? सविता जी, तो आज की शुरुआत हो चुकी है शाम की, और जैसे कि सब बहुत सारी बातें भी हो गई हैं, और अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलती हूँ त्यौहार की तरफ। आज का त्यौहार गोंडा शहर में बड़ी रौनकें थी, चाहे वो मार्केट एरिया हो, चाहे आपका ईदगाह वाला क्षेत्र हो, मतलब सब जगह से जुलूस निकल रहा था और क्या हाई एनर्जी थी। कहीं ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि गर्मी बहुत है, कुछ नहीं, बस ऊर्जा ही ऊर्जा, एनर्जी दिख रही थी। और ये है हमारे देश के त्यौहारों की पहचान कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे त्यौहार हमें एकजुट कर देते हैं। तो इस्लामी कैलेंडर की अगर बात करूँ तो पहला महीना मुहर्रम का, जो कि 16 जून 2026 से शुरू हुआ, और कहते हैं दसवें दिन जो है मुहर्रम का, जो दसवां दिन होता है उसे आशुरा बोलते हैं, जो कि कर्बला की शहादत की याद में मनाया जाता है। और इस बार ये 26 जून को पड़ा, यानी कि आज, और आज के दिन पूरे भारत में ताजिया के जो जुलूस निकाले गए हैं, इतनी खूबसूरत, सच बताऊँ मैं ताजिया की जो खूबसूरती है वो बयान नहीं कर सकती अपने शब्दों में, इतनी खूबसूरत ताजिया की देखते बनता है, कितनी प्यारी, मतलब किसी ने कुछ बनाया है, किसी ने कुछ। और मैं सबसे खास बात ये ना कि परसों मैं जा रही थी शाम से, तो एक जगह मतलब बच्चे लगे हुए थे उसको सजाने में, हर वो छोटी बड़ी चीज़ लगा रहे थे उसमें, जिससे कि वो ग्लोइंग लगे, चमकती दिखे। एंड आपको पता है, चलिए मैं ही बता देती हूँ एक ख़ास बात। तो वैसे ताजिया तो आपने बहुत सारी सुनी होगी, पेपर की, थर्माकोल की, अलग अलग तरह की। और एक गाँव है जिसका नाम है मतलब बबनान के पास पड़ता है, बवान गांव है, पिछली बार भी शायद मैंने आपसे चर्चा की थी, वहाँ पे मिट्टी की ताजिया बनाई जाती है। और वो ख़ास तौर पे एक फैमिलीज़ हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं, कसगढ़ फैमिलीज़ हैं, जो कि मिट्टी की ताजिया बनाते हैं। आपको पता है दुबई से लोग वहाँ छोटी छोटी मतलब ताजिया बना के स्पेशली ले जाते हैं, छोटी छोटी, मतलब कि भाई बड़ी तो ले नहीं जा सकते यहाँ से, तो छोटी छोटी ताजिया बना के वहाँ से ले जाते हैं, मिट्टी की ताजिया, और बायोडिग्रेडेबल भी है, और इतनी खूबसूरत लगती है, आप आंखों से बस ऐसे देखिए। हम मिट्टी पकाई नहीं जाती, मिट्टी से बनाते हैं बस उसको, फिर डेकोरेट वगैरह करते, बहुत हैवी होती है, लेकिन उसकी खूबसूरती मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकती। तो आप सभी को पता चल गया, और मैं और भी चीज़ें बताऊँगी इसके बारे में, लेकिन चलिए एक और प्यारा सा गाना सुनते हैं और इसी के साथ इस शाम को और कंटिन्यू करते हैं।

वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग 7:05 से लाइव रहिएगा और कुछ सवालात यानी कि आपके नॉलेज चेक करने के लिए लिए जाएंगे, उनका जवाब आपसे मांगा जाएगा। अगर आप जवाब सही देते हैं तो आप अपनी पसंद के गाने आज की शाम सुन सकते हैं।

0: भाभी, उस वक्त आपने जो कुछ कहा गुस्से में कहा।
1: हनी, हनी फीड फीड आफ्टर।

0: नाम क्या है?
1: रिजवान खान। खान
0: मैं इमरान हूँ और ये साजिदा है। अरे कहाँ चल दी? बस को निकलने को वक्त है अभी।
1: नमाज टाइम। नमाज टाइम
0: अभी यहाँ? अरे भाई नमाज जगह और लोगों को देख कर पड़ी जाती।
1: नो, नमाज जगह और लोगों से नहीं, नियत से पढ़ी जाती है।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335484। अब बारी है आपकी।

सो वापस से आप सभी के बीच हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी होस्ट एंड यस आपकी कह सकते हैं सुख दुख पार्टनर आरजे बीना। सो कैसे हैं आप लोग? और शाम हो चुकी है, चाय सबने पी ली होगी एंड फेस्टिवल की बात हो रही थी। अब आज की मूवीज़ के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी मूवीज़ ऐसी हैं जिनको आपको देखना ही चाहिए, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि इसका आपको इंतज़ार था, वो घड़ी यानी कि वो मूवी आ चुकी है। तो सबसे ज़्यादा तो आपको इंतज़ार रहा होगा, बहुत दिनों से आपने अक्षय की कोई कॉमेडी मूवी नहीं देखी, क्या बोलते हैं, हेरा फेरी हो या दे दनादन, ये सब हो, इन सब मूवीज़ को देखने के बाद याद तो आती होगी अक्षय की। तो भाई कान अपने थोड़ा सा और अटेंटिव कर लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, आपके लिए फिल्म आ चुकी है वेलकम टू द जंगल। जी हाँ, जंगल में आपका स्वागत है। तो जंगल में स्वागत है यानी कि जंगली लोग भी होंगे, यानी कि जो आपको खूब ज़्यादा एंटरटेन करेंगे। तो आपको एंटरटेन करने के लिए इस मूवी में मिल जाएंगे अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी। ओ माय गॉड, अर्शद वारसी की तो कॉमेडी मुझे उस मूवी से बोलती ही नहीं है। वो कौन सी फिल्म थी, वो ढोल, हाँ ढोल में भी था, और ढोल के साथ साथ एक और फिल्म थी, बहुत अच्छी सी मूवी थी, मतलब क्या कहने। पारस रावल भी है, जॉनी लीवर भी है, मतलब सारे वो सितारे आपको एक साथ मिल जाएंगे जिनको मैं कहूँगी कि आप लोग एक साथ देखना चाहते हैं। तो भाई रिलीज़ हो चुकी है आज और लोगों ने इसको पसंद भी किया है, कॉमेडी है तो ऑफकोर्स पसंद तो होगा ही। काफ़ी दिनों से आपको एक इंसान की और याद आ रही होगी, अब सोच रहे होंगे किसकी बात मैं करने वाली हूँ। जी हाँ, आपके फेवरेट मिस्टर चॉकलेट बॉय, जी हाँ शाहिद कपूर, जिसकी लड़कियाँ एक ज़माने में बहुत दीवानी, वैसे आज भी बहुत सारी दीवानी हैं। तो मूवी मतलब कॉकटेल तो आपने देखी होगी मूवी, जिसमें ये वाला गाना है, दाएं लगे कभी बाएं लगे, अरे वो वाला दोस्ती वाला गाना। जी हाँ, सारे गाने अच्छे अच्छे जो इस मूवी में हैं, मूवी भी बढ़िया है, लेकिन इस बार ये मूवी आपको और ज़्यादा चौंका देने वाली है। क्यों? क्योंकि ये मूवी ही फिर से लव ट्रायंगल के ऊपर बनेगी। कॉमेडी होगा, रोमांस होगा, मज़े होंगे मूवी में। है आपको मतलब इस बार जो अनार बने हैं और हमारे शाहिद हैं, और दो बीमार यानी कि रश्मिका मंदाना एंड कृति सेनन हैं, इनके साथ ही रिसाद अजीम भी हैं। मूवी ठीक ठाक है, वन टाइम है, मतलब बहुत मज़ा तो आपको नहीं आएगा मैं ये कहूँगी, मुझे जहाँ तक ये मूवी सो ही लगी, बट हाँ नए चेहरों के साथ देखने का मज़ा ही कुछ और है। रश्मिका है तो इसलिए मना करेगा, कृति हैं तो और मना करेगा आपका देखने का। और जैसे कि आपको भारत भाग्य विधाता की बात कही थी मैंने, जैसा कि पिछले ही वीक मैंने इसको रिव्यू किया था, लोगों ने पसंद तो किया, लेकिन साथ में जो आई मूवी यानी कि जिसके बारे में मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया ही था कि मैं वापस आऊँगा, इसने सबको मतलब ये एक ऐसी मूवी है जिसको अभी 515 रेटिंग मिल रही है यार, बहुत पसंद किया जा रहा है लोगों द्वारा इसको, मतलब प्यार में इतनी ज़्यादा शक्ति है, मुझे मूवी से पता चला लोगों ने इतना पसंद किया। राज्यपाल भी मूवी आ चुकी है यानी कि गवर्नर, गवर्नर के बारे में आपने थोड़ा कम पढ़ा हो तो ये मूवी देख लीजिए, आपके लिए बनी हुई है। मनोज वाजपेयी, अदा शर्मा, आर्यन पुष्कर, मैंने रत्ता और जॉन माइकल के साथ ही मूवी बढ़िया आपको एंटरटेन करेगी। साथ में भारत भाग्य विधाता अच्छी मूवी थी लेकिन उतना एंटरटेन पर्पज़ से नहीं बनी। हाँ मतलब अगर इतिहास या थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीज़ें जानने के लिए ठीक है, पर जैसे एंटरटेनमेंट की बात की जाए कि मूवी में कुछ बढ़िया हो, म्यूज़िक अच्छा हो, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मुझे कम लगी। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वेलकम टू जंगल की, तो इसके बारे में थोड़ा मैं रिव्यू कर देती हूँ, पर्सनल रिव्यू, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी दिनों बाद, वैसे अक्षय के नाम से ही आप लोग मूवी देख लेंगे क्योंकि कॉमेडी की जब बात होती है तो अक्षय कुमार एक अच्छे कॉमेडियन माने जाते हैं, मतलब एक हीरो होने के साथ साथ लोगों को फुल तरह से एंटरटेन करने का काम बढ़िया करते हैं, चाहे कोई भी मूवी हो। मतलब मैं अभी हंस इस रही हूँ, कुछ इनके सीन मुझे याद आ जाते हैं जिनको इमेजिन करके ही मुझे हंसी आने लगती है। आप लोग बताइए आपको अक्षय कुमार की कौन सी मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है, फटाफट से चैट रूम में बताइए आपकी फेवरेट अक्षय कुमार की मूवी कौन सी रही है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मतलब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी और मतलब हम लोग की क्लास में एक लड़का था, उसका भाई उसको बुलाने आया तो उसने पूछा कि क्यों आए हो, बोले कि मैम मुझे फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करना है, तो वही मुझे अपने भाई से बात करनी थी कि वो मेरी मैम से बात कर ले। तो फिर बच्चे ने कहा कि तुम क्या, मतलब टीचर ने पूछा कि क्या बनने वाले हो तुम, तो बोला मैं अक्षय कुमार बनने वाला हूँ। उस दिन से मुझे अक्षय कुमार आज भी याद है, इट्स नॉट अक्षय, ये है अक्षय। बहुत मज़ेदार लगा सुन के, आपको भी मज़ा आया होगा ना सुन के, कि मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद लगता है कि यार कितने फ़नी हो सकते हैं।
तो वो बचपनों बचपन में जो हम लोग एकदम अलग से अंदाज में किसी चीज़ का प्रोनंसिएशन करते थे वो आज करते हैं ना, तो लगता है बचपना वापस से आ गया हमारे पास, है ना। तो कोई बात नहीं, बचपना तो अभी भी है, जब जागो तभी सवेरा। और हम लोग अपने बचपन को जीने के लिए ज़रूरी नहीं कि वापस से पीछे जाएं, हम सिंपली आंखें बंद करेंगे, उन एक्टिविटीज़ को करेंगे जो हम बचपन में करते थे। ऑब्वियसली हमारी जो कहते हैं ना कि बचपन वापस आ जाएगा। गुड इवनिंग मुस्तफ़ा जी, कैसे हैं आप? और सब लोग आ चुके हैं, सवालों के लिए भी आप लोग रेडी ही रहिएगा, सवाल आपसे किए जाएंगे। तो वेलकम टू द जंगल रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो जंगल में जंगली राज करने के लिए आपको मैंने जैसा कि बताया, जैकलिन फर्नांडेज, रवीना टंड, ओह रवीना जी भी है, अब तो कोई छोड़ने ही नहीं वाला फरीदा जलाल है इसमें, जॉनी लिवर हैं, दिशा पटानी हैं, राजपाल हैं, राजपाल यादव भी हैं, और भाई जैकी श्रॉफ और राजपाल को एक साथ देखने का मौका मिल रहा है, तो ये मूवी तो बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। और लेखक की बात करूँ तो कहानी फरहाद सामजी के डायलॉग हैं इसमें, और जो कहानी लिखी है वो दिवंगत नीरज वोरा ने की है। और साथ ही साथ मैं बता दूँ, निर्देशन जो है अहमद खान का है। आपको मतलब मूवी बढ़िया लगेगी, वन टाइम तो है, बिल्कुल है, ठीक है। इसलिए है क्योंकि इसमें आपको आपके सारे फेवरेट फेवरेट फेवरेट हीरो मिलेंगे, लेकिन आपको सच्ची बताऊं कि फेवरेट हीरो की कॉम्बिनेशन जब आती है ना, तो हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं कौन अच्छी एक्टिंग कर रहा है। तो फिलहाल अक्षय कुमार से लेके सुनील शेट्टी तक, पारेश रावल से लेके जॉनी लीवर तक, राजपाल, अर्शद, इन सब को देखने के साथ ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा चौंकाने भी वाली है। पहले कहानी की बात कर लेती हूँ। कहानी एक ऐसे रईस आदमी की है जिसका नाम जाकिर, जो इसमें जाकिर हुसैन से शुरू होगी, जिसके सिर पर आयकर विभाग की तलवार लटक रही होती है। और समाधान निकलता है कि 2000 करोड़ रुपए ऐसी फिल्म में झोंक दो जो इतनी ख़राब बने कि पैसा डूब जाए और हिसाब भी साफ हो जाए। अब यहाँ से जो प्लानिंग बनती है वही असली कॉमेडी होती है, यानी कि बेटी उनकी होती है जो कि जैकलिन फर्नांडिस है, वो खुद निर्माता बनती है और समझदारी दिखाते हुए खुद को नायिका भी बना लेती है, जिससे कि फिल्म में डूबने की संभावना 100% रहे क्या बात है। फिर टीम तैयार होती है और फ्लॉप निर्देशक जो होते हैं उनको लिया जाता है मूवी बनाने के लिए, जैसे कि पारेश रावल, राजपाल यादव, इसके साथ सुपरस्टार के तौर पे इसमें अक्षय कुमार को ले लिया जाता है, और जिसका करियर ऑक्सीजन पर चल रहा था, मतलब करियर के नाम पे वो बस अपनी रोजी रोटी ही चला रहे थे, पंखे भी ठीक से उनके घर के नहीं चल रहे थे, सिर्फ रोजी रोटी चल रही थी। और इसी के साथ उनकी पुरानी प्रेमिका दिशा पटानी, इसी के साथ द डॉन अरशद वारसी और सुनील शेट्टी को कुछ सनकी लोग, और बाकी पूरा चलता फिरता पागल खाना इस मूवी में ये लोग बनाते हैं, मतलब जो मूवी बनाते हैं। फिल्म सेना की पृष्ठभूमि पर है, ऐसे कि सबको ट्रेनिंग देने के लिए एक महिला प्रशिक्षक यानी कि लारा दत्ता लाई जाती है, जिसे देखकर साफ लगता है कि मुस्कुराना उसकी जवानी की नीति के खिलाफ है मामला तब उलझता है जब शूटिंग के लिए पूरी टीम जंगल पहुँचती है, लेकिन वहाँ आतंकवादियों जैसे कि जैकी श्रॉफ और उनकी टीम उन पर कब्जा कर लेती है। इस फिल्म यूनिट को असली सेना समझ बैठते हैं, जब इन लोगों को कैमरे के सामने एक्टिंग करते देखते हैं तो उनको लगता है कि असली में गोलियां चलाएंगे, और बस इसी के इर्द गिर्द घूमती है मूवी। और जो असली के एक्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि कैसे किसी तरह इस मूवी से बचा जाए, ये मूवी जो वाकई में एक पनौती बन के इनकी लाइफ में आ जाती है, क्योंकि असली में इनको आतंकवादी पकड़ लेते हैं। तो फाइनली मूवी वन टाइम है, मज़ा बहुत आएगा, एक से एक इसमें आपको ह्यूमर्स दिखेंगे, लगेगा कि यार इन लोगों से ज़्यादा पागल कौन हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस मूवी को मैं तो 5/5 दूंगी, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे फेवरेट एक्टर्स इसमें दिखने वाले हैं। राजपाल की बात करूँ, जैकी श्रॉफ की बात करूँ, और साथ में हमारे फेवरेट जॉनी लीवर की बात करूँ, जिन्होंने हंसा हंसा के मेरा पेट दर्द किया है, तो उन सबको देखने के लिए ये मूवी मुझे पसंद आई। तो चलिए एक बारी है अब म्यूजिकल ब्रेक की, इसके बाद एक सवाल, चलिए पहले ही पूछ लेती हूँ।

अच्छा ये बताऊँ, इस मूवी के गानों को सुन के ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है सारे गाने जो है ना कैटरीना की याद में बनाए गए हैं। सारे गानों में आपको यही लगेगा। गुड इवनिंग लवली, गुड इवनिंग नागेश्वर, कैसे हैं? अरे भाई बहुत सारे आंसर्स आए हैं। चलिए इस गाने को सुनिए फिर मैं आंसर डिस्क्लोज करती हूँ। आप भी सोच के बताइए कि आपको इन सब गानों को सुन के कैटरीना की याद नहीं आ रही है?

0: कमाल डांसर मूवी जो है वो है सेकंड मूवी, वेरी सेकंड मूवी। अक्षय कुमार की पहली मूवी थी सौगंध, और सौगंध के बाद दूसरी मूवी जिसमें अक्षय कुमार को लीड रोल का काम मिला, और वो मूवी रही है डांसर। 1991 रिलीज़ हुई थी। और देखें आंसर किसने किसने दिया हुआ है। मुस्तफ़ा जी हमारे साथ हैं, उस्मान खान है, शुभ संध्या उस्मान जी, कैसे हैं, मुहर्रम की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और मोहरा खिलाड़ी ऐलान, किसी ने सही आंसर गेस नहीं किया, ओ माय गॉड। फिलहाल चलिए पैसा पैसा सुनने के बाद आपको वो गाना तो याद ही होगा, तू पैसा पैसा करती है क्यों, ऐसे पे क्यों मरती है। तो चलिए इस जो कहते हैं ना कि टाइम को एंजॉय करते हैं, और मेरी पसंद का गाना सुनते हैं आप, और सुन के बताइए कि गाना कैसा है, और कॉकटेल टू से ये गाने आप लोग के लिए, तो सुन के बताइए कैसा है। तो उसी के बाद बंधु 2.0 आप लोग के लिए प्ले कर रही हूँ, एंजॉय करके बताइए कैसा है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि ये गाना कि बहुत अच्छा है। और अगला सवाल आपसे है, थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा बच के, ठीक है,
1: सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने का।
0: तो सुन के ध्यान से एंजॉय करिए।
2: इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट, आवर वर्जन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नाउ यू आर गेटिंग मी।
3: यू गाइस वांट टू ऑडिशन? या ट्रोल हो जाएंगे, मत करो।

सवाल थोड़ा हटके है, हैरी पॉटर आपने अगर सुना हो नाम, एक युवा जादूगर होता है जिसका नाम हैरी पॉटर होता है और वो एक जादुई दुनिया में अपने कारनामे करता है और इस पे मतलब लगभग 7 उपन्यास मुख्य रूप से शामिल हुए हैं। तो ये बताइए किसने लिखा है हैरी पॉटर, फटाफट से आंसर दीजिए। और लगान भाई लगान कौन सा आंसर है। तो हैरी पॉटर लिखने वाले का नाम आप बताइए और अपनी पसंद का गाना सुनिए। फिलहाल मेरी पसंद का सुन रहे हैं आप।

0: Yes! We killed it!
1: Agle.

इस बार विनर हो चुके हैं हमारे, चलिए तीन लिसनर्स ले लेती हूँ, आशु, लवली एंड सविता जी। क्या बात है, तीनों ने लाइन से पहले आंसर दिया है। टाइमिंग भी बता देती हूँ किसने किसने सबसे पहले किया है। तो सबसे पहले टाइमिंग रही आशु जी की और इसी के जस्ट बाद लवली सिंह एंड सविता जी का। तो तीनों लोग अपनी फरमाइश फटाफट से यहाँ भेजिए और आपकी पसंद के सुनते हैं गाने। मैं चाहूँगी आप लोग फरमाइश करें, लेकिन हाई बीट्स गानों की फरमाइश करें, क्योंकि अभी हमारी जो सीरीज़ है हाई बीट्स वाली हो गई है। तो अभी के मतलब 2020 के बाद के कोई भी हाई बीट्स गाने जो आपको पसंद हो उसकी फरमाइश करें।

नहीं है, तो मैं नया वाला ही सुनाऊंगी, ठीक है। इसी के साथ हम एंजॉय करते रहेंगे और आगे गाने सुनते रहेंगे। सबसे पहली फरमाइश आशु जी की, तो लेट्स एंजॉय तुम्हें अपना बनाने की कसम हमने खाई है, फ्रॉम हिट स्टोरी 3, जरीन खान, शर्मन जोशी। और इसी के साथ अगला सवाल मेरा आप लोगों के लिए कुछ इस तरह से है, आपने गाना सुना होगा जिसको सुन के मतलब सांस आ जाती है, कहते ना ऑक्सीजन आने वाला गाना, ऐसा गाना जिसमें ऑक्सीजन आ जाए उसके लिरिक्स बताइए। मतलब गाना गाने के बाद अगर ऑक्सीजन मिल जाती है, ऐसा गाना जिसके लिरिक्स ऑक्सीजन आपको दिलाती है, तो वो गाना कौन सा है, लिरिक्स बताइए और अपनी पसंद का गाना सुनिए।

तो चलिए लवली की फरमाइश का गाना भी सुन लेते हैं और नेक्स्ट आंसर का इंतज़ार देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। और नॉट बैड। और इस बार आंसर दे के जीत गई है ममता कसौदन। वेरी वेरी गुड इवनिंग ममता एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट राउंड के क्वेश्चन के आंसर देने वाली विजेता आप हो चुकी हैं। ममता आप अपनी फरमाइश का गाना कोई भी सुन सकते हैं। इट्स करेक्ट। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। तो चलिए हम सुनते हैं पानी पानी सॉन्ग। गर्मियों वाला गाना आप लोग के लिए।

नागेश्वर मैंने कहा था सांस आपको मिलनी चाहिए, आप दूसरे को सांस दे रहे हैं। मेरी सांस, सांस मेरे यार के लिए, इट इज नॉट लाइक दैट। सांस आपको मिलनी चाहिए थी। नाउ नेक्स्ट सॉन्ग फॉर सविता जी, इनको सुनना है गाना जुबिन की आवाज में, तो चलिए सुनते हैं दिल गलती कर।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।
2: ये सॉन्ग आपको ही बताना है, वैसे ये लिरिक्स तो नहीं गाने की ममता जी, ये सॉन्ग कहाँ से बताते हैं? आप अपने मन से गाना बता सकती हैं जो आपको सुनना हो।

चलिए एक सितारे के नाम एक गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले उसी से जुड़ा एक सवाल करते हैं। सुशांत को तो आप सभी जानते हैं, सुशांत सिंह की पहली फिल्म कौन सी थी? जो जो सुशांत सिंह के फैंस हैं वो फटाफट से आंसर दें। सुशांत सिंह की पहली मूवी कौन सी थी?

सो भाई आंसर देने वालों की कमी नहीं है और आंसर देने में कुछ लोग पीछे भी नहीं है। कल पे चल, ममता ने आंसर सबसे पहले दिया है काई पोछे, और फिर आंसर आया है आशु जी का काई पोछे एंड अनिल जी का। तो लाइन से अगर देखें तो तीन लोगों का जिसका आंसर सबसे पहले, दिल बेचारा आंसर नहीं है प्रीति जी। सो ममता एंड प्रीति, ममता जी एंड आशु जी एंड अनिल जी, आप तीनों ही विनर हैं। तो अपनी फरमाइश फटाफट करिए, तो आपकी फरमाइश हम सुनते हैं और मज़ा आ रहा है आप लोगों की फरमाइशें सुन के। बड़ी अतरंगी सी अलग अलग सी फरमाइशें और खूबसूरत फरमाइशों के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फटाफट से अनिल जी और आशु जी एंड ममता जी अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। सबसे पहले अनिल जी भेजें, फिर आशु जी की प्ले करते हैं, क्योंकि एक एक प्ले हो चुकी है आप लोग के फरमाइशें, तो इसलिए मैं चाहूंगी जिसकी अभी तक नहीं प्ले हुई उसको मौका मिले।

वैसे अगर मैं बताऊं आप लोग को कि सुशांत की फिल्म की जर्नी से पहले उन्होंने खुद को ऑलरेडी सबके दिलों में बसा लिया था. सबसे पहले उन्होंने डेब्यू किया था, एक सीरियल आया था बहुत सालों पहले, किस देश में है मेरा दिल, 2008 में था. मैं बहुत आया था, मैं तब उस क्लास उस साल 7th या 6th में थी, मैं देखती थी, स्टार प्लस पे आता था. इसके बाद जी टी वी पे उनका लोकप्रिय शो पवित्र रिश्ता, जिसको देख के पता नहीं कितने लोगों का घर का चूल्हा जलता था, आई मीन टू से कि बहुत ही प्यारा शो था, लोग बहुत पसंद करते. उसके जाने के बाद शो की मतलब काफ़ी TRP भी गिरी थी, पर उसमें उसका आवाज़ उसके अंदाज को भूल नहीं सकते हम लोग. सुशांत हमेशा से खास रहे हम लोग के लिए. इसके बाद काईपोचे के बाद उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस PK और डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी में बहुत अच्छी एक्टिंग की है. 2016 में फिल्म आई MS धोनी, जिन्होंने इनको एकदम सुपर डुपर हिट बना दिया, बहुत अच्छी मूवीज़. तो बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी प्रसिद्धि हासिल की, लेकिन दुख की बात है वो हमारे

इतना प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब अगला गाना सुनने की बारी है, जिसकी फरमाइश अनिल जी ने की है। बहुत खूबसूरत गाना है। इस गाने को सुनने के बाद हमेशा से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत बढ़िया। शमी कपूर का और रफ़ी की आवाज़ में शमी कपूर की अदाकारी है और इसमें आपको रफ़ी दिख जाएंगे। और बहुत प्यारी फिल्म का गाना है ये, अगर आप लोगों को याद हो तो एक फ़िल्म आई थी ब्रह्मचारी 1968 में, ठीक है, और बहुत बढ़िया गाना है। तो चलिए सुनते हैं, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर।

फिलहाल उनकी डेथ एनिवर्सरी की बात नहीं हो रही है नागेश्वर जी, मैं ये कह रही हूँ कि हमने क्वेश्चन किया तो उनके बारे में थोड़ी बात करने की तो ज़रूरत ही थी, क्योंकि वो कलाकार हमारे बीच नहीं है। ये हम सभी को पता है, 23 जून को वो उस समय लॉकडाउन का काला दिन था जब वो हमें छोड़ के गए थे। लॉकडाउन का तो दुख था ही, लेकिन सुशांत के जाने का दुख हर इंसान को हुआ था, खासतौर पर इंडियंस तो हुए ही थे दुखी, बाकी बाहर के देशों में बहुत सारे फ़ैन थे उनके।

आशु जी अपने गाने का जरा मुझे मूवी का नाम बताएं, ये गाना मुझे भी नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ मूवी के नाम के साथ अपने गाने को भेज दें, या फिर अगर कोई और फरमाइश है तो प्लीज़ वो कर सकते हैं।

तो फिलहाल आंसर देने वालों ने बड़े बढ़िया बढ़िया आंसर दिए हैं, और खासतौर पे नागेश्वर जी का आंसर तो बड़ा ही अच्छा था, तो इसीलिए लास्ट में मैं नागेश्वर का गाना ज़रूर प्ले करूँगी। नागेश्वर, आपने देखिए बहुमूल्य जानकारी भी दी हम लोग को, और ये भी बताया कि सांस से और भी गाने हैं, लेकिन हम दूसरे को ऑक्सीजन देने लगे थे, मैंने खुद के ऑक्सीजन लेने की बात की थी, तो आप अपनी फरमाइश कर सकते हैं। और अब हम सुनने जा रहे हैं अनुआशु जी की फरमाइश का गाना, और इसके पहले अभी मन मेरा सुन रहे थे ममता की फरमाइश पे, एम फॉर ममता जी, एम फॉर मन मेरा। बड़े अच्छे अच्छे गाने आप लोग चुन चुन के लाते हैं, यस इसीलिए तो मुझे लगता है कि, तो चलिए महबूब की मेहंदी हाथों में, बहुत पुराना सा गाना है लेकिन सुन के चलिए एंजॉय करिए। एंड आजकल यार ये बात बड़ी सुनने में आ रही है कि लड़कियां जो होती हैं भरोसे के लायक नहीं रह गई हैं, लड़कियों से शादी नहीं करने लायक है। अच्छा ये बताओ, दो चार केस क्या सामने आ गया, लड़कियों पे उंगली उठा दी आप लोगों ने, अभी जब मैं लिस्ट बनाने लगूँ ना तो सब मुँह छिपाते दिखेंगे। मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक फ्रीक्वेंसी होती है, हाँ दो चार दस केस सामने आ गए। नीला ड्रम वाला मामला लड़कियों के साथ कई बार हुआ है, लेकिन एक वाले मामले ने नीले ड्रम से लड़कियों को बदनाम कर दिया। अब ये खाई वाला मामला दो सामने आ गया, एक राजा वाला और एक केतन वाला। इसके बाद से तो मतलब मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर सब लोग ऐसे जो जो चीज़ें टाइप करते हैं, अब वो ज़माना नहीं रहा, लड़कियों से शादी करने लायक नहीं रहा। ओ माई गॉड, भाई इतना जजमेंटल मत हो, ऐसा नहीं है। अगर इस हिसाब से सोचा जाए ना तो लड़कियों को तो इस ऐसे देश में रहना चाहिए जहाँ लड़के रहते ही ना हो, क्योंकि लड़के इतने खतरनाक हैं। दो दो साल की लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, मतलब बताते हुए भी शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। पर देखिए हम लोग जजमेंटल इतनी सी चीज़ से हो गए, और मैं तो यही कहूँगी अगर सोशल मीडिया पे हम लोग भी ऐसी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखिए हर इंसान एक जैसा नहीं होता। दुनिया अगर चल रही है तो ऑब्वियसली कि अच्छे लोग हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, ऑब्वियसली लड़के भी बेहतरीन हैं और लड़कियाँ भी बेहतरीन हैं। तो एक दो चार सौ पचास के लिए हम पूरे के पूरे समाज को ब्लेम नहीं कर सकते।

राधे राधे नवीन जी, कैसे हैं? लवली, हाँ, नागेश्वर, मनी, गुड इवनिंग, कैसे हैं? मनी, आप भी अपना हाल चाल बताएं। हमारे साथ आशु जी हैं, अनिल जी हैं, और नागेश्वर जी, प्रीति जी, और हमारे बहुत सारे लिसनर्स एक साथ लाइव हैं जो कि चैट रूम में दिख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जिनका नाम मैं शायद नहीं जानती हूँ लेकिन वो सालों से सुन रहे हैं। तो आप सबके लिए दिल से प्यार आरजे बीना की तरफ से। ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते हुए इस म्यूज़िकल जर्नी के हिस्सा बनते रहें और आगे भी इस जर्नी को हम बरकरार रखेंगे।

0: अब इसी के साथ इस म्यूजिकल जर्नी यानी कि आरजे बीना के साथ इस म्यूजिकल जर्नी को मैं लगाती हूँ विराम, और अभी कुछ देर में आप सुनेंगे फरमाइशी सॉन्ग सिर्फ आपके नाम, यानी कि आरजे सिंपल के साथ आप सुनेंगे गीत आपके नाम से। मज़ा आता है ना जब हमारे नाम से कोई गीत, मतलब पहले मैं बचपन की बात करूँ तो ऐसे जब चिट्ठियाँ पढ़ी जाती थी रेडियो स्टेशन पे और बताया जाता था ये इस गांव के इतने लोग, इस शहर के इतने लोग ये गाना सुनना चाहते हैं, इनको डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मतलब बहुत ऐसे बड़ी सी चीज़ लगती। आज देखिए टेक्नोलॉजी ने इतना फैसिलिटेट कर दिया है कि हम लोग एक दूसरे के साथ हैं और साथ के साथ इन्जॉय करें एक दूसरे को। और इसी के साथ मुझे अब दीजिए इजाज़त, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।
1: सच में क्या खास है वहाँ?
2: बहुत कुछ है वहाँ, एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
1: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
2: सब कुछ टॉप क्लास था, फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
2: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है, और हाँ मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, लोकेशन कहाँ है?
2: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
4: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

शो फरमाइशी वीडियो आर जिस सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल स्टूडियो में एवरीवन और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को अभी तक नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत क्यों, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा हमेशा के लिए आपकी है दोस्तों। सो कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नागेश्वर धाकर, लवली सिंह, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, नवीन राजपूत जी एमपी से, विजय पाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से, मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, शशि सिंह जी गोंडा से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निबजी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, राजू सलमानी आवास विकास गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निशा पटेल नगर गोंडा से, चांदनी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, मनीष शर्मा खुरासा गोंडा से, द ग्रेट सीन साहब आपका भी स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपने आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। इम्तियाज अहमद गोंडा से, मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से, स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो, और इंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। लेकिन उसके पहले आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल बस इतना ही कहना चाहेगी कि कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, आशु जी को, पहली फरमाइश आशु जी को लखनऊ से सुनना है गाना आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज में और लता जी की आवाज में ये सुपर डुपर हिट ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ आशु जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड। राजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे।

मेरे मितवा मेरे मित्रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों नवीन राजपूत जी के एमपी से। नवीन राजपूत जी को एमपी से सुनना है गाना, ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। सो हाउ रोमांटिक वाला ये रेट्रो वाइब वाला गाना एंजॉय करते हैं नवीन राजपूत जी की फरमाइश पर, जो कि है ग्रीट ऑपरेटर ग्राम बासला तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर मध्य प्रदेश से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

किसने जाना। एंजॉय करते हैं ये किशोर कुमार का सुपर डुपर हिट नगमा, रियलिटी चेक कराने वाला गाना, ओह माय गॉड वाला गाना, ओल्ड इज गोल्ड वाला गाना।

सुपर के किशोर कुमार जी की आवाज में ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना तेरे दर पे आया हूँ। सो एंजॉय करते हैं रफी साहब की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट वाला नगमा, ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, हमारे मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मोहम्मद रफी जी की आवाज में लाला मजनू मूवी का ये गाना हमने एंजॉय किया है। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेश कुमार जी की चौक से, उनको सुनना है मेरे महबूब कयामत होगी और आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से किशोर कुमार जी की आवाज में ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, लेकिन इस बार सुरेश कुमार जी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकमिंग योर शो।

तुझसे शिकायत होगी और मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सुरेश कुमार जी की फरमाइश पर, और मालवीय नगर से राजेश सिंह जी का कहना है, सुरेश जी नाइस सॉन्ग, क्या बात है। वैसे ये गाना मेरे भी दिल के बहुत करीब है। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले किसी का कहना है कि समंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, जिंदगी में अगर मजाक ना हो तो मस्ती किस काम की, कुर्बान है ये जिंदगी अपने दोस्तों पर, फिर अगर तुम जैसे दोस्त ना हो तो फिर ये जिंदगी किस काम की। बहुत ही खूब, बहुत ही उम्दा। इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है शशि सिंह जी की, उनको सुनना है गाना लता जी की आवाज में, रजिया सुल्तान का जलता है बदन। इंजॉय करते हैं फिर से ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा।

चलता है बदन। लता जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये नगमा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। प्रीति शुक्ला जी को बहराइच से सुनना है गाना बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। सो एंजॉय करते कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में और कविता जी की आवाज में संग्राम का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा प्रीति जी की फरमाइश पर स्टेज।

चुराई क्या है संग्राम का ये नगमा प्रीति जी की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश है अजय मिश्रा की मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, और इनको सुनना है गाना लकी कबूतर। सो दाग द फायर का ये वाला गाना इंजॉय करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ अजय मिश्रा की फरमाइश।

तेरा लकी कबूतर हमने एंजॉय किया, ये रोमांटिक सुपर डुपर हिट नगमा अजय मिश्रा की फरमाइश पर जो कि है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मनीष शर्मा फ्रॉम खुरासा गोंडा, सचिन शुक्ला फ्रॉम गोंडा एंड मुकेश यादव फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मुमताज अंसारी जी की। मुमताज अंसारी जी को सुनना है गाना किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो कहीं ना फिर देर हो जाए।

फिर देर हो जाए। अलका याग ने कुमार सानू की आवाज में हमने एंजॉय किया है अंदाज का ये नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों लवली सिंह की। लवली सिंह को सुनना है गाना वो हंसी दर्द दे दो। सो एंजॉय करते हैं ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा आशा जी की आवाज में हमारे लवली सिंह की फरमाइश पर। चलते हैं आशा जी की आवाज के साथ में एक खूबसूरत से सफर पर। स्टे ट्यून्ड।

वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूँ। हमने इंजॉय किया ये नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है संतोष कुमार जी की गिलौली से। संतोष कुमार को गिलौली से सुनना है साधना सरगम, उदित नारायण की आवाज़ में गाना, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा।

नजर आए चेहरा तेरा। हमने एंजॉय किया ये गाना साधना सरगम उदित नारायण की आवाज में। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है रामपाल जी की माधोपुर से। रामपाल को माधोपुर से सुनना है गाना दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। सो एंजॉय करते हैं ये गाना रामपाल की फरमाइश पर, रामपाल दुबे की फरमाइश पर।

बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ चलेंगे, अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगले फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी के न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से।

सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपनी फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सीधे मिलते हैं 9 बजे और 9 बजे फिर से हम सुकून का और एंटरटेनमेंट का बौछार कर देंगे, उसकी लड़ियां बिछा देंगे, फिजाओं में उसकी हवा घोल देंगे। सो चले चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से, और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा, मिलते हैं सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून्ड।

के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में

0: 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
2: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23

0: करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करते हैं आपके अपने आज सिंपल नॉट से सिंपल आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। पंडित भोलेनाथ मिश्रा जी आपका स्वागत है। और एंजॉय कर लेते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले आप सभी लिसनर्स का री वेलकम है और तहे दिल से स्वागत और इस्तकबाल है। सो एंजॉय कर लेते हैं अब अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों नागेश्वर धाकड़ की, और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना साढ़े दिल ते छुरियां चलाई। तो एंजॉय करते हैं दलेर मेहंदी का ये वाला नगमा हमारे हमारे नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: तो दोस्तों ये फरमाइश थी नागेश्वर धाकड़ की, और अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुधीर कुमार की, और सुधीर कुमार को सुनना है गाना। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारो ये प्यार कैसे
1: होता है। गलियों से गुजरती थी चोरी चोरी चुपके चुपके, चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

हूँ मैं, ओ यारो ये प्यार कैसे होता है, हमने इंजॉय किया है मोहब्बतें का, ये मोहब्बतें लुटा देने वाला नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से, और मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना चांदी के डाल पर सोने का मोर और ताक झाक ताक करे नीचे का चोर। हेलो ब्रदर का ये गाना एंजॉय करते हैं मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

फरमाइश थी मोहम्मद मुर्शीद जी की बाराबंकी से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है भोलेनाथ मिश्रा जी की। भोलेनाथ मिश्रा जी को सुनना है गाना उनकी मम्मा के लिए, हम सभी की मम्मा के लिए, हम सभी की मदर्स के लिए, मदर स्पेशल गाना तेरी उंगली पकड़ के चला। सो ये गाना बारीकियों से माँ और बच्चे के रिश्ते को दिखाता है। सो एंजॉय करते हैं उदित नारायण की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत नगमा हम सब की मम्मा के लिए, हमारे भोलेनाथ मिश्रा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो हम सब होते हैं अपने मम्मा के लाडले, क्यों सही कहा ना, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों चाहे बीच वाले हों चाहे जैसे भी हो, पार्ट्स में ही डिवाइड होंगे, प्यार बढ़ता जरूर है लेकिन सब लाडले होते हैं। सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा नगमा लाडला मूवी का, हम सब की मम्मा के लिए भोलेनाथ मिश्रा जी की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश है सुनीता जी की गोड़वा घाट गोंडा से। सुनीता जी को सुनना है गाना आएगी हर पल तुझे मेरी याद और मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में एंजॉय करते हैं सुनीता जी की फरमाइश पर।

गाना सुनीता जी की फरमाइश पे जो कि है गोरवा घाट से। बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है कृष्णा वर्मा की, और कृष्णा वर्मा को सुनना है गाना पटोला। सो एंजॉय करते हैं गुरु रंधावा का ये गाना, और इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन, अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर, वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, सो मच लव टू यू गाइज, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल, ठीक है।

0: के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: मेरी गजल को मेरी जहां फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है। वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेरो शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: मैं तुझसे साथ भी तो उम्र भर का चाहता था, मैं तुझसे साथ भी तो उम्र भर का चाहता था, सो अब तुझसे गिला भी उम्र भर का हो गया है। इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आपके अपने शाम के स्पेशल शो बहारे गजल में। आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और रेडियो ज्ञानस्थली की फ्राइडे स्पेशल पेशकश बहारे गजल विद आरजे अदनान हाजिर है लेकर कर। यूं तो अभी मैंने जो शेर पढ़ा है उसके कई मायने हैं, या यूं कहूं कि शायद एक बार और सुनाता हूं आपको और इसके मायने कितने निकलते हैं जरा गौर फरमाइएगा। मैं तुझसे साथ भी तो उम्र भर का चाहता था, मैं तुझसे साथ भी तो उम्र भर का चाहता था, सो अब तुझसे गिला भी उम्र भर का हो गया है। यूं तो उम्र की जब बात आती है तो हमको ख्याल आता है कि उम्र यानी हर बीतता हुआ साल, जिसे हम साल गिरह भी कहते हैं। लेकिन कभी क्या ख्याल आया है कि ये बीतता हुआ साल एक एज कहा जाएगा? एक एज तो पूछी जाती है जिसमें आप जवाब देते हैं कि आप 25 साल के हो गए हैं, आप 30 के हो गए हैं, आप 35 के हो गए हैं, आप 62 साल के हो गए हैं। लेकिन दरअसल इस शेर में उम्र के मायने, या यूं कहूं कि ज्यादातर शेरों में उम्र के मायने ये नंबर्स नहीं होते हैं, बल्कि एक दौर गुजरा होता है, एक दौर जो गम में गुजरा होता है, एक दौर जो मोहब्बत में गुजरा होता है, एक दौर जो अपनों के बीच गुजरा होता है, एक दौर जो अंधेरों से उजालों की तरफ आता है। जी हाँ, उस वक्फे को, उस बीते हुए वक्त को एक उम्र कह दिया है। ये शायद ये गजल आपको इस बात को पुख्ता समझा सकती है कि उम्र के मायने क्या है। दरअसल आज की इस शो की थीम ही उम्र है, नहीं नंबर्स वाले नहीं, बल्कि गुजरे हुए कुछ वक्त की उम्र है। जैसे मुनीर रियाजी साहब लिखते हैं कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, कल गुजरेगा कैसे, आज का दिन कैसे गुजरेगा, कल गुजरेगा कैसे, कल जो परेशानी में बीता वो भूलेगा कैसे, कितने दिन हम और जिएंगे, काम है कितने बाकी, कितने दुख हम काट चुके हैं और है कितने बाकी। खास तरह की सोच थी जिसमें सीधी बात गंवा दी, छोटे छोटे वहमों में ही सारी उम्र बिता दी। कई बार ऐसा होता है ना कि एक वहम होता है जिसको हम अपनी जिंदगी में न जाने कितने वक्त तक पालते रहते हैं, या यूं कहें कि अगर उस वहम को तोड़ें तो उसमें छोटे छोटे और भी बहुत सारे वहम हमारे आसपास होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, बतौर मिसाल समझते हैं इसको, कि अगर हम किसी से उम्मीद लगाते हैं और उसके बाद कुछ वक्त बाद जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती है तो हम सीधे कहते हैं कि हमको धोखा दिया गया है या हमको समझा नहीं गया है। लेकिन जब जिंदगी समझाती है कि उम्मीदें पहले खुद से लगती हैं और जब खुद से लग जाती हैं तो सच तो यह है फिर बाकियों से लगने की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आती। तो इस तरह के वहम जब जिंदगी सिखाती है तो एक उम्र लग जाती है। हम उस उम्र की बात कर रहे हैं। बहरहाल इसी उम्र को समझाने के लिए एक खूबसूरत सी गजल आपको सुनाते हैं। बतौर खास सुनकर आप जरूर बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सी गजल कैसी लगी।
4: अभी अलविदा।

वक्त दो मुझ पर कठिन गुजरे हैं सारी उम्र में, वक्त दो मुझ पर कठिन गुजरे हैं सारी उम्र में, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। कितनी खूबसूरती से इस शेर

आस्था बयां कर दी। एक उम्र गुजरती है जिंदगी में जब आपको कोई खास मिलता है, उससे पहले जब तक वो होता नहीं जिंदगी एक अलग ही तरह से चल रही होती है। मिल जाने के बाद जिंदगी न जाने कितनी ज्यादा बेफिक्री से आगे बढ़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माटी में छोड़ा गया पानी किसी भी दिशा में जाता है, बस चलता रहता है। और शायद उसी को तो जिंदगी का फ्लो कहते हैं। जी हाँ, और इस शेर ने बड़ी ही खूबसूरती से इस बात को बयां करने की कोशिश की है कि उम्र इसी तरह गुजरती है, किसी के आने से पहले और किसी के जाने के बाद। अब जरा सोचिए, अगर कोई हमसे हमारी उम्र पूछे तो बतौर मिसाल हम बताएंगे 25 साल, 27 साल, 30 साल। लेकिन अगर उम्र देखी जाए तो तीन उम्र यहां साफ नजर आ रही है। किसी के मिलने से पहले वाली उम्र, किसी के मिलने तक की उम्र और उसके चले जाने के बाद की उम्र। जी हां, यही उम्र है जो शायद कुछ दिन में भी एक उम्र की शक्ल लेती है। कैसे? जी हां, हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसे खुशियों के पल आते हैं जिनको हम जीते हैं, और शायद गिनती अगर किया जाए तो मुश्किल से 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 12 दिन या चंद दिन और जोड़ लें, और हमको लगता है कि हमने एक अलग जिंदगी गुजारी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहाड़ों पर जाएं और 4 दिन रुक करके आए तो आपको लगेगा जब आप यहां आए थे उससे पहले की जिंदगी अलग थी और इन 4 दिनों में एक अलग जिंदगी जी ली है। तो कितना फर्क है उस उम्र में और इस उम्र में। इसीलिए शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इतनी सारी उम्र के बीच में हम एक उम्र में समेटते हैं सब कुछ, यानी हमारी एक पूरी जिंदगी उसमें कई सारी उम्रें होती हैं। कुछ कई पल की होती हैं, कुछ कई घंटों की होती हैं और कुछ चंद दिनों की होती हैं, और कुछ तो होती हैं कुछ सालों तक चलती हैं। इसी के लिए एक खास तौर पर आपको हम गजल पेश कर रहे हैं कि कोई दिन गर जिंदगानी और है, कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में है हमने ठानी और है। आतिशे दोजख में ये गमी कहाँ, सोज गम हाय निगाही और है। बारहा देखी है उनकी रंजिशें पर कुछ अब के सरगिरानी और है। देखे खत मुंह देखता है नामाए बर, देखे खत मुंह देखता है नामा बर, कुछ तो पैगाम जबानी और है। काताए इमार है अक्सर नजूम, वो बलाए आसमानी और है। और गालिब साहब कहते हैं कि हो चुकी है गालिब बलाएं सब तमाम, हो चुकी है गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर गए नागहानी और है, एक मर गए नागहानी और है। और ये उम्र की कहानी सच कहे तो कुछ और है, जिसको ये खूबसूरत सी गजल आपको खास तौर पर फील कराने वाली है।

उम्र की बात चल रही है तो जाहिर है ख्याल आ जरूर रहा होगा, वो ये कि आखिर इन उम्रों में सबसे ज्यादा याद रह जाने वाली उम्र क्या होती है। ख्याल तो काफी वाजिब है, पर क्या होती है आपने कभी सोचा है? खैर, सच कहूं तो कोई भी उम्र हो सकती है जो ख्यालों में बहुत ज्यादा रच बस जाए। किसी के साथ रहने का कभी ख्याल, तो कभी किसी से बिछड़ जाने का गम, उम्र भर खत्म नहीं होता, तो कभी गम में फंसे रहने की बात, तो सच कहे कई बार इंतजार भी सबसे ज्यादा याद रह जाता है। जी हाँ, अगर उम्रों की बात करें तो इंतजार करना एक उम्र होती है। शायद आप कभी किसी से मिले हो और मुश्किल से 7 से 8 दिन हुए हो, या 3 से 4 दिन, या शायद कुछ ही घंटे और कुछ ही मिनट्स, लेकिन उसके बाद आपके मुंह से बरबस ही निकल गया हो कि ऐसा लगता है जैसे एक पूरा दौर गुजर गया। एक दौर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, रूबरू हो रहे हैं, ये एक उम्र ही तो है और क्या है। जी हाँ, ये भी एक उम्र है जो शायद चंद दिनों की है या कुछ घंटों की है, लेकिन देखिए ना, खूबसूरती तो इसी में है कि कई बार हम जो सालों साल जिंदगी जीते हैं वो किसी एक शख्स के साथ, किसी एक फीलिंग के साथ, किसी एक खास जगह, चंद मिनटों में और घंटों में उस जिंदगी से बेहतर जिंदगी होती है। और इसी को तो कहते हैं एक उम्र बिता दी खास फसानों के पीछे।

वैसे आप जो गजलें सुनते हैं ना, उसमें भी एक उम्र होती है। अब जाहिर है कि आप सोच रहे होंगे कि एक छोटी सी गजल में एक उम्र कैसे हो सकती है। खैर, इस गजल को जरा सुनिए, उसके बाद आकर बताते हैं कि कैसे एक गजल एक पूरी उम्र हो सकती है।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं तो आ गया, पर क्या आपने एक उम्र भर मेरा इंतजार किया? ना जी ना। दरअसल मैं आपसे ये कह के गया था कि जो गजलें आप सुन रहे हैं उसमें भी एक उम्र है। बज़ाहिर है आप सोचते हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि महज एक गजल एक उम्र भर की हो। चलिए आपको ये मैं गजल सुनाते हुए एहसास भी कराना चाहता हूं कि कैसे एक गजल एक पूरी उम्र हो सकती है। रहमान फारिस साहब लिखते हैं अपनी गजल में कि क्यों तेरे साथ रही उम्र बसर होने तक, क्यों तेरे साथ रही उम्र बसर होने तक, हम न देखेंगे इमारत को खंडहर होने तक। तुम तो दरवाजा खुला देखकर दर आए हो, तुमने देखा ही नहीं दीवार को दर होने तक। चुप रही आह भरे चीख उठे या मर जाएं, चुप रही आह भरे चीख उठे या मर जाएं, क्या करें बेखबरों तुमको खबर होने तक। हम पे कर ध्यान और चांद को तकते वाले, हम पे कर ध्यान अरे चांद को तकने वाले, चांद के पास तो मोहलत है सहर होने तक। हाल मत पूछिए कुछ बातें बताने की नहीं, हाल मत पूछिए कुछ बातें बताने की नहीं, बस दुआ कीजिए दुआओं में असर होने तक, बस दुआ कीजिए दुआओं में असर होने तक। देखा कैसे ये गजल एक उम्र बन गई। पहला शेर था कि क्यों तेरे साथ रही उम्र बसर होने तक, हम ना देखेंगे इमारत को खंडहर होने तक। तो शायद आपको वो फलसफा जिंदगी का जरूर जहन में आया है जो आपने एक डर से एक उम्र बता दी। डर की भी एक उम्र होती है। जब किसी को खोने का डर होता है ना, तो उसकी एक उम्र हम जी रहे होते हैं। जब तक वो खोता नहीं है तब तक हर रोज हर लम्हा खोने का एक डर होता है और उसकी एक उम्र होती है। और आखिरी अशार की अगर मैं बात करूं कि हाल मत पूछिए कुछ बातें बताने की नहीं, बस दुआ कीजिए दुआओं में असर होने तक। कितनी सारी आपने ऐसी दुआएं मांगी है जिंदगी में और जिंदगी से या इस यूनिवर्स से जो आप पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, और इसी इंतजार को ही तो उम्र कहते हैं। मैंने कहा था ना एक एक गजल एक उम्र हो सकती है। यह सच कहूं और दिल से कहूं तो एक लम्हा पूरी एक उम्र हो सकता है, बस अगर आपने उसमें जी लिया है और आपको एहसास है कि हाँ एक उम्र हो चुकी है, तो सचमुच एक लम्हा काफी है

एक उम्र होने के लिए। इसी के साथ में जैसा कि मिर्जा गालिब साहब भी लिखते हैं कि कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। जी हाँ, और ये गजल अभी मैंने आपको सुनाई भी थी। इस शेर ने बहुत ही मजबूती के साथ इस बात को रखा है कि सच में कोई दिन जिंदगानी अगर कोई और है तो जो हमने जी में ठानी है वो कुछ और होता है। तो कई बार जिंदगी हमको अलग ले जा रही होती है और हम ठान कुछ और रहे होते हैं, और इसी बीच भी एक उम्र ही तो चल रही होती है। तो आइए इसी उम्र को आपकी एक उम्र तक पहुंचाने की ये गजल खूबसूरती से आपको

इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं एक बार वापस से आपका आपके अपने शो बहारे गजल में। रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की पेशकश फ्राइडे स्पेशल बहारे गजल विद योर फेवरेट आरजे अदनान। अगर अभी तक उस उम्र को आप खोज नहीं पाए हैं या अभी तक आपको मिली नहीं है और आप वापस्ता होना चाहते हैं उस उम्र से, तो एक छोटी सी बात शायद आपको समझा सकती है कि एक उम्र रोज जीता है हम सभी का खूबसूरत सा चांद। बिल्कुल, और ये चांद जब शाम होती है और नजर आता है तो कभी गौर किया है कि उतना गहरा नजर नहीं आता जितना गहरी रात में आपको नजर आता है, बल्कि शाम में नजर आया चांद बड़ा हल्का सा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बैनर्स पर वाटरमार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये शायद एक बैनर मान सकते हैं आसमान को और चांद को एक वाटरमार्क मान सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती है गहराती जाती है, उस बीच चांद कुछ वैसा ही होता है जैसे बैनर पर लिखा हुआ सब्जेक्टिव टेक्स्ट हो, यानी कि पूरी तरह गाढ़ा डार्क हो जाता है। दरअसल चांद भी तो एक उम्र ही तो जीता है और रोज एक उम्र जीता है, क्योंकि हर दिन जो है चांद का अगर हम आकार देखते हैं, उसके शेप को नजर में रखते हैं, तो वो शेप घटता या बढ़ता हुआ हमेशा से नजर आता है। और ये जो घटना बढ़ना है ये हमारी जिंदगी से मिलता जुलता नहीं तो फिर क्या है, हमारे सारे दिन एक जैसे तो नहीं होते ना, कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, कभी हम ज्यादा खुश महसूस करते हैं तो कभी हम गम में ही रह जाते हैं। और यही बात तो चांद की हमें अपने से मिलाती है। जी हाँ, दरअसल उम्र के लिए कोई एक खास तयशुदा वक्त नहीं होता कि इतना वक्त होगा तो इसको एक उम्र मानी जाएगी, बल्कि सच कहूं तो सही पैमाना होता है आपके खुद को उसको उम्र मानने का। जी हाँ, जब आप किसी भी एक वक्त को उम्र मान लेते हैं तो वो उम्र में तब्दील हो जाता है। और उम्र की खासियत का अंदाजा अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें कि उम्र की खासियत ये होती है कि बीत जाने के बाद हमेशा हमेशा वो आपकी यादों में रह जाता है, रच जाता है, बस जाता है। जी हाँ, और शायद ये आज के इस शो की आखिरी गजल आपको इस बात को समझा ही दे। क्यों, ये तो आप सुन लें, उसके बाद आपको अंदाजा मिल ही जाएगा। जैसा कि गजल कहती है कि आंख जिनको देख ना पाए सपनों में बिखरा देना, आंखें जिनको देख ना पाए सपनों में बिखरा देना, जितने भी हैं रूप तुम्हारे जीते जी दिखला देना, रात और दिन के बीच कहीं पर जागे सोए रस्तों में, रात और दिन के बीच कहीं पर जागे सोए रस्तों में मैं तुमसे एक बात कहूंगा तुम भी कुछ फरमा देना, अब की रुत है जब धरती को बरखा की महकार मिले, मेरे बदन की मिट्टी को भी रंगों में नहला देना, दिल दरिया है दिल सागर है इस दरिया की सागर की, दिल दरिया है दिल सागर है इस दरिया इस सागर की, एक लहर का आंचल थामे सारी उम्र बिता देना, हम भी लौ को तेज करेंगे बूंदों की बौछार के साथ, हम भी लौ को तेज करेंगे बूंदों की बौछार के साथ, पहला सावन झूलने वालों तुम भी पेंग बढ़ा देना, पहला सावन झूलने वालों तुम भी पेंग बढ़ा देना, जाते साल की आखिरी शाम में बालक चोरी करती है, जाते साल की आखिरी शाम में बालक चोरी करती है, आंगन आंगन आग जलाना गली गली पहरा देना, आंगन आंगन आग जलाना गली गली पहरा देना, और इस
गजल का आखिरी अशार कुछ यूं कहता है कि तेरे करम से या रब सबको अपनी अपनी मुराद मिले, तेरे करम से या रब सबको अपनी अपनी मुराद मिले, जिसने हमारा दिल तोड़ा है उसको भी बेटा देना, जिसने हमारा दिल तोड़ा है उसको भी बेटा देना। और शायद इसका हर अशार एक उम्र लेकर के आया है, और ये उम्र आपने जरूर महसूस की होगी इस गजल को सुनने के दौरान। और सच कहूं, बिल्कुल सच कहूं, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे, जब ये शो शुरू हुआ था तो एक नई उम्र शुरू हुई थी, अब ये शो खत्म हो रहा है, एक उम्र मुकम्मल हो गई है। कैसा लगा आज का बहारे गजल शो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली उम्र में हम उम्मीदों की नई डगर के साथ वापस से मिलेंगे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM
1: प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल।

रात हो रही है, चारों तरफ सन्नाटा है, पर क्या ये सन्नाटा वाकई खाली है? 89.6 FM सुनने वाले सभी रात के मुसाफिरों को मेरा सलाम। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त लेट नाइट आरजे, और आज की रात हम गोवा की उन हसीन वादियों में नहीं, बल्कि उस खूनी रास्ते पर चलेंगे जिसे शॉर्टकट समझकर पांच दोस्तों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। विनय, सलमान, जयेश, स्वप्निल और अनुकांत निकले थे मस्ती करने, पर उन्हें क्या पता था कि कोई साया उनका इंतजार कर रहा है। गोवा, नाम सुनते ही जहन में आते हैं ऊंचे ताड़ के पेड़, नीले नीले समंदर की लहरें और बीच पर बजता सुकून भरा संगीत। इन पांचों दोस्तों के लिए ये सफर भी वैसा ही था। दिन भर पैरासेलिंग और मस्ती के बाद रात को करीब 1:30 बजे इन्होंने मुकेश के घर जाने का फैसला किया। मुकेश, जो वहाँ का लोकल था, उसने एक शॉर्टकट रास्ता चुन लिया। वो शॉर्टकट था या मौत का रास्ता? जैसे ही उनकी गाड़ियाँ शहर की चकाचौंध से दूर हुई, नजारा बदलने लगा। वो खूबसूरत सा समंदर अब पीछे छूट चुका था और सामने था एक घना, काला और बेहद डरावना जंगल, जो शायद बार बार उनसे कह रहा था वापस जाओ। पर ऊपर पूरा चांद खिला था, जिसकी दूधिया रोशनी ऊंचे पेड़ों के बीच से छन कर नीचे आ रही थी। पर वो रोशनी सुकून नहीं थी, बल्कि दहशत दे रही थी। हवा में एक अजीब सी सिलावट थी, जैसे कोई करीब से उनके कान में सांस ले रहा हो और कह रहा हो, मैं यहीं हूँ।

सड़क के दोनों तरफ खामोश खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वो हाथ फैलाए इन दोस्तों को अंदर खींच लेने का इंतजार कर रहे हों। और उन्हें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि वे किसी ऐसे जाल में फंस चुके थे जिसका कोई अंत नहीं था शायद। तभी अचानक माहौल की शांति भंग हुई। जयेश की बाइक का हॉर्न अचानक बजने लगा, पी पी पी, एक जैसा बेसुरा और बेहद डरावना। विनय ने अपनी बाइक जयेश के बराबर में की और चिल्लाया, जयेश क्या कर रहा है भाई, क्यों डर रहा है? पर जयेश की गर्दन पत्थर की तरह सीधी थी, उसकी नजरें सामने सड़क पर गड़ी थी। जब विनय ने दोबारा उसे झकझोरा तो जयेश ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। वो चेहरा देखकर विनय के गले से तो चीख निकल गई। जयेश की आंखें पूरी तरह खून की तरह लाल हो चुकी थी, उसके चेहरे से पसीना बह रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो कांपती आवाज में बुदबुदा रहा था, वो मेरे कान में ताली बजा रहा है, विनय सुन, वो घंटियां बजा रही है, वो मुझे बुला रही है। वहां सन्नाटा था पर जयेश को किसी अदृश्य ताकत की चीखें और घंटियों का शोर पागल कर रहा था। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। क्या आप जानते हैं कि उस सन्नाटे में जयेश को ताली सुनाने वाला वो साया कौन था? और क्या वो दोस्त उस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे? जवाब मिलेगा एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

सावधान रहिए, क्योंकि अंधेरा सिर्फ आंखों के सामने नहीं, आपके पीछे भी हो सकता है। लेकिन क्या आप सच में वापस आना चाहते थे? क्योंकि अब वापस जाने का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। जयेश की वो लाल आंखें अब सबकी आंखों के सामने थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें किसी और की हो चुकी थी। मुकेश ने कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा पीछे मत मुड़ना, बस चलते रहो। गाड़ियां आगे बढ़ी, लेकिन तभी कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके खून को बर्फ जैसा ठंडा कर दिया। सड़क के दाहिने तरफ एक पुराना चबूतरा था। वहां करीब 40 से 50 लोग बैठे थे और फुसफुसा रहे थे। हम इंतजार कर रहे थे, हम इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। ताजुब की बात ये थी कि इतनी रात को उस वीरान जंगल के बीच इतने सारे लोग क्या कर रहे थे। आवाज फिर गूंज रही थी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन सब ने बिल्कुल सफेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और सिर पर सफेद टोपी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सब के सब बुत बनकर बैठे थे और धीरे धीरे कह रहे थे, हम जिंदा नहीं हैं। और उनकी पत्थर जैसी आंखें सिर्फ इन दोस्तों का पीछा कर रही थी। पसीना पोंछते हुए स्वप्निल ने अपना कीमती विंड प्रूफ लाइटर निकाला। उसने सुना था कि आग बुरी ताकतों को रोकती है। उसने लाइटर जलाया, नीली लौ चमक उठी, पर वो आवाजें तेज हो गई, बुझा दो इसको। वो लाइटर जो समंदर के तूफानों में भी नहीं बुझता था। उस रात खामोश सड़क पर अजीब हरकतें करने लगा। ऐसा लग रहा था यहाँ सब कुछ बदल गया है। हवा का एक झोंका तक नहीं था, फिर भी वो लौ बार बार कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो और पास में कोई कह रहा हो, मैं हूँ, मैं यही हूँ, देखो। स्वप्निल ने तीन बार लाइटर जलाया और तीनों बार वो अपने आप बुझ गया। एक बार, दो बार, तीन बार, पर बार बार वो बुझ गया। तभी विनय के कान के बिल्कुल पास कोई तेजी से चिल्लाया, एक औरत चीखी, बचाओ। वो इतना तेजी से चीखी थी जैसे किसी ने उसकी रूह को खींच लिया हो। फिर वो दर्द भरी आवाज में बोली, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। विनय ने दाईं तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। फिर बाईं तरफ देखा, वहां भी कोई नहीं था। वो आवाज फिर धीरे से बोली, मैं दिखती नहीं हूं, सिर्फ लाल मिट्टी का एक विशाल पहाड़ सामने दिख रहा था जो उस चांदनी रात में किसी ऊंचे कंकाल जैसा लग रहा था। उस आवाज ने धीमे से कहा, मैं यहीं दफन हूं। 40 मिनट का रास्ता अब 3 घंटे में तब्दील हो चुका था। क्या वो कभी उस जंगल से बाहर आ पाएंगे, या वो सफेद लिबास वाले साए उन्हें हमेशा के लिए अपना हिस्सा बना लेंगे, जो बार बार अब भी धीरे धीरे कह रहे थे, यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ। प्यारे श्रोतागण, असली सच सामने आएगा इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: कुछ रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हम उनमें खो जाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रात के 3 बज चुके थे और डर अपनी चरम सीमा पे था। जैसे तैसे वे मुकेश के घर पहुंचे, पर सच तो ये है कि वो वहां पहुंच जरूर गए थे, लेकिन उनका डर अब भी उसी सड़क पर अटका हुआ था। कोई धीरे धीरे बार बार कह रहा था, तुम मुझे वही छोड़ आए। अगली सुबह उसी सड़क पर वो दोबारा गए सच को जानने के लिए। जब उन्होंने एक टैक्सी लिया और एक बहुत पुराने टैक्सी ड्राइवर से उस रास्ते का जिक्र किया, तो उन्होंने जो कुछ सुना उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्राइवर ने गाड़ी धीमी की और बहुत धीमी आवाज में बताना शुरू किया, साहब आप लोग खुश नसीब हैं जो वापस आ गए। हर कोई नहीं आता। आज से ठीक 6 साल पहले इसी सड़क पर एक मासूम लड़की के साथ कुछ दरिंदों ने वो सलूक किया जिसे सुनकर खुदा भी रो पड़े, फिर उसका कत्ल कर दिया और उसकी लाश को सड़क के किनारे उसी लाल मिट्टी में दफना दिया गया। और तभी उस लड़की की आवाज एकाएक बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी। वो धीरे धीरे कह रही थी, सुन रहे हैं, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, हंसती थी, जीती थी, मुझे भी घर जाना था उस रात, लेकिन उन गुंडों ने मुझे रोक लिया। मैं बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, किसी ने नहीं सुना। मैंने उनसे कहा, मुझे जाने दो, प्लीज रहम करो, मुझे जाने दो, मेरी भी माँ है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मेरी आवाज, मेरी सांस, सब छीन लिया, मेरी इज्जत के साथ खेला, फिर मुझे मार डाला और फिर मुझे इसी मिट्टी में दफना दिया। देखो, यही इस लाल मिट्टी के नीचे मैं आज भी सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ। जब तुम उस रास्ते से गुजरते हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारे बिल्कुल पास, तुम्हारे कान में मैं पुकारती हूँ, जो घंटियों की आवाज तुम्हें सुनाई देती है वो मैं हूँ, ताली की आवाज वो भी मैं हूँ। मैं बस चाहती हूँ कोई रुक जाए, कोई मेरी बात को सुन ले, कोई मुझे इस अंधेरे से निकाल ले और मुझे इंसाफ दिला दे। लेकिन जो भी रुकता है वो वापस नहीं जा पाता, क्योंकि मैं उसे जाने ही नहीं देती। मैं अकेले नहीं रहना चाहती, तुम भी रुक जाओ मेरे साथ। ड्राइवर ने तेजी से कार उल्टे डायरेक्शन में मोड़ ली और फिर एकाएक उस लड़की की आवाज बिल्कुल थम गई। ड्राइवर की सारी बात को सुनकर और उस आवाज को सुनकर विनय को समझ में आया कि वो चीख किसकी थी। कहते हैं कि उस लड़की की तड़पती हुई रूह आज भी उसी रास्ते पर इंसाफ ढूंढती है। वो जो जयेश को ताली और घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी, वो उस लड़की का इशारा था। और वो जो 50 लोग सफेद कपड़ों में बैठे थे, वो कोई इंसान नहीं थे, वो राहगीरों के साए थे जिन्हें उस सड़क ने कभी वापस नहीं आने दिया। और वो जो विंड प्रूफ लाइटर बार बार बुझ रहा था। ड्राइवर ने फुसफुसाते हुए कहा, जब वो रूह आपके बिल्कुल पास होती है तो वो ऑक्सीजन तक

सोख लेती है, वहां जिंदगी भी दम तोड़ देती है। आज भी अगर आप रात के 3 बजे गोवा की लाल मिट्टी वाली सड़क से गुजरें, तो अपनी खिड़कियां बंद रखिएगा, क्योंकि वो लड़की आज भी वहां किसी का इंतजार कर रही है। शायद आपका, वो लड़की आज भी इंसाफ ढूंढती है, और वो साए उसी सड़क के हैं, और जब वो करीब होती है तो हवा तक रुक जाती है। दर्द बेहद गहरा है, डर अपनी चरम सीमा पर है। जल्दी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: रात गहरी और यादें जहरीली। अपना ख्याल रखिए क्योंकि खौफ अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये थी गोवा की वो सड़कें जो आज भी आत्माओं के पहरे में हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ये दुनिया अब सभ्य हो चुकी है, इंसानियत जीत चुकी है और दरिंदगी कहीं पीछे छूट गई है। लेकिन सच्चाई हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कभी कभी इस सभ्य दिखने वाली दुनिया के पीछे ऐसे अंधेरे छिपे होते हैं जो सिर्फ शरीर को नहीं आत्माओं को भी जख्म दे जाते हैं। जख्म जो कभी भरते नहीं। वो लड़की जिसने उस रात सब कुछ खो दिया, उसका दर्द, उसकी चीख, उसकी आखिरी सांस सिर्फ उसी सड़क पर नहीं रह गई, बल्कि वो एक सवाल बन गई हम सब के लिए। क्या सच में हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि ऐसी घटनाएं अब नहीं होती, या हम बस देखना नहीं चाहते? कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें खत्म नहीं कर पाती, और शायद इसीलिए कुछ आत्माएं आज भी भटकती हैं सिर्फ इंसाफ के इंतजार में, या शायद किसी के समझने के इंतजार में। और प्यारे श्रोतागण, अगर कभी ऐसी कहानी को सुने या किसी दर्द को महसूस करें, तो सिर्फ उसे एक डरावनी कहानी समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि उसके पीछे किसी की अधूरी जिंदगी और टूटी हुई उम्मीदें होती है। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी लेट नाइट आरजे 89.6 FM पर। अब सोने की कोशिश करिए अगर आप सो पाए। शुभ रात्रि, अपना बहुत ख्याल रखिए।

सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका।

ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी एक गायक या संगीतकार की नहीं, खुद जिंदगी की कैसेट चलाने जा रहे हैं। वो कैसेट जो कभी रिवाइंड हो जाती है, कभी अटक जाती है और कभी बिना बताए खामोश हो जाती है। जी हाँ, आप शो सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा भूले बिसरे गीत, जो लेके आ गई है आपकी अपनी आरजे अनोखी। आज का ये जो सफरनामा है वो वाकई अनोखा होने वाला है। हम आज उस प्रकरण पर बात करने वाले हैं जो हमारी, आपकी, हम सभी की है, यानी हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगानी। तो चलते हैं इस जिंदगी के सफरनामे पर और सुनाते हैं आपको वो सॉन्ग जो हर किसी के जिंदगी के प्यार का गीत है, यानी जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बेशक ये वो गीत है जो हम और आप गुनगुनाते हैं, चाहे मन हो या ना हो, कैसे भी हो। तो चलिए जानते हैं इस गाने के माध्यम से कि आखिर में जिंदगी को अगर गाना होगा तो कैसे गाएंगे हम। लेकिन उससे पहले इस गीत के पीछे का एहसास आप तक पहुंचाती है आपकी अपनी आरजी अनोखी। ये गीत उस दौर में आया जब लोगों को यकीन था कि जिंदगी का मतलब सिर्फ साथ निभाना है। तब मोबाइल नहीं थे, पर रिश्तों की नेटवर्किंग रेंज जो होती थी वो फुल रहती थी। यदि इस गाने को आदमी की जिंदगी से जोड़ें तो एक आम आदमी पहली नौकरी, पहली तनख्वाह और उसी तनख्वाह से माँ के लिए साड़ी, उसे तब लगता था हाँ जिंदगी सच में प्यार का गीत है। प्यार से शुरू हुई थी जो राह, अभी भी उसी मोड़ पर खड़ी है जिंदगी। आइए चले उसी मोड़ की ओर इस गाने के माध्यम से।

0: श्रोताओं, अब आपकी अपनी आरजी अनोखी जिंदगी के उस सफर की बात करेगी जो प्यार के राह पे चलने के बाद में सुहाना हो जाता है। बिल्कुल, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गाना है किशोर दा की आवाज में और इस गीत में मासूमियत थी। एक ऐसा सफर जहाँ मंजिल से ज्यादा रास्ता प्यारा था। जिंदगी का किस्सा ट्रेन की जनरल बोगी, खिड़की से आती हवा और जेब में कम पैसे, फिर भी हम सभी के चेहरे पर वो मुस्कान होती है जो हमें जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उस वक्त सफर सुहाना था क्योंकि जिम्मेदारियां स्टेशन पर नहीं चढ़ी थी, प्यार को गले लगाया करती थी। आइए बढ़ते हैं इस और एक खूबसूरत से जिंदगानी वाले नगमे के साथ में आपके अपने शो भूले बिसरे।
1: जिंदगी

खड़ी, इतनी गहराई, इतना एहसास, इतना दर्द, एक पैगाम और जिंदगी। इस गाने में बहुत कुछ समेटा गया है। हंसी मजाक में कही गई गहरी बात, लड्डू तब तक मीठा होता है जब तक वो टूट ना जाए, यानी उसके हर बूंद में मिठास तो होता है, पर बिखरने के बाद में क्या वही सेम स्वाद आपको मिलता है? सोचने की बात है ना, जिंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं होती। तो टूटने से पहले इस जिंदगी को क्यों ना समेट लें, प्यार में, अपने पन में, अपने एहसासों के साथ, अपने एहसासात इकट्ठा कर लें और बना लें अपनी इस जिंदगी को खुशहाल, खुशनुमा।

ये गीत उस एहसास का नाम है जब लोग साथ चलते चलते अलग रास्तों पर मुड़ जाते हैं। स्कूल का दोस्त, कॉलेज की मोहब्बत, ऑफिस का यार, सब अपने अपने स्टेशन पर उतर गए, यानी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ लोग साथ नहीं रहते मगर यादों में हमेशा सफर करते हैं। तो चले बढ़ते हैं जिंदगी के सफरनामे की ओर इस एक और नगमे के साथ।

मैं उड़ा जी हाँ, धुआं मतलब एक धुंध में खो जाना। जब फिक्र की बात हो तो उसको धुंध में छोड़ दीजिए, कहीं गुमसा हो जाए, अपने आप को एक नए सफर की ओर आगे बढ़ाइए। ये गीत हौसले की मिसाल है। दर्द आया गया पर जिंदगी रुकी नहीं, ईएमआई, बीमारियां, जिम्मेदारियां, फिर भी हर सुबह उठकर कहना खुद से कि चलो आज भी निभा लेते हैं जिंदगी को अपने तरीके से, अपने फन से।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भूले बिसरे गीत, और मैं हूं आपके साथ में आपकी अपनी आरजे अनोखी। आज हम बात कर रहे हैं जिंदगानी पर, जिंदगी पर और इस जीवन पर। इसी में एक और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मैंने आपके लिए चुना हुआ है, और ये गाना बेहद बेहद बेहद पसंद किया जाता है आज भी। वैसे आज के सारे नगमे एवरग्रीन हिट्स में से एक है, और जब बात होती है आपके लिए सॉन्ग सिलेक्शन करने की, तो ना जाने कहाँ से कितने सारे ख्यालात इकट्ठा तालमेल बिठाने को आतुर हो जाते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं इस नगमे के साथ में, जिसके बोल हैं, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, है ना। जिंदगी यही तो करती है, खेल सा करती है, हंसी ठिठोली सा करती है, कभी नाराज हो जाती है, कभी हमसे शिकवे गिले भी करती है। तो इस जिंदगी का साथ क्यों ही छोड़ना, अपने तरीके से इस जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, यही तो है जिंदगी का असली सफरनामा। इस गीत में सवाल है, जवाब नहीं है। कभी जो चाहिए वो नहीं मिलता, और जो मिल जाता है उसकी हम कीमत ही नहीं समझ पाते, लेकिन इस गाने की कीमत को हम समझेंगे। चलिए फिर सुनते हैं ना इस गाने की।

श्रोताओं, अब ले चलेंगे आपको जिंदगी के एक और परिवेश की ओर, एक और दृश्य की ओर, एक और नगमे की ओर। नगमे के बोल हैं, मैं

कभी कभी ऐसा फील होता है ना, हम सभी को होता है, हम सभी की जिंदगी में एक गहराई वाला दर्द आता है और वो दर्द हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाता है। पर कोई कितना भी समझा ले, बुझा ले, पुचकार ले, समझते और संभलते हम तभी हैं जब हम अपने आप से मान लें कि बस अब हो गया, अब आगे बढ़ने का वक्त है। भले ही ये पतंग कट गई है, इसका डोर इसके मांझे से अलग हो चुका है, अब वो वक्त आ गया है कि अब मुझे उड़ान भरनी है और ऊंची, बस उड़ते जाना है और इस सफर का अंत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सॉन्ग हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि पतंग की तरह जिंदगी है, डोर किसी और के हाथ में है, कभी बॉस की डोर, कभी समाज की डोर और कभी अपनों की उम्मीदों की डोर, पर इसमें हम कहाँ हैं और हमारी डोर कहाँ है, सोचना पड़ेगा आपको। तो चलिए सोचते हैं फिर इस गाने के माध्यम से।

और अब आपके लिए वो नगमा जो आपको हर कदम एक उम्मीद से भर देता है। नगमे के बोल हैं,

बिल्कुल, खुशी भी आएगी और खुशी को हम एंजॉय भी करेंगे इसी नगमे के साथ में, जो है वो बदलता रहेगा। बेशक आज जो अपना है कल याद बनकर रह जाएगा, और यही तो रीत है, यही तो दस्तूर है, यही तो जिंदगी और जिंदगानी है। आइए जीते हैं फिर इस जिंदगी को इस बेशुमार सीख वाले नगमे के साथ।

ये सफर चल रहा है आपका भूले बिसरे गीत का और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनोखी। एक और नगमे की बात करना चाहती मैं आपसे, जो कि है जिन

ये गीत आईना दिखाता है, भागते भागते हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए और अपने दिल को, अपने दिमाग को एक संतुलन में लाइए और उसके बाद फिर से हंसिए, मुस्कुराइए और अपनी लाइफ में बाउंड्रीज के साथ साथ बैलेंस बनाने की भी कोशिश को लगातार जारी रखिए। फिलहाल ये गाना।

श्रोताओं, अब ले चलूंगी मैं आपको इस जिंदगी के एक और फेज की ओर। जब हम सोचते हैं, एक दौर ऐसा भी आता है ना जिंदगी में कि

जी हाँ, कोई नक्शा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, पर बरखुदार यही तो जिंदगी है और यही तो जिंदगी का एक रोमांच है। चलिए फिर चलते हैं, इस गाने को आगे बढ़ने देते हैं

तो दोस्तों, ये सारे गीत दरअसल हम सबकी अधूरी आत्मकथा है। कभी मौका मिले तो इन गानों को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी कोई नया गाना नहीं, एक भूला बिसरा गीत है जो सही वक्त पर चल जाए तो रूह तक बजने लगता है। अब दें आपकी अपनी आरजी अनोखी को इजाजत, बतौर तोहफा एक नगमा आपके लिए जिसके बोल हैं, जिंदगी इम्तिहान लेती है ना, हर कदम पे, हर मोड़ पे हमेशा लेती है, पर जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इस इम्तिहान को पास कर लेता है, जिसको इस इम्तिहान को पास करने के गुर मालूम है, वो अपनी लाइफ

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।